मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 और 8 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियो वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीली

0: नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीटर वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

हमारा मन बाहरी दुनिया से कभी भी शांति नहीं पा सकता है जब तक हमारा मन अंदर से शांत ना हो, और हमारा मन अंदर से तभी शांत होता है जब हम अपना ध्यान प्रभु की पूजा और आराधना में लगाते हैं।

0: अभी आप अनूप जलोटा, हरिहरन और सुरेश वाटकर के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
5: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के द्वारा अपने देशवासियों का मार्गदर्शन किया। सरकार द्वारा जब जब जनहित से हटकर कोई आदेश पारित होता, गांधी जी सदैव कुशल नेता के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पर जोर देते और उन्हें सफल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अमल करने की सलाह देते थे। आज गांधी चर्चा में बारदोली सत्याग्रह की चर्चा होगी और चर्चा कर रही हैं डॉक्टर सुचेत गोइंदी।
1: 1928 में गुजरात में बारदोली तहसील के किसानों को पता चला कि अंग्रेज सरकार ने एक बार की ही 66% लगान में वृद्धि कर दी है। वे बहुत परेशान हुए, हैरान हुए, लेकिन हैरान और परेशान होकर वो चुप नहीं बैठ गए। उन्होंने तय किया, सोचा कि हम ये लगान नहीं देंगे और सत्याग्रह करेंगे। उस समय गुजरात के आसपास इलाकों में सत्याग्रह की मोटी मोटी बातें लोग समझते थे।

0: लेकिन जब सत्याग्रह करना है, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो दो बातें ज़रूरी हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। एक तो पूरा कार्यक्रम बनाना और दूसरा लड़ाई का अच्छा नेता होना। अच्छा नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल से कौन ज़्यादा हो सकता है? अतः किसान मंडल स्वयं अपनी बात, अपना दुख ले करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी बात सुनी और उन्होंने सोचा कि शायद ये किसान सत्याग्रह की गंभीरता को नहीं समझते हैं। उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें मालूम है, लगान ना देने पर, सत्याग्रह करने पर तुम्हें जेल जाना होगा, डंडे खाने होंगे, मार खानी होगी, यहाँ तक कि जमीन सब जब्त हो जाएंगे, बैल भी तुम्हारे उठा ले जाएगी सरकार, और यहाँ तक कि तुम्हें जान भी देनी पड़ सकती है। तुम में से कितने लोग इसके लिए जान देने को तैयार हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सब। लेकिन सरदार पटेल इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, आप मुझे उन नामों की सूची दें जो लोग इस सत्याग्रह में मरने मिटने को तैयार हों। कृषक मंडल वापस बारदोली गया। उन्होंने बारदोली के 130 गांवों के लोगों की सभा की और उस सभा में ये पूछा कि कितने लोग हैं जो अपना नाम देते हैं। हर एक घर में से लोगों ने अपने मरने तक के साथी का नाम दिया और तब उस लंबी सूची लेकर के किसान स्वयं फिर गए पटेल जी के पास। पटेल जी को लगा कि इनका दृढ़ निश्चय है, अतः उन्होंने हामी भर दी और कहा कि गांधी जी के पास साबरमती जाकर आशीर्वाद भी ले लें। आशीर्वाद वे लेने गए और उन्हें मिला। अब सरदार स्वयं बारदोली में आश्रम में आ गए और 6 महीने तक वहीं रह करके बारदोली के किसानों के इस सत्याग्रह का उन्होंने नेतृत्व किया। 300 का सक्रिय कार्यकर्ता पूरे देश से आ गए थे, जिनमें से दो तीन सभी स्वयं सेविक जा कर के सभी गांवों में बैठ गए, बारदोली के गांवों में बैठ गए और बारदोली की 86,000 की कुल जनता में से 80,000 की जनता ने इस लगान विरोधी सत्याग्रह में भाग लिया, सक्रिय रूप से भाग लिया। अब देखिए, नज़ारा ये था कि जब जनता इस तरह से कार्य करने लगी तो अंग्रेज सरकार ने धड़ाधड़ फिर गिरफ्तारियां, डंडे मारना, लाठियां मारना, जर जमीन, बैल, खेती, घर तक जब्त कर लेना, लड़कियों को पीटना, ये सारे अत्याचार की भरमार कर दी। लोग निहत थे लेकिन दृढ़ थे। सारे किसान इस बात में स्पष्ट थे कि हमको लगान नहीं देना है, अंग्रेज सरकार चाहे जो कर ले, और ना ही हम अपना धैर्य छोड़ेंगे, सहने की शक्ति हमारी असीम है। ऐसा दृश्य देखकर देखने वाले बताते हैं कि कोई भी स्तब्ध रह जाता, यहाँ तक कि पश्चिमी देश चकाचौंध हो गए कि ये अनपढ़ कहे जाने वाले किसान किस तरह से बारदोली को, बारदोली दुनिया में एक प्रसिद्ध स्थान हो गया उसी एक आंदोलन से। और ये भी देखा गया कि गांव-गांव में जो सशक्त वाणी सरदार पटेल की थी, सुन करके दीनहीन किसान इस कदर सशक्त सैनिक हो गए सत्याग्रह के कि स्वयं बड़े बड़े लोग चकित हुए हो गए और चौंधिया जैसे गए। इस बीच खबर आई कि सरकार सरदार पटेल को कैद करने वाली है। खबर सुनकर गांधी जी खुद बारदोली पहुंच गए। गांधी जी का बारदोली जाना था कि लोग चौगुने उत्साह में मरने मिटने लगे और यह देखकर सरकार बौखला गई और गिरफ्तारियां और मार और ज़्यादतियां और अत्याचार शुरू हो गए। लेकिन लोग थे कि ना झुके, ना डरे, ना थके ही। सरदार पटेल के नेतृत्व में वे आगे बढ़ रहे थे, गांधी जी के आते ही और बढ़ गए और ना झुके ना टूटे, जिससे कि सरकार को ही झुकना पड़ा और टूटना पड़ा। सरदार पटेल बारदोली के इस सत्याग्रह के बाद बारदोली के ही नहीं पूरे देश के सरदार हो गए।
1: और अब गांधी जी का प्रिय भजन, स्वर MS सुबलक्ष्मी का।

0: बापू सत्य के उपासक थे और जीवन भर उसकी खोज में लगे रहे। सत्य को पाने के लिए उन्होंने साधन कौन सा ग्रहण किया? राम नाम। दुख में, सुख में, रोग में, शोक में, हर समय, हर कहीं दो अक्षरों का छोटा सा ये नाम ही उनका सहारा था। अक्टूबर 1947 में कुछ सर्दी लग जाने के कारण गांधी जी बीमार हो गए। उनको हल्का सा बुखार और कुछ खांसी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि वो पेनिसिलिन लें। गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया और 17 अक्टूबर को अपनी प्रार्थना सभा में कहा,
1: मैं कोई डॉक्टर की या तो वैद्य की भी दवाई नहीं करता हूँ। डॉक्टर तो कहते हैं यहाँ ही मेरे सामने पड़ी है कि पेनिसिलिन ले लेते तो 3 दिन में खत्म होने वाली चीज है। उसको 3 हफ्ते लग गए। उस चीज को मैं मानता नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये समझ गया हूँ कि राम नाम वो सबसे बड़ी ऊंची दवा है। वो उसको कहते भी हैं राम नाम वो रामबाण दवा है, क्योंकि से राम का बाण काम कर देता था कि जैसा गया ऐसा ही वो कोई बाण निष्फल नहीं जाता था। इसी तरह से राम नाम रूपी जो दवा है वो भी कभी निष्फल नहीं जाती है, लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ी धीरज तो चाहिए। मेरे लिए इस अवस्था में और आज जो स्थिति दिल्ली में क्या कि सारे मुल्क में चल रही है, उसने दूसरा चारा नहीं मिल पाता हूँ और अच्छा है। इस सिवाय ईश्वर की मदद, सिवाय ईश्वर के नाम के और कुछ है ही भी नहीं। कितनी भी कोशिश मैं करूँ मनुष्य की हैसियत से वो सबकी सब बर्बाद जाती है। वो मेरे शब्द हैं वो एक समान में असर रखते हैं, आज नहीं रखते, नहीं रखते हैं। उसमें कोई मैं बड़ा गुनहगार हो गया हूँ। आज मैं जो दिल से बात नहीं करता था, जो मैं पहले करता था, ऐसा वही मैं जानता हूँ कि मैं तो दिल से ही बात करता हूँ। आप भी वही है, लेकिन युग बदल गया तो युग की

तासीर रोने वाली है, मुझ पर भी होनी चाहिए। मेरी उम्मीद है कि वो नहीं होने देता हूं मैं, क्यों नहीं कि मेरा जैसा था वैसा ही हूं। जैसी बात मैंने 15 साल में यहाँ आया तब निकाली, वही बात आज भी कह रहा हूँ।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा कार्यक्रम में बारदोली में सत्याग्रह का प्रयोग। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं मोटे अनाज की खेती विषय पर कमाल अहमद से चंद्रजीत यादव की बातचीत।

0: किसान भाई, आप सब निश्चित तौर पे मोटे अनाज के खेती पे इधर विशेष जोर दे बाटे, और काहे से भाई देखा बाजार में एकर मांग भी बढ़ी हुए, और निश्चित तौर पे हमें पौष्टिकता इतनी अधिक होत है कि लोग अब जानकारी उनका हो गए वे कि मोटे अनाज के खाए से का कुछ फायदा वे। लेकिन मोटा अनाज के खेती आप सब इस समय कैसे करा, कैसे आप सबके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, देखा यह है कुल जानकारी दे के लिए आज हमारे साथे बाटे श्री कमाल अहमद भैया, जो उनकी ही कुल के विशेषज्ञ हैं। भैया आपके कार्यक्रम में स्वागत है, और जानना चाहे भैया कि मोटे अनाज के खेती किसान भाई कैसे करें कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, और का कुछ एक विशेषता वगैरह विषय में बताएं।
1: हाँ, किसान भाइयों, मोटे अनाज के अंतर्गत रागी, सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन जो है फसलों की खेती की जाती है। इसमें किसान भाइयों को बहुत कम जो है पानी की आवश्यकता होती है, इसके अलावा जो है उर्वरक बहुत कम जो है लगता है इसमें
0: जी,
1: और ये कम समय में आसानी से जो है तैयार हो जाता है
0: जी जी।
1: तो इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती है, बहुत कम लागत में कम समय में किसान भाइयों को इससे जो है अच्छा मुनाफा मिल सकता है मोटे अनाज की खेती करने से।
0: भैया देखा, बीच में एकर एक तरह से प्रचलन ही खत्म हो रहा है कि मोटा अनाज लोग बोवे ही छोड़ दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर एक बोए तो इस समय तो विशेष तौर पर ज़्यादा उनका कुछ जो ना है फायदा होए, ज़्यादा मुनाफा होए। तो कौन कौन मोटा अनाज बाटें जो उन्हें की खेती इसमें किसान भाई करें जो उन्हें से उनका ज़्यादा फायदा होए?
1: इस समय किसान भाई जैसे अभी जून के लास्ट में, अंतिम सप्ताह में, जून जुलाई के महीने में किसान भाई बाजरा है, ज्वार है, रागी है, सावा है, कोदो है, इसकी जो है बुआई किसान भाई कर सकते हैं
0: जी।
1: ये लगभग जो है ये फसलें 90 से 100 दिन की होती हैं, और इसमें जैसे कि हमने पहले बताया कि इसमें बहुत कम जो है पानी और खाद की आवश्यकता होती है
0: जी,
1: तो ये कम लागत में किसान भाई जो है अच्छे से इसकी खेती करके अच्छा जो है मुनाफा कमा सकते हैं।

0: इसमें?
1: भैया ये बताओ, जैसे भाई अन्य फसलन में प्रजाति होती, तो का इन्हें मोटे अनाज में भी अलग अलग प्रजात बाटी कि का कुछ निश्चित प्रजात बाटी जौन के बुआई किसान भाई करें?
0: देखिए, मोटे अनाज में जैसे बाजरा की जो प्रजाति है, इसमें दो तरह की प्रजाति होती है। एक जो है संकुल बाजरा होता है और
1: जी
0: एक जो है संकर बाजरा होता है।
1: जी
0: संकुल बाजरा में जैसे आपका ये PC 701 है और धन शक्ति है, ये संकुल मतलब देसी प्रजातियां हैं।
1: जी
0: और जो हाइब्रिड या संकर प्रजातियां हैं उसमें जैसे VNR का 3245 है, NBH 5929 है और सुपर कावेरी बास MH 1553 है। ये जो है बाजरे की प्रजातियां हैं। इसके अलावा ज्वार की प्रजातियां हैं जो हैं CSV 13,
1: जी
0: CSV 15, विजेता, और इसमें जो संकर प्रजाति है वो JK एग्री सीड है।
1: जी
0: इसके अलावा सावा की जो प्रजाति है वो MDU 1, और इसमें एक जो है काकुन है, काकुन में है राजेंद्र कोड़ी, और रागी में VL मंडुआ 400, और कोदो की जो प्रजाति है वो इंदिरा है जिसकी बुआई किसान भाई कर सकते हैं। ये सारे प्रजातियों के बीज आपको जो है राजकीय कृषि बीज भंडार
1: जी
0: जो
1: जी
0: सरकारी गोदाम होते हैं ब्लॉकों में, वहाँ पर जा करके किसान भाई इसको निःशुल्क जो है प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार जो है मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को निःशुल्क बीज की व्यवस्था की जा रही है। उसमें जो किसान पंजीकृत होंगे वो ब्लॉक में जा करके अपना फिंगर लगा करके अंगूठा
1: जी
0: और वहाँ से बीज निःशुल्क जो है प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक चीज़ बताऊँ भैया, जैसे मान लो जे पंजीकृत ना बाटें किसान भाई, तो का कुछ इसमें उनका गुंजाइश हो सकत है, बीज मिल सकत है, या फिर अगले बार के लिए उनका सोचे कि परे?
0: पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत सरल है। किसान भाई अपनी खतौनी, आधार, बैंक पासबुक लेकर के राजकीय गोदामों पर जाएंगे।
1: जी
0: वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, वो उनका जो है तुरंत पंजीकरण करेंगे। अभी एक जो है प्रक्रिया इसमें सरकार ने बढ़ा दिया है कि पहले किसान भाई को पंजीकरण कराने के बाद उनको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है,
1: जी
0: तो यह कार्य भी जो है गोदाम पर वो बुकिंग हो जाएगा उनका। बुकिंग कराने के बाद वो फिर फिंगर लगा करके वहाँ से बीज बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
1: अच्छा, हम समझते हैं भैया, जितना उनका जोत होए उन्हीं हिसाब से भैया उनका बीज के भी उपलब्ध करावा जाए।
0: जी, खतौनी जितनी होगी, खतौनी में जो भी उनका रकबा जितना होगा, सरकार 2 हेक्टेयर तक किसानों को अनुदान देती है। बीज पे या खाद पे जो भी चीज़ें हैं किसानों के लिए,
1: जी
0: वो मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक हैं अधिकतम, और न्यूनतम 2 बिस्वा 5 बिस्वा जो भी होगा उनके पास,
1: जी
0: तो ये न्यूनतम उसका है मानक।
1: भैया ये बताओ, जैसे बिया उनका मिल गए, अब ओकर बुआई करेंगे, तो बुआई करते समय का कुछ विशेष बातन पे ध्यान दे पड़े, एक विषय में थोड़ा बताओ।
0: बुआई के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले गहरी जो है खेत में अपनी जुताई करें,
1: जी
0: 2 बार जो है कल्टीवेटर से दोबारा जो है जुताई करके, अगर उस पर नमी है
1: जी
0: तो ठीक है, नहीं नमी है तो किसान भाई पलेवा करके 2 विधि से इसकी जो है बीज की बुआई कर सकते हैं। एक तो छिटकवा विधि है
1: जी
0: और एक दूसरी है कूड़ में बुआई। कूड़
1: जी
0: में बुआई करने के लिए किसान भाई सीड ड्रिल, जीरो टिल या सुपर सीडर का जो है प्रयोग करके खेत में जो है लाइन से बुआई कर सकते हैं।
1: अच्छा, बीज की मात्रा भैया, चाहे वो लाइन से बोई ही चाहे छिटकवा बोई ही, का मात्रा वही रखे पड़े या अलग रखे पड़े?
0: लाइन से अगर बुआई करते हैं किसान भाई तो उसमें बीज की मात्रा कम लगती है।
1: जी
0: जैसे आप बाजरा को ही ले लीजिए, अगर बाजरा की किसान भाई बुआई करते हैं तो बाजरा 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघे में 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है।
1: जी जी
0: जबकि अगर हम छिटकुआ विधि से बुआई करते हैं तो उसमें 1 से 2 किलो बीज जो है हमको ज़्यादा लगाना पड़ता है।
1: अच्छा, का मतलब कि कूण से अगर बुआई, भाई उनके पास व्यवस्था बा तो कूण में अगर बुआई करी तो बिया की मात्रा कम लागे, लेकिन छिटकवा बीज से बुआई करी तो बिया की मात्रा बढ़ावे पड़े।
0: जी
1: अब भैया जैसे बुआई कर दे ओकरे बाद मान लें भाई बरसात ना होत बे, तो ऐसा स्थिति में का कुछ सिंचाई पे भी ध्यान देख पड़े?
0: इसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की तो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन
1: जी
0: अगर हाँ जैसे वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है या बरसात जैसे नहीं हो रही है
1: जी
0: तो कम से कम 1 या 2 सिंचाई आपको करना होगा।

0: जी
1: ये 90 दिन की फसल है, 80 से 90 दिन की, तो इसमें कम से कम किसान भाइयों को 2 पानी की ज़रूरत पड़ेगी।
0: जी
1: वैसे जो मोटे अनाज होते हैं, ये सूखा, जो सूखे क्षेत्र होते हैं
0: जी जी
1: वहाँ पे जो है आसानी से ये जो है अपना उस पर बढ़वार कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है।
0: अच्छा, जैसे बुआई करत समय का कुछ जैसे बीज के शोधन करे की जरूरत बा, या फिर जैसे बुआई के बाद जो ना है, या साथ में जो ना है उर्वरक के कुछ व्यवस्था करे बा, ऐसा कुछ करे पड़े?
1: देखिए, खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को चाहिए कि कम से कम 40 से 50 टन
0: जी
1: गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर,
0: बढ़ के 4 बीघा में
1: हाँ,
0: जी
1: ये जो है खेत जब तैयार करते हैं उसी समय जो है किसान भाइयों को खेत में डाल देना चाहिए। उसके बाद जो है इसमें, जैसे आपने कहा कि हाँ किसान भाई बीज को शोधित करें,
0: जी
1: तो शोधन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जब बच्चा शुरू में जन्म लेता है तो उसको रोग से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है
0: जी
1: उसका,
0: जी
1: उसी तरीके से बीज को

0: शोधन करे के जरूरत बा, या फिर जैसे बुआई के बाद जो ना है, या साथ में जो ना है उर्वरक के कुछ व्यवस्था करे के बा, ऐसा कुछ करे के पड़े।
1: देखिए, खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को चाहिए कि कम से कम 40 से 50 टन
0: जी
1: गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर,
0: बढ़ के चार भी हमें
1: हाँ,
0: जी
1: ये जो है खेत जब तैयार करते हैं उसी समय जो है किसान भाइयों को खेत में डाल देना चाहिए। उसके बाद जो है इसमें जैसे आपने कहा कि हाँ किसान भाई बीज को शोधित करें,
0: जी
1: तो शोधन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जब बच्चा शुरू में जन्म लेता है तो उसको रोग से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है
0: जी
1: उसका,
0: जी
1: उसी तरीके से बीज को रोगों से बचाने के लिए उसका यदि हम पहले ही उसका जो है शोधन कर देते हैं तो आगे जो रोग लगने वाले होते हैं उसकी संभावना बहुत कम होती है। इसलिए आपको बीज शोधन करने के लिए जैसे आपका थीरम है
0: जी
1: या कार्बेंडाजिम है, ये 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको जो है बीज हम शोधित कर सकते हैं।
0: का मतलब बिया के बिया ले के ओकर शोधन करके तब जो ने तकनीक से आप बताते हैं, अगर बुआई करी तो निश्चित तौर पे मोटा अनाज से भी उनका अच्छा लाभ होए आप आएँ और इतना बढ़िया जानकारी दें। सब जानकारी के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे मोटे अनाज की खेती विषय पर कमाल अहमद से चंद्रजीत यादव की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव की वार्ता, सेप्टिसीमिया कारण, लक्षण और उपचार।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव। आज 1 दिसंबर है और ये आज विश्व एड्स WHO ने एक एड्स के लिए एक स्पेसिफिक डे डिसाइड किया जो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। 1988 से स्टार्ट हुआ। बेसिकली एक जागरूकता है जो पब्लिक के अंदर जागरूक होने के लिए, जैसे एड्स की ये छुआछूत की कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये नॉर्मली किसी के छूने को, किसी के साथ खाने से, किसी के साथ सोने से ऐसा नहीं फैलता है। ये बेसिकली ये एक डिजीज़ है जो वायरस के थ्रू होता है। और अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो आजकल बड़ा रिसेंटली है कि ये सेप्टिसीमिया होता क्या है। बेसिकली सेप्सिस जो है ये एक, अगर आप सीधी भाषा में समझें तो ये जैसे फूड पॉइजनिंग में पेट का इन्फेक्शन होता है, ऐसे ही इसको ब्लड पॉइजन बोला जाता है। मतलब ब्लड में ये इन्फेक्शन फैल जाता है। जो ये सेप्सिस का मतलब है कि ब्लड में इन्फेक्शन, जो ब्लड में हमारे एक सर्टेन लेवल पे जो केमिकल और मीडिएटर्स होते हैं वो उसका एक सर्टेन अमाउंट से एक लेवल जब हाई हो जाता है तो उसको हम लोग सेप्सिस बोलते हैं। बेसिकली नॉर्मली ये किसी भी इन्फेक्शन से बॉडी में, सपोज करिए आपको कभी यूरिन इन्फेक्शन हुआ तो वो सेप्सिस में कन्वर्ट हो गया, आपको थोड़ा सा कॉफ कोल्ड हुआ वो सेप्सिस में कंट्रोल हो गया। लेकिन सेप्सिस में बेसिकली ये होता है कि सेप्सिस में पूरे बॉडी में एक तरह से इन्फेक्शन ये हो जाता है। नॉर्मली जो सेप्सिस होता है वो 3 स्टेज में सेप्सिस होता है। एक तो सिंपली स्टेज 1 होता है, उसको सेप्सिस बोलते हैं, प्लेन सेप्सिस, जिसमें आपको हाई ग्रेड फीवर, मोर देन 101 टेम्परेचर रहता है आपका, थोड़ा सा आपको रेस्टलेसनेस रहेगी, हार्ट बीट आपका मोर देन 100 रहेगा और थोड़ा सा आप माइल्डली मतलब कन्फ्यूजन के स्टेज में रहेंगे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम जैसे लग रहा है आपको, बॉडी पेन रहेगा, हेडेक होगा। इस स्टेज में आप सिंपल एक एंटीबायोटिक, ओरल एंटीबायोटिक से भी कभी कभी रिस्पॉन्ड कर जाता है, मरीज रिकवर कर जाता है। दूसरा स्टेज आता है कि सीवियर सेप्सिस। सीवियर सेप्सिस में नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, इसमें जब इन्फेक्शन ये हो जाता है इसको हम लोग सीवियर सेप्सिस में कहते हैं। इसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है और हाई एंटीबायोटिक्स पे आपको रखा जाता है। नॉर्मली पेशेंट, मैक्सिमम पेशेंट इसमें भी रिस्पॉन्स कर जाते हैं और वो 2-4 दिन के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाते हैं। इसके बाद का जो स्टेज आता है वो उसको हम लोग सेप्टिक शॉक बोलते हैं। सेप्टिक शॉक का मतलब है कि ये पूरे बॉडी में फैल चुका है इन्फेक्शन।

0: के आपका ब्लड प्रेशर डाउन है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आपका हार्ट बीट मोर देन 120 जा रहा है, रेस्पिरेशन आपका मोर देन 30 जा रहा है, और आप ये बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ गए हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का ये मतलब है कि कभी कभी सेप्टिक शॉक में विद इन 12 आवर्स में मरीज की डेथ हो जाती है, मतलब मरीज दम तोड़ देता है। अब इसमें क्या है कि इसमें कभी कभी एंटीबायोटिक से अगर कवर नहीं हो पाता है तो इसको हम लोग लाइफ एक सपोर्ट मशीन, जैसे हमारे पास बाईपैप मशीन होती है उससे हम कुछ सपोर्ट देते हैं, अगर उससे रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम नॉर्मली फिर उसके बाद वेंटिलेटर पे जाते हैं, और बहुत सारे वैसोप्रेशर्स आते हैं जिसको हम फिर मरीज का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए वो स्टार्ट करते हैं। और हाई स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, आजकल तो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आ गई हैं जिसके जिससे आप, ऐसा नहीं है नॉर्मली पेशेंट, सीवियर सेप्टिक शॉक वाले मरीज भी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस आजकल बहुत ही एडवांस हो गया है, बहुत हाई स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आएंगे जिससे मरीज रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। अब इसमें ये रहा कि हम इसको इससे बचें कैसे, इसका प्रिवेंशन कैसे करें कि हम स्टेज 3 में या स्टेज 2 में ना जाएं, प्लेन सेप्सिस वाला जो स्टेज 1 स्टेज में रहें और हम रिस्पॉन्ड कर जाएँ। इसमें यही है कि आपको जैसे ही आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, हल्का सा फीवर आया, 99-100 आया, आप किसी अब नियर बाई फिजिशियन के पास जाएँ, सिंपल जो भी ब्लड टेस्ट एडवाइस करता हो फिजिशियन वो ब्लड टेस्ट कराएं, ईसीजी करना है तो ईसीजी अगर बोलता है फिजिशियन ईसीजी कराएं, एक्सरे करता बोलता है तो एक्सरे कराएं, और नॉर्मली ओरल एंटीबायोटिक से आप सबसाइड कर जाते हैं, पेशेंट 2-3 दिन में रिकवर कर जाता है। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो आप नेक्स्ट टाइम फिर 3 दिन बाद फिजिशियन के पास जाएं, कंसल्ट करें उससे कि नहीं भाई मेरा बुखार नहीं ठीक हुआ, मुझे अब दिक्कत हो रही है, नॉर्मली पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव की वार्ता, सेप्टिसीमिया कारण लक्षण और उपचार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 11 बजे आप सुनेंगे लखनऊ स्थित इमामबाड़ा गुफरा मआब में होने वाली मजलिस ए शाम ए गरीबा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन, दिन में 12:15 पर उस्ताद साबरी खां का सारंगी वादन और दिन में और रात 10:30 पर कमला बोस का ख्याल गायन प्रसारित किया जाएगा।

सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की। सुबह 9:00 सुनिएगा फिल्म संगीत सुगम संगीत के कार्यक्रम में। सुबह 9:50 पर अरुण गुलवाड़ी के स्वर में भजन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। सुबह 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे अखिलेश कुमार यादव और साथी। ग्यारह बजे सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। 11:30 पर यूथ एक्सप्रेस कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम। दोपहर 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। नन्हे मुन्ने सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया शाम 5:00। युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे हेलो पंचायत के अंतर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी के साथ नीलकांत तिवारी और अरविंद कुमार की बातचीत। रात 8:30

पर अंग्रेजी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर के राशि की वार्ता जेन जी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। रात 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा और रात 10 सुनिएगा नरेश मिश्र का लिखा नाटक छोटी भाभी। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

पक्षीराज गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनाते हुए काकभुशुंडी ने बताया कि शायद ही कोई ऐसी योनि होगी जिसमें उन्होंने जन्म नहीं पाया। अपने अनेक जन्मों में उन्होंने योग, जप, तप, दान, पुण्य सभी कुछ किया। कलयुग में उनका जन्म अयोध्या के एक शूद्र कुल में हुआ। उस जन्म में वे मन, वचन और कर्म से भगवान शिव के आराधक थे। शिव भक्त होने का उन्हें मात्र अभिमान ही नहीं था, बल्कि वे अन्य सभी देवताओं की निंदा भी करते। कलयुग में धर्म के विरुद्ध आचरण होता है। डींग मारने वाले पंडित और दंभी व्यक्ति संत कहलाते हैं। स्त्री वश में होकर व्यक्ति मदारी के बंदर की तरह नाचता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब लोगों के गुण समझे जाते हैं। शिष्य गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता। स्वयं गुरु भी ज्ञान दृष्टि रहित होता है। तनिक से लाभ के लिए लोग गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। ये है कलयुग की विशेषता।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन, लीजिए सुनिए सुबह फिल्म का ये भजन। लता मंगेशकर की आवाज़ में संगीत दिया है सुधीर फड़के ने, रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की।

अभी आपने सुना सुबह फिल्म का ये भजन लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अलका याग्निक के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। अब कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरनगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। आरोपितों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
1: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर उन्होंने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए

0: कहा कि इससे प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। बैठक के दौरान अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री कल अयोध्या भी पहुंचे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
1: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर का उद्घाटन किया। इस रसोई घर का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। यहां प्रतिदिन 1,00,000 स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार कराकर विद्यालयों में वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा को सशक्त समाज की पहचान बताते हुए कहा,
2: शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। शिक्षा जैसे होगी, समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। मैं आह्वान करूंगा बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वे इस बात को ध्यान में रखें कि कोई बच्चा छूटने न पाए, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
3: भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ करीब 500

0: 100 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशुरा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के संपन्न होने के बाद ताजियों को कर्बला में दफन कर दिया जाएगा। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट से 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले शाही जुलूस को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। इससे पहले कल मुहर्रम की 9वीं तारीख पर भी प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए। गोरखपुर सहित राज्य के कुछ पूर्वी जनपदों में आज तड़के हुई बारिश से सुबह का मौसम सुहावना हो गया है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में कल भी हल्की बारिश हुई थी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशुरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन, राग है नट भैरव।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन, राग था नट भैरव। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: सीमा रेखा के बाहर
1: मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने

0: उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।

0: Ranjit, and now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be a major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है। मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बैन अलावामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इकतसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उम्दा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा अक्वामे मुत्तहदा सेक्रेटरी जनरल की इक्तसादी उमूर की स्पेशल एडवोकेट से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे पर मबनी इनकलाब किस तरह इक्तसादी खिदमात तक ज्यादा रसाई को मुमकिन और उन्हें किफायती बना रहा है, जिससे रहन सहन में आसानी में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग बाख्तियार हो रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में शराकतदार मुल्कों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने की खातिर मुसलसल पुरअज़्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 27 से 29 तारीख तक सेशेल्स के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो वहां सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत दिफाई अफवाज के एक दस्ते और भारतीय बहरिया के 2 जहाजों के साथ तकरीबात में शामिल होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की रोकथाम से मुतालिक तालमेल मरकज की आला सतह की 10वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। मनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो ने इस मीटिंग का अहतमाम किया है। इसमें मरकजी वजारतों, रियासती सरकारों और मनशियात की रोकथाम से मुतालिक कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, ताकि मुल्क में मनशियात के स्मगलिंग की रोकथाम की कोशिशों का जायजा लिया जा सके और उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस मौके पर जनाब अमित शाह 2026 से लेकर 2029 तक के अरसे के लिए मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक विजन दस्तावेज भी जारी करेंगे। सनती और कमर्शियल एलपीजी सारिफीन को बड़ी राहत पहुंचाते हुए सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर सभी तरह की बंदिशें हटा ली हैं और इसकी सप्लाई उसी सतह पर बहाल कर दी है जो मगरबी एशिया बहरान से पहले थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने एक बयान में कहा है कि बहरान शुरू होने पर बल्क एलपीजी की जो सप्लाई मुअत्तल कर दी गई थी, उसमें बहरान से पहले की खपत की सतह की 50% की रियायत की गई है, जिससे कमर्शियल और सनती सारिफीन को काफी राहत मिली है। एलपीजी सप्लाई की सूरत हाल ही में बेहतर होने के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। सरकार ने एलपीजी पूल के लिए C3 C4 स्ट्रीम की मुंतकली को कम करने का भी फैसला किया है। मगरबी एशिया बहरान

0: वेनेजुएला की सदर ने जलजले के तनाजुर में भारत की यगानगत को तस्लीम करते हुए कहा है कि वो मुश्किल की घड़ी में इश्तराक के जज्बे के साथ खड़ा है। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने हक व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था उसकी याद में यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं, मजालिस का भी एहतमाम किया गया है जिसमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में कल रात इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए बांग्लादेश ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 136 रन बनाए। भारत के लिए राधा यादव ने 3 जबकि श्री चन्नी ने 2 विकेट हासिल किए। इसके जवाब में भारत ने जीत का निशाना 16 ओवर्स और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में शानदार 53 रन बनाए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए इतवार के रोज ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। फीफा आलमी कप में आज सुबह सवेरे न्यूजर्सी स्टेडियम में ग्रुप ई के एक मुकाबले में एक्वाडोर जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। इससे कबल फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाओ को 2-0 से हराया। वो पहली मरतबा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। टीम के लिए निकोलस पेपे ने 2 गोल किए। निशानेबाजी में जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कल 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में मजीद 4 तमगे जीते और उसके कुल तमगों की तादाद 25 हो गई। मर्दों के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में राजचंद्रा ने कांसे का तमगा जीता जबकि कुमार योगेश चौथी पोजीशन पर रहे। योगेश, प्रतीक और अभिनव चौधरी पर मुश्तमिल भारतीय टीम ने टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। आखिरी रोज भारत ने 4 तमगे जीते और तमगों की तादाद 25 हो गई, जिनमें सोने के 7, चांदी के 8 और कांसे के 10 तमगे शामिल हैं, जिसके बाद भारत लगातार दूसरी मर्तबा तमगों के मामलों में सरफहरिस्त रहा। क्रिकेट में आज बेलफास्ट में पहले टी20 बैन अलावामी मुकाबले में भारत मेजबान आयरलैंड का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इतवार के रोज भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी टी20 मैच खेलेगी। इसके बाद सुरेश अय्यर की कप्तानी में मर्दों की भारतीय टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी। इसका आगाज आइंदा माह की 1 तारीख से होगा। इसके बाद 3 एक रोजा बैन अलावामी क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले सैकड़ों अफराद हलाक, 1,000 से जायद जख्मी, 10,000 से 1,00,000 के दरमियान अमवात का खदशा, दुनिया के कई मुल्कों ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। इसी खबर से मुतालिक रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में जलजले से भारी तबाही पर दुख, वजीर आजम ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, एलपीजी की सप्लाई पर से तमाम पाबंदियां हुकूमत ने उठाई, अब लोगों को मामूल के मुताबिक गैस सिलेंडर दस्तियाब होगा। भारत अमरीका मेगा डील जल्द, दुनिया की नजरें 24 जुलाई पर टिकी हुई हैं। यह खबर रोजनामा प्रताप के सफ़े अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ मौजूद है। इसी सफ़े की एक और खबर है, दिल्ली की 270 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा, रेखा गुप्ता का बयान। रोजनामा प्रताप ने रेखा गुप्ता के इस बयान को भी नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि दिल्ली के 75 सीएम श्री स्कूलों में नई सहूलियात तैयार की जाएंगी। कुछ दीगर अहम खबरें इस तरह से हैं, हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 20 जुलाई 2026 से कर दिया गया है, आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है। 1,000 उम्रा जायरीन शाह सलमान के शाही मेहमान बनेंगे, मगरबी यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में नए रिकॉर्ड कायम।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब

0: معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے. اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا, جس میں شفالی ورما کی عمدہ کارکردگی کا اہم رول رہا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर. थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
2: डायल कीजिए 8700014242.
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242.
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा.
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए.
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए.
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए.
5: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज. सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार. श्रोताओं, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर. नशा एक ऐसी बीमारी है जो युवा पीढ़ी से लेकर वृद्ध तक को अपनी चपेट में लेकर उसे कई तरह से बीमार कर रहा है. शराब, सिगरेट, तंबाकू एवं ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर लोग नशे का शिकार हो रहे हैं. श्रोताओं, आज है 26 जून यानी 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1987 को पारित एक प्रस्ताव के बाद से यह दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाने लगा. अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 2026 की थीम है विश्व मादक पदार्थों की समस्या, स्थायी मुद्दे, नई चुनौतियां. श्रोताओं, नशे की लत बहुत ही बुरी होती है, जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है.

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नशा निषेध दिवस की। आज हम देखते हैं कि वृद्धों से ज़्यादा जो आज के युवा हैं वो नशे की चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। नशे की लत ने इंसान को उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि व्यक्ति नशे के लिए जुर्म भी कर सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार हर वह चीज़ जिसकी आपको लत लग जाए नशे की श्रेणी में आता है। जैसे मादक पदार्थों के अलावा चाय, कॉफ़ी, वीडियो गेम्स, स्मार्टफोन, फेसबुक आदि का ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना नशे की। मादक पदार्थों के सेवन से सबसे बड़ी हानि स्वास्थ्य की होती है। इससे आपके शरीर के कई अंगों पर एक साथ विपरीत असर पड़ता है। खास तौर पर यह आपके दिमाग को भी अपनी चपेट में ले लेता है। नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है और मानसिक तनाव से ग्रसित होता है। नशा करने के लिए सिर्फ मादक पदार्थों की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि नेल पॉलिश, पेट्रोल की गंध, झंडू बाम का सेवन, नशीली दवाएं, कुछ इस तरह के नशे भी किए जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। कई नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं जिससे व्यक्ति को नशा से छुटकारा मिल सकता है। हमारे देश में नशा एक गंभीर समस्या बन चुका है जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है। इसलिए हमें नशा मुक्ति की ओर कदम बढ़ाना होगा। नशा मुक्ति के लिए सबसे पहले हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा, सही मार्गदर्शन लेना होगा।

श्रोताओं, नशे की लत से मुक्ति पाने के लिए सबसे ज़रूरी है परिवार का सहयोग और सही चिकित्सा। अकेले नशा छोड़ने के बजाय डॉक्टर या काउंसलर की मदद लें ताकि शारीरिक और मानसिक लक्षणों से सुरक्षित रहें। उन जगहों, दोस्तों या आदतों से दूर रहें जो आपको नशा करने के लिए उकसाते हैं। जब भी नशे की तीव्र इच्छा हो, अपना ध्यान किसी अन्य गतिविधि जैसे व्यायाम, वॉक या किसी दोस्त से बात करने में लगाएं। परिवार और दोस्तों को बताएं कि आप नशा छोड़ रहे हैं, उनसे आपको प्रोत्साहन मिलेगा। ज़्यादा गंभीर लत के लिए किसी अच्छे मान्यता प्राप्त रिहैब सेंटर में भर्ती होकर व्यवस्थित रूप से इलाज करवाना भी सुरक्षित रहेगा।

0: श्रोताओं, आपको बता दें, आज मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। यह महीना पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है और अन्याय के खिलाफ सब्र और डटे रहने का संदेश देता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।

0: उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: बोल बोल के थक गया,
5: क्या हुआ?
4: नया किट बैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
6: RBI कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना बजरंगी भाईजान का ये गीत, और लीजिए अब सुनिए। संगीत दिया था प्रीतम ने और रचना थी कौसर मुनीर की। लीजिए अब सुनिए अधिकार फिल्म में मोहम्मद रफी को। संगीत है आर डी वर्मन का और रचना है रमेश पंत की।

वाली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ, बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही

तू पढ़ना हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना मोहब्बत।

0: अभी आपने सुना अधिकार फिल्म में मोहम्मद रफ़ी को, और अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में जगह जगह योग शिविर लगाए गए। विश्व प्रख्यात ताजमहल के पार्श्व में योगा कर निरोग रहने का दुनिया को संदेश दिया गया। वहीं आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर योगा अभ्यास करते हुए सभी को करो योग रहो निरोग का देश और दुनिया को संदेश दिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस पर दिए गए संबोधन का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। योग शिविर में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, सरकारी अर्ध सरकारी आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में मौजूद शहरवासियों को योगाचार द्वारा योग के विभिन्न आसन कराए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और पूरी दुनिया हमारी विद्या और विद्या का अनुगमन कर रही है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करती है।
3: करें योग रहे निरोग, और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और मेंटल हेल्थ के समय विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य में योग का बहुत बड़ा योगदान है।
2: उन्होंने कहा कि योग तनाव को दूर करता है और एकाग्रता पैदा करने के साथ साथ अनेक बीमारियों से भी बचाता है। बीते दिनों आगरा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ब्रिक्स इंडिया 2026 के तहत पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरे ब्रिक्स एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की बैठक में केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेन चौधरी सहित ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया सहित 21 देशों के ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों की नीति निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लेकर वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संबोधित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और कमजोर वर्गों के उत्थान में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 8.6 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं जो 38 से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन केवल संवाद का अवसर नहीं है बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग, तकनीकी
4: स्वच्छता अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी विभिन्न स्थानों पर जाकर के इस अभियान के माध्यम से एक संदेश समाज में देने का कि पूरा समाज जब किसी अभियान का हिस्सा बन जाता है तो वो अभियान एक आंदोलन बन जाता है।
2: आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के पी इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित किसान, जवान, महिला स्वाभिमान रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दी घाटी को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता और उनका शौर्य किसी दरकार और इतिहासकार का मोहताज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
5: हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता

0: क्या रहा है, यह भारत की हैसियत नहीं है।
1: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विकासखंड अफजलगढ़ स्थित ग्राम आलमपुर गावड़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित, शोषित एवं जरूरतमंद वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों तथा 50 पूर्व सैनिकों एवं लीज धारकों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने पर लाभार्थियों को न केवल भूमि पर वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होगा बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुगमता से मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य योजनाओं के दैनिक लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डेमो चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चयनित 11 प्रेरणादायी लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों ने बताया,
3: जो हमारी जमीन में ट्रेनिंग दो में थी, अब एक में हो गई है, हमें पूर्ण भूमिधारी का अधिकार मिल गया है, इसमें हम लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, हमारा स्वामित्व पूरा हो गया। सरकार ने हमें वो प्रमाण पत्र दिए और हमें खतौनी दी है, हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
2: मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे तथा अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा सरकारी योजनाओं का सदुपयोग कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। जन विभीषिका के शिकार विस्थापितों को भूमि आवंटन के मालिकाना अधिकार के अभिलेख पत्र प्रदान करने से पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों के तत्वाधान में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगाई गई बिजनौर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारम्भ किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मसूद, जिला अध्यक्ष भाजपा भूपेन्द्र चौहान तथा जिलाधिकारी जसजीत कौर की उपस्थिति में सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंदिरा बाल भवन में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि तारिक मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा जनपद की विकास परक योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के जरिए अब बिजनौर जिले के पारंपरिक स्वादों को न केवल नई पहचान मिलने जा रही है बल्कि इससे जुड़े छोटे और मझोले कारोबारियों के दिन भी बहुरने वाले हैं। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब एक जिला एक व्यंजन योजना के अंतर्गत बिजनौर के 4 प्रमुख स्थानीय उत्पादों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब इन व्यंजनों को तैयार करने वाले स्थानीय निर्माताओं को सरकार की तरफ से भारी अनुदान और आसान किस्तों पर ऋण की सुविधा मिलेगी। जिले में प्रमुख व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए प्रशासन ने 4 खाद्य पदार्थों का चयन किया है। धामपुर की सिंगाड़े की कचरी, नजीबाबाद की गजक, सोन पापड़ी और बतीसा पारंपरिक रूप से तैयार होने वाला एक मीठा व्यंजन है जो इस सूची का मुख्य हिस्सा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आवेदकों को ऋण सुविधा के साथ भारी अनुदान दिया जा रहा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया,
4: परंपरागत मिष्ठान है या कुछ ऐसे व्यंजन है जो अभी तक लोकल लेवल तक ही सीमित थे, उसी जनपद तक सीमित, अब इस स्कीम से उनकी पहचान प्रदेश भर में और देश भर में या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का सरकार का मुहिम है।
1: ये था आकाशवाणी।

0: लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

हुआ, सर झुक गया फलक का ये औजे जमी हुआ, खुर्शीद महवे हुसने हुसैन।

लग गए चेहरे के नूर से, हातिफ ने दी सदा कि जहे शाने करबला, मुख्तारे कायनात है मेहमाने करबला, फूलों से आज भर गया दामाने करबला, बस अब नवा बहिश्त है बुस्ताने करबला, खुर्शीद दीन के फैज़ से क्या क्या शरफ मिले, रोशन है जिससे अर्श वो दुर्रे नजफ मिले, अब्बास ने कहा कि मेरा फख्र है ये काम, बीवी तुम्हारे बाप का अदना हूँ।

मैं गुलाम, दी तुमने आबरू मुझे ऐ दुख्तरे इमाम। अब हो गया जहां में बहिश्ती हमारा नाम, कौसर मैं सम

कहकर ये बात बाग उठाई समंद की, सूरत बदल गई फरसे सर बुलंद की, छलबल हरन की तेज परी थी परंद की, सूरत बलाएं लेती थी हर जोड़ बंद की, बिजली चमक के छुप गई पारा तड़प गया, और जंगल में यूं उड़ा कि चिकारा तड़प गया, कदम जमीन पे न रखता था ना से, बिजली को खौफ क्या है नशेबो फराज से, चालाकियां दिखाता था

चमक के छुप गई, पारा तड़प गया और जंगल में यूं उड़ा कि चिकारा तड़प गया। कदम जमीन पे न रखता था ना से, बिजली को खौफ क्या है नशेबो फराज से। चालाकियां दिखाता था किस इम्तियाज से, उड़ता था पर सदा न निकलती थी सांस से। राकिब वो हैं जो फर्क दो आलम के ताज हैं, घोड़ा भी जानता है कि नाजुक मिजाज हैं। मतलब मुनाफिकों के जो हैं मुलतवी रहें, या रब तेरे हुसैन के बाजू कवी रहें। तैगें खिंची लिए हुए भागे जो अहले शर, कटकर किसी का हाथ गिरा और किसी का सर। तलवार यहाँ पड़ी थी किसी की तो वहाँ पसर, बरछी थी इस शकी की तो उस नहस का जिगर। ये जंग थी कि हश्र कोई जानता न था, बेटे को बाप खौफ से पहचानता न था। पढ़कर रजज अली ये वली का पेसर बढ़ा, गोया शिकार खेलने को शेर नर बढ़ा। दरियाए कहरे खालिक जिन्नो बशर बढ़ा, बहरे नबर्द मालिके फतहो जफर बढ़ा। और तड़पा जो रख्श बर्क निगाहों से गिर गई, आमद खुदा के शेर की आंखों में फिर गई। जब करबला में दाखिले शाहिदी हुआ, अल्लाह रे जलजला की लरसते थे दश्तो दर, जंगल में छुपते फिरते थे डर डर के जानवर। जिन्नात कांप कांप के कहते थे अल हजर, दुनिया में खाक उड़ती है अब जाएं हम किधर। अंधेर है उठी बरकत अब जहान से, लो मिल गया जमी का तबक आसमान से। खाते थे तन पे जख्म कुछ अपना न था अलम, बहता था खून रकाबों में थमते न थे कदम। मुजतर था मश्क के लिए वो साहिबे करम, आधा हदफ बनाए थे कीने से मश्क को, पर ये जुदा न करते थे सीने से मश्क को। गुर्ज़े सितम से शक हुआ नागा सरे जनाब, थर्राए होठ छुट गई दांतों से मश्क आब। फरमाया हाय देंगे सकीना को क्या जवाब, घोड़े से थर थर आके गिरे मिसले आफताब। तड़पे उठे कराह के खामोश हो गए, अरे मुंह रख के खाली।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। श्रोताओं, आज हम

बात करेंगे करियर के नए रास्ते बनाम पारंपरिक नौकरी से आगे। आज हर युवा रोजगार की तलाश में है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में नौकरी और करियर शब्दों का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह मूल रूप से अलग अलग हैं। नौकरी अल्पकालिक होती है और करियर लंबे समय तक। यह आपकी कौशल और आकांक्षाओं के अनुरूप होता है। नौकरी जीवन का एक हिस्सा है। नए जमाने के साथ नए स्किल्स सीखना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे आप बेस्ट जॉब पा सकें। आज के समय में करियर का रास्ता चुनना पहले से बिल्कुल अलग है। परंपरागत रूप से जब लोग नौकरी की तलाश करते थे, तब कुछ ही पारंपरिक करियर विकल्प में थे, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बैंकिंग और प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी पाना।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं करियर के नए रास्ते बनाम पारंपरिक नौकरी की। लेकिन आज के इस दौर में लोग नौकरी से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, कंटेंट डेवलपमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे कई अन्य करियर शामिल हैं। हालांकि ये पद अक्सर कर्मचारी के कौशल पर आधारित होते हैं और इसमें तेज़ी से विकास हो रहा है। परंपरागत नौकरियां आमतौर पर पूर्णता की दिशा में निर्धारित होते हैं। छात्र किसी प्रतिष्ठित कॉलेज कार्यक्रम से डिग्री प्राप्त करके पेशे के लिए आवश्यक परीक्षाएं पास करते हैं और फिर पेशे में प्रवेश करते हैं। परंपरागत नौकरियों में से एक स्पष्ट प्रगति होती है, जिसमें छात्रों और परिवारों के लिए अपने जीवन की योजना बनाना आसान हो जाता है।

आज के समय में करियर के नए और रोमांचक रास्ते खुल चुके हैं जो पारंपरिक विकल्पों से काफ़ी अलग हैं। अब सफलता के लिए केवल डिग्री की आवश्यकता नहीं है बल्कि स्किल बेस्ड कौशल आधारित डिजिटल अवसरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की भारी मांग है। यूट्यूब पॉडकास्ट और ब्लॉगिंग के जरिए लोग घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। हर छोटी बड़ी कंपनी को अपनी ऑनलाइन पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। करियर के नए रास्ते जैसे डेटा साइंस, ग्रीन करियर, हेल्थ केयर और वेलनेस इत्यादि हैं।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं करियर के नए रास्ते बनाम पारंपरिक नौकरी से आगे। पारंपरिक नौकरियों से हटकर आज के समय में कई नए और बेहतरीन करियर मौजूद हैं। आज के समय में अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए कई नए क्षेत्रों में घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक कंपनियों में काम कर सकते हैं। आपको परंपरागत नौकरी से बेहतर इनकम भी मिल सकता है। युवाओं की रुचियां लगातार बढ़ रही हैं और वे करियर के नए क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं। करियर का चुनाव व्यक्ति की रुचि, क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। आज के युग में केवल पारंपरिक नौकरी तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि सही योजना, कौशल और मेहनत के साथ नए अवसरों का लाभ उठाया जाए तो वे भी उज्जवल भविष्य का आधार बन सकते हैं। इसलिए युवाओं को बदलते समय के अनुसार स्वयं को तैयार करते हुए अपनी रुचि के अनुरूप करियर का चुनाव करना चाहिए।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है। लोकगीत कलाकार हैं अखिलेश कुमार यादव और साथी। आइए आपको सुनवा रहे हैं देवी गीत।

अभी आप अखिलेश कुमार यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लोकगीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं रविंद्र जैन।

भारतीय संगीत जगत में जब भी ऐसे कलाकारों की बात होती है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों को अपनी सफलता बनाया, रविंद्र जैन का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन जन्म से दृष्टिहीन थे, लेकिन उनकी प्रतिभा और संगीत साधना ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों और गीतकारों में शामिल कर

रविंद्र जैन ने मधुर धुनों, सरल शब्दों और भावपूर्ण संगीत से करोड़ों लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। रविंद्र जैन ने 1970 के दशक के हिंदी फिल्म संगीत में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, लोक धुनों और मधुरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

उन्होंने चितचोर गीत गाता चल अखियों की झरोकों से नदिया के पार और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में ऐसा संगीत दिया जो आज भी उतना ही लोकप्रिय है। उन्हें महान गायक यशोदास को हिंदी फिल्मों में विशेष पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचनाओं में सादगी और आत्मीयता का ऐसा जादू था जो सीधे श्रोताओं के हृदय को छू लेता है। फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण के लिए भी अस्मरणीय संगीत तैयार किया।

उनके द्वारा रचित भजन शीर्षक गीत आज भी श्रद्धा के साथ सुने जाते हैं। उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्हें फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर भी प्राप्त हुआ। उनकी उपलब्धियां ये सिद्ध करती हैं कि सच्ची प्रतिभा किसी भी शारीरिक सीमा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है।

रविंद्र जैन इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका संगीत आज भी जीवित है। वे केवल एक संगीतकार नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और समर्पण के प्रतीक थे। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प और प्रतिभा हो तो कोई भी बाधा सफलता के मार्ग को नहीं रोक सकती। भारतीय संगीत जगत सदैव इस महान कलाकार का ऋणी रहेगा, जिनकी धुनें आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो का सबसे रंगीन और बेहद एनर्जेटिक शो यूथ एक्सप्रेस। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर लिसनर्स, जहां बात होती है सपनों की, संघर्ष की, जुनून की और उस आग की जो हर युवा के अंदर जलती है। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त अभिषेक, और कुछ ही पलों में हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों की जो हमारे दिल से जुड़े होते हैं, जो आज के युवाओं की धड़कन है। So dear listeners, be ready for the entertainment, for the motivation with positive energy. जहां जिंदगी को समझने की थोड़ी बातें भी होंगी, because our topic is failure से fight back. जहां हमें रुकना नहीं, थकना नहीं है, बस अपने सपनों की ओर बढ़ते जाना है। तो जरा आवाज बढ़ाइए, मुस्कुराइए और जुड़ जाइए।

हमारे साथ, क्योंकि आज का विषय सिर्फ एक रेडियो टॉपिक नहीं बल्कि लाखों युवाओं की कहानी है। फेलियर से फाइट बैक, यानी गिर कर फिर उठना, हार कर फिर लड़ना और टूट कर भी अपने सपनों को जिंदा रखना। दोस्तों, आज बहुत से युवा साथी अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे हैं और लड़ाई इस बात की कि किसी का रिजल्ट उम्मीद जैसा नहीं आया, किसी की बहुत मेहनत के बाद परीक्षाएं कैंसिल हो गईं, किसी को समाज के ताने सुनने पड़ रहे होते हैं, तो कभी कभी कोई खुद से भी हारने लगता है। लेकिन साथियों, ये बात भी ध्यान रखने की है कि अंधेरा हमेशा सूरज के आने से पहले सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद दस्तक देती है एक नई सुबह, नई किरण। तो साथियों, ज़िंदगी बिना कुछ ऐसी ही है। जीवन में सफलता आने से पहले हमें हज़ारों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और इस अंधेरे से जो हारते नहीं उनके जीवन में एक नए सूरज का उदय ज़रूर होता है। तो साथियों, हमें भी अपने जीवन में एक ऐसे सूरज का उदय करना है जो हमारे सारे अंधेरे मिटा सके। लेकिन शर्त बस इतनी सी, हमें रुकना नहीं, हमें हार नहीं माननी।

दोस्तों, असफलता एक ऐसा शब्द है जिससे शायद हर युवा कभी ना कभी गुजरता ज़रूर है। कोई परीक्षा में पीछे रह जाता है, कोई कभी इंटरव्यू में चयनित नहीं हो पाता, तो किसी का सपना उम्मीद के मुताबिक पूरा नहीं हो पाता। लेकिन सवाल ये नहीं कि असफलता आई या नहीं, सवाल ये है कि उसके बाद हमने किया क्या, क्योंकि ज़िंदगी में मंजिल तक वही लोग पहुँचते हैं जो गिर कर भी उठना जानते हैं। कई बार हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि सच यह है कि फेलियर एक रिजल्ट है। आपकी आइडेंटिटी कभी नहीं हो सकता और हमें इसे अपनी आइडेंटिटी बनाना भी नहीं चाहिए। एक परीक्षा में कम अंक आने का मतलब ये नहीं कि आपकी

क्षमता कम है। एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप काबिल नहीं हैं। हर हार अंतिम नहीं होती, तो दुनिया में कहते हैं ना कि अगर हर हार अंतिम हो जाती है तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं बन पाता। हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा होता है। तो साथियों, इसी से जुड़ी मुझे एक कहानी याद आती है। कहानी क्या, एक सच्ची घटना जो हमारे आसपास और हमारे शहर से ही है। एक लड़का था जिसके घर की हालत अच्छी नहीं थी, दिन में पढ़ाई रात में मेहनत। उसने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की, पहली बार असफल, दूसरी बार असफल, तीसरी चौथी बार असफल, कई बार उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा और ये सामना लगातार उसे छठवीं अटैम्प्ट तक करना पड़ता है। और सातवें अटैम्प्ट में फिर एक ऐसा कुछ होता है जो उसके जीवन में हिस्ट्री क्रिएट करता है। सातवें अटैम्प्ट में वो पीसीएस की परीक्षा देता है, जिसका प्री, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ क्रैक हो जाता है। और दोस्तों, हमें भी इस बात को समझना है कि ज़िंदगी ऐसे ही काम करती है, इसी नियम को समझना है। हमें मेहनत करते रहना है और सही वक्त का इंतज़ार करना है, क्योंकि हारने वालों और जीतने वालों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग लड़ते रहते हैं अपने सकारात्मक विचारों के साथ। साथियों, जब ज़िंदगी मुश्किल सवाल पूछे, जब मेहनत का परिणाम देर से मिले, जब लगे कि अब बस और नहीं, तभी ज़रूरत होती है खुद को याद दिलाने की, तुम हार नहीं सकते, तुम जीत के लिए बने हो।

वाह दोस्तों, क्या कमाल का गीत। सच में कुछ गाने सिर्फ गीत और संगीत नहीं होते, बल्कि वे टूटे हुए हौसलों को फिर से जिंदा कर देते हैं। दोस्तों, आज बहुत सारे युवा नीट बोर्ड एग्ज़ाम या कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर निराश हैं, लेकिन इस निराशा के बीच मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सकारात्मक विचारों का संचार करें, अपने अंदर मनोबल को गिरने ना दें, हौसलों को टूटने ना दें। और कई बार कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, लेकिन इस नेगेटिविटी से हमको निकालना होगा, क्योंकि हमें मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें इस नेगेटिव भरे माहौल में इस चीज़ को हमें अपने जीवन का बैरियर या स्टॉपेज नहीं बनाना है, इस कदम को आगे बढ़ाते हुए इस मुश्किल दौर से हमें निपट कर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि इन सिचुएशंस को हम हैंडल नहीं कर पाते, तो कई बार गलत कदम उठाने की ओर भी हम जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाएं जो आपके और पेरेंट्स की खुशियों को कम कर दें। हम फिर से लड़ेंगे, एक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या, हम 10 एग्ज़ाम फिर से देंगे और ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत ज़रूर आपके लिए नए रास्ते बनाएगी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम जी का सपना एयरफोर्स पायलट बनने का था, लेकिन वो उसमें चयनित नहीं हो पाए थे। अगर उस दिन उन्होंने हार मान ली होती तो शायद भारत को कलाम जैसा मिसाइल मैन कभी नहीं मिल पाता। और थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया और उसने हज़ारों बार एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन जब उनसे पूछा जाता कि क्या आपको हज़ार बार असफल होने का दुख नहीं होता, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने हज़ार ऐसे तरीके और खोज निकाले जिनसे ये पता चलता है कि उन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों, हमें भी ऐसी सकारात्मक सोच, ऐसी ऊर्जा और ऐसे विचारों के साथ आगे बढ़ना है जो ना सिर्फ हमें मोटिवेट करते हैं, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि यही फॉर्मूले हमें भी जीवन में प्रयोग में लाने चाहिए, जो निश्चित तौर पर हमारे करियर को आगे बढ़ाने में काम आते हैं। और कई बार साथियों, रास्ते लंबे हो जाते हैं, मंजिल धुंधली दिखाई देने लगती है, लेकिन जो लोग चलते रहते हैं वही तो इतिहास बनाते हैं। और अगर आपके अंदर भी सपने जिंदा हैं तो ये गीत आपको ज़रूर पसंद आएगा।

करूँगा, एक किसान का घोड़ा भाग गया था। लेकिन लोग बोले बहुत बुरा हुआ। किसान बोला देखते हैं। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा कई और घोड़ों के साथ वापस आया। लोग बोले बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला देखते हैं। एक दिन किसान का बेटा घोड़े से गिरकर घायल हो गया। लोग बोले बहुत बुरा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद युद्ध शुरू हुआ और गांव के सभी युवाओं को सेना में भेज दिया गया सिवाय उस घायल बेटे के। तो साथियों, जिंदगी का हर मोड़ तुरंत समझ नहीं आता। कई बार कुछ चीज़ों का रिजल्ट हमें देर से बाद में समझ में आता है और कभी कभी जो आज हमें हार लगती है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो साथियों, ज़िंदगी तब तक खूबसूरत है जब तक सपने जिंदा हैं और इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। तो उठिए, खुद को फिर से संभालिए और अपने अंदर की आग फिर से जगाइए।

तो दोस्तों उम्मीद है प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। जैसे कभी कभी हम दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाते हैं सोशल मीडिया पर। किसी का सिलेक्शन, किसी की सक्सेस स्टोरी, या कोई दोस्त आपसे अधिक सक्षम और ज़्यादा कमाता है तो उनसे बेवजह तुलना कर खुद को हम कमज़ोर समझने लगते हैं, खुद को इन्फीरियर महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ी देर से, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चलते चलते मैं अभी आपको एक और छोटी सी स्टोरी से कनेक्ट

दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और याद रखिए, ना रुकना है, ना थकना है, ना डरना है, क्योंकि आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। साथियों, आप सुन रहे थे यूथ एक्सप्रेस विशेष, फेलियर एंड नहीं, फ्यूचर की बिगनिंग है। मैं था आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त अभिषेक, एंड होप यू हैव एंजॉयड आवर शो, एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय। बट बिफोर मूविंग अहेड, हाउ यू हैव एंजॉयड आवर शो, यू कैन सेंड योर प्रीशियस फीडबैक ऑन आवर ईमेल आईडी एज yuvvanild@gmail.com, एंड ऑल्सो यू कैन सेंड योर प्रीशियस फीडबैक ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर एज 8004926250, एंड वी विल मीट अगेन। टिल देन, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, एंड बाय बाय।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। आज शाम 6:30 बजे से 7:15 बजे तक विशेष फोन इन पंचायत घर कार्यक्रम हेलो पंचायत घर सजीव प्रसारित किया जाएगा। सभी ग्रामीण भाइयों बहनों से अनुरोध है कि वे अपने गांव संबंधी समस्याएं अथवा यदि कोई संदेश धन्यवाद देना है तो उपस्थित अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे आज शाम 6:30 से 7:15 के बीच फ़ोन नंबर 2970462 पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारा कोड है 0532। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से

0: लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Rama Shankar Mishra, Subhash Srivastava, and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinnu, along with other unidentified accused. The SIT, headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant, submitted its preliminary report to the government on Tuesday, making strict recommendations in the matter. Following this, the FIR was registered yesterday. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence AI technologies at the

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आज रात 11:10 पर हम आपको सुनवाएंगे लखनऊ स्थित इमामबाड़ा गुफरा माँ आप में होने वाली मजलिशे शाम गरिमा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 12:15 हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद साबरी खां का सारंगी वादन। रात 10:30 कमला बोस का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की 12:30 पर। 12:15 हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी। 2:30 NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा। शाम 5:00 नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम

कार्यक्रम सुनेंगी नन्ही दुनिया। 5:15 बजे युवजन का कार्यक्रम होगा युववाणी। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी के साथ बातचीत, श्री नीलकांत तिवारी और अरविंद कुमार की बातचीत सुनवाएंगे। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर अरुणी मिश्र की वार्ता होगी संस्कृत वांगे चिकित्सा विज्ञानम। 7:45 पर सुगम संगीत की कलाकार होंगी प्रियंका त्रिपाठी, इनके गाए गीत और भजन सुनवाए जाएंगे।

अंग्रेजी कार्यक्रम में 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर के राशि कुमार की टॉक जेन ज़ी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। साढ़े 9 बजे कहकशा कार्यक्रम होगा। रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नाटक छोटी भाभी, लेखक नरेश मिश्र। और रात 11:10 पर लखनऊ स्थित इमामबाड़ा गुफरा मआब में होने वाली मजलिशे शामे गरीबा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट होगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद साबरी खां का सारंगी वादन राग गौड़ सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद साबरी खां का सारंगी वादन राग गौड़ सारंग। इनके साथ तबले पर संगत की थी राशिद मुस्तफ़ा ने, तानपुरे पर गुलफाम साबरी ने, स्वरमंडल था कमाल साबरी का, विलंबित रचना एक ताल पर निबद्ध थी और द्रुत रचना एक ताल पर निबद्ध थी। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार।
1: मैं आपका शुभचिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी तो सुनूंगा
0: जी
1: तो पहले अपने संवाद
0: जी
1: और
0: जी
1: अपने थोड़े से गुप्तगु को आगे बढ़ाना चाहूंगा।
0: जी जी जरूर जरूर।
1: मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। सागर से गहरी लगी आपकी दोस्ती, तैरना तो आता था मगर डूबना अच्छा लगा।
0: क्या बात है, क्या शेर आपने कहा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो मेरे ख्याल से आपका गीत भी कुछ ऐसा ही होगा।
1: जी जी सराहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पहली मुलाकात हो रही है,
0: जी जी
1: संदर्भ को देखते हुए

0: फिल्म बड़ी बहन का गीत, चुप चुप करे हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है, ये गीत को सुनना चाहूंगा बहन जी।
1: चलिए हम आपकी पसंद को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: प्रयागराज
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मीरापुर से।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तेरे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
0: एक फूल दो माली फिल्म का ये गाना है, मन्ना डे साहब की आवाज है,
1: हाँ बहन जी,
0: तो आपको बहुत पसंद है ये गीत।
1: हाँ मेरा मेरे लड़के मेरा ही एक लड़का है,
0: जी
1: मेरी बहुत हेल्प करता है।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि माता पिता का
1: हाँ जो
0: इतना
1: कि
0: ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, इसलिए कि मैं आंखों से मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मेरी
0: अच्छा
1: आंखें ही दोनों मेरा पुत्र है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही, और इस तरह से तो बहुत आशीर्वाद भी लगता है बच्चों को अपने माता पिता का। जो जब माता पिता के सामने वो छोटे होते तो माता पिता उनकी लाठी बनते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बच्चों को अपने माँ बाप को संभालना पड़ता है।
1: नहीं, हमारे बच्चे लड़की लड़का दोनों बस हमारा बहुत ख्याल करते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा एक सकारात्मक संदेश जाएगा हमारे सभी श्रोताओं में जो सुन रहे हैं
1: हाँ
0: कि माता पिता कितना आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को जो इस उम्र में उनका इतना ध्यान रखते हैं।
1: हाँ बहन बहन जी, बहुत ख्याल करते हैं, बहुत। हम तो उनका बहुत आभारी कि हमारे कौन ऐसे कर्म हैं जो कि नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों का बच्चे ख्याल नहीं करते।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इस समय हम आपकी पसंद को

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हेलो, अपना नाम बता दीजिए।
1: मौसम वर्मा
0: जी। मौसम जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक फिल्म का मैं
0: गाने के बोल बताइए।
1: टाइटल सॉन्ग,
0: टाइटल सॉन्ग सुनना है मौसम जी ने। तो मौसम जी की इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं ये गाना।

0: फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव ग्राम जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: जी प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है मेरे ब्रदर की दुल्हन। जी बिल्कुल, हमारे मित्र प्रियांशु यादव हैं, सच्चे मित्र हैं हमारे, और हरिओम यादव हैं, सुनीत यादव हैं, साहब लाल यादव, हमारा छोटा भाई अंकित यादव, हमारे तीन दीदियां आंचल यादव, काजल यादव, शिखा यादव, पापा का नाम रामचंद्र यादव और मम्मी का नाम है चित्र रेखा देवी यादव, हमारे एक और छोटे मित्र हैं प्रियांशु यादव।
0: आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए
1: जी। ना छल ना कपट ना प्रमाद हूँ, ना छल ना कपट ना प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ। आरणी दीदी, मैं आपका वही जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से करता हूँ आपको सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बताइए आपकी क्या फरमाइश है आज की।
1: दीदी, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले
0: जी,
1: और गीत के बोल है एक था गुल और एक थी बुलबुल।
0: जी तो आपकी पसंद का ये गाना लीजिए, सुनिए।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपने फोन कॉल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुत थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: जी आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में ही समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक

जर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ने इसके लिए मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे रियासत के ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपनी पैदावार कम अज कम इमदादी कीमत पर फरोख्त करने का मौका मिलेगा और उनके मफादात के बेहतर तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। मीटिंग के दौरान अल नीनो के असरात से निमटने के हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी और रियासती हुकूमत के सीनियर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 149 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत के हर ज़िले की तरक्की हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने असलाफ की विरासत को महफूज रखा है।
1: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
0: स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की इब्तदाई रिपोर्ट की बुनियाद पर अयोध्या में राम मंदिर के चंदा फंड में मुबैना गबन के मामले में 18 नामजद और दीगर नामालूम मुलजमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के रुकन कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। मुलजमीन के खिलाफ गबन, धोखाधही और मुजरमाना साजिश की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदा फंड के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम सामने आने के बाद रियासती हुकूमत ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की दरख्वास्त पर 13 जून को एसआईटी तश्कील दी थी। एसआईटी मामले की तफसीली जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कल नए मुकर्रर करदा रियासती ओहदेदारों की फहरिस्त जारी की। इस फहरिस्त में 8 जनरल सेक्रेटरीज, 19 नायब सदूर और 19 वज़रा शामिल हैं। मजीद बरां मगरबी, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के इलाकाई सदूर के साथ साथ मुख्तलिफ महाजों के सदूर का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने तमाम तबकात और इलाकों को जहन में रखते हुए ओहदेदारों का तकर्रुर किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम 9 तैनात ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। आज 10 मुहर्रमुल हराम है, इस दिन को आशूरा भी कहा जाता है। इसी दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को अपने साथियों समेत मैदान करबला में शहीद किया गया था। आज रियासत भर में लोग मुख्तलिफ करबला में ताज़िये लेकर उनकी तदफीन कर रहे हैं। लखनऊ में मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दीगर मज़ाहब के लोग भी ताज़ियेदारी करते हैं। ताज़ियों को आज लखनऊ के मुख्तलिफ करबला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तालकटोरा करबला, महानगर करबला, ऐशबाग, तेलीबाग और आलमबाग के मुख्तलिफ रास्तों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। ट्रैफिक की ये पाबंदी ताज़िये के जुलूस के अख्तिताम तक नाफिज रहेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में बहने अपना कार्यक्रम सुनेंगी गृहलक्ष्मी।

0: श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी में। आज की इस संगीतमय यात्रा पर आपके साथ होंगे मैं कंचन पांडे
1: और मैं अनामिका। ये धूप की तपिश भी कुछ सुहानी लगने लगती है क्योंकि मुलाकात होती है अपने प्यारे श्रोता साथियों से।
0: और जब आप ऑफिस की थकान से चूर किसी फाइल में सर झुकाए होंगे, किचन की गर्मी में पसीना पोंछते हुए कुछ पका रहे होंगे या चिलचिलाती धूप में खड़े होकर अपने खेत खलिहान सजा रहे होंगे, तब ये मीठे गीतों की झड़ी आपको बेशक सुकून देगी। यही तो हमारी कोशिश भी है।
1: जी हाँ कंचन जी, क्योंकि ये दोपहर की धूप भी यही कहती है कि जरा थम जाइए, ठहर जाइए, सुकून के कुछ पल खुद के

0: साथ गुजारिए। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत कर ही रहे हैं कि दोस्तों का लगता है कॉल आना शुरू हो गया है। कंचन जी, तो भाई हम अपनी फिल्म का नाम एक बार ले लें ताकि जो कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि आज की दो फिल्में हैं रहना है तेरे दिल में और दूसरी है सुई धागा मेड इन इंडिया।
1: बिल्कुल, तो वक्त जाया ना करते हुए चलिए बात करते हैं अपने पहले कॉलर से। हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, अपना शुभ नाम बताएं।
2: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उत्तर।
1: जी बिल्कुल, स्वागत है प्रेम सिंह जी आपका, पहले कॉलर हैं आज के हमारे कार्यक्रम के। हम लोग बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे काफी खुशी हो रही है क्योंकि मेरा फर्स्ट कॉल लग गया।
1: क्या बात है, और सबसे पहले नंबर पर लगा।
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके प्रेम सिंह जी। तो बताएं आज की दो फिल्में। जी
2: मोबाइल ऐसे कार्यक्रम आराम से सुनूंगा बैठकर मैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं तो आज की जो दो फिल्में हमने रखी हैं, रहना है तेरे दिल में और सुई धागा, तो इनमें से किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
2: इसमें सुनवा दीजिएगा आप रहना है तेरे दिल में।
1: जी कोई विशेष गीत?
2: हाँ जी, इसमें कौन कौन से गाने बताए सर ने, बताइए आप।
1: इसमें बहुत सारे गीत हैं, जैसे इसका एक टाइटल ट्रैक है, फिर जरा जरा है, फिर सच कह रहा है, दिल को तुमसे प्यार हुआ, ओ मामा मा, इस तरह के कई गाने हैं। आप बताएं अगर आपकी कोई पसंद हो।
2: ये वाला सुनवा दीजिएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो लीजिए आपके रेडियो सेट पर जा रहा है आपका पसंदीदा गीत, एंजॉय करिए।
2: जी थैंक यू सो मच।
1: बिल्कुल धन्यवाद।

0: हमें भी ये गाना बहुत पसंद आया। तो देखिए कंचन जी, एक दूसरे कॉलर्स हमसे जुड़ चुके हैं।
1: बिल्कुल। हेलो
0: हेलो,
2: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मुगरा, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम। नमस्कार।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है आपका भाई। इतनी जोश से भरे शब्दों के साथ अपने आपने अपना परिचय दिया कि भाई हम दोनों तो यहाँ बैठे बैठे इतना मुस्कुरा रहे हैं कि आप समझ भी नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
2: जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, और इससे बढ़कर क्या चीज है जिंदगी में।
0: जी बिल्कुल,
1: क्या बात है, बिल्कुल जीवन का फलसफा बता दिया आपने प्रेमचंद जी।
0: तो बताइए प्रेमचंद जी, आज की फिल्में हमारी तो आप जान ही रहे हैं कि दो फिल्में हैं, एक तो है सुई धागा और दूसरी है रहना है तेरे दिल में। तो आपकी फरमाइश किस गीत के लिए?
2: पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ अपने परिवार वालों का।
0: अरे जी बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिए
2: जी। हमारे पापा का नाम है रामचंद्र यादव, हमारी तीन दीदियां हैं आंचल यादव, काजल यादव, हमारी एक भाभी है उनका नाम है लाजू यादव, छोटा भाई अंकित यादव, हमारे कुछ दोस्त हैं सुमित यादव, साहब लाल यादव।
0: जी जी, तो सभी का स्वागत है भाई। आपने सबका नाम लिया है तो लाजमी है कि सभी आपके साथ बैठकर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं।
2: तो फिल्म का नाम है सुई धागा।
0: जी जी, और गाने का बोल बता दीजिए।
2: छांव लागे।
0: छांव लागे, जी बिल्कुल। तो छांव लगती रहे आपको, आपके परिवार को, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने इस गीत का आनंद उठाइए। तो आइए सुनाते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।

तो कंचन जी, मैं ये ट्रैक जो था बेहद खूबसूरत था, और जो भी हमारे श्रोता हमसे पहले जुड़ करके इस गीत की फरमाइश किया उन्होंने, सच बता रहे हैं भाई, आपकी ही नहीं, अगर आप हमें सुन रहे हैं

0: हेलो, लगता है हमारे एक और कॉलर लाइन पे है। हेलो हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना शुभ नाम बताएं।
1: आपका नियमित श्रोता धीरज रबारी गुजरात से।
0: ओहो धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?

0: हाँ ना मैका जी और
1: कंचन
0: कंचन जी दोनों को
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद यानी फोन इन सजीव कार्यक्रम करने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तहे दिल से स्वागत अभिनंदन धीरज जी आपका कि
0: जी
1: आप तो हमेशा से हमारे सुधी श्रोता रहे हैं और कार्यक्रम को बखूबी सराहते हैं और सबसे बड़ी हमारी तो जीत यही है कि आप जैसे सुधी श्रोता जब अपने शब्दों के साथ हमारी हौसला अफजाई बढ़ाते हैं और हमारे कार्यक्रम की जो प्रतिक्रिया है उन्हें अपने शब्दों से जब आप नवाजते हैं तो यकीनन हम सच कह रहे हैं उस वक्त कंचन जी लगता है कि हमारी सारी जो मेहनत है वो सार्थक हो गई।
2: बिल्कुल ऐसे
0: जी, हकदार हो आप सभी गुरु लक्ष्मी परिवार क्योंकि आप इतनी मेहनत करके कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के लिए पेश करते हैं तो उसमें हमारा फर्ज बनता है कुछ अच्छा सा लिखने का।
2: जी बिल्कुल जी, आप जैसे श्रोताओं से हमारे कार्यक्रम की रौनक है और आज है संगीत का कार्यक्रम तो आज आप किस फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे दीदी?
0: फिल्म में भूल गया कि फिल्म का नाम
1: जी फिल्म के नाम कंचन जी हम
0: क्या करें अभी वो कौन सा
2: रहना है तेरे दिल में और सुई धागा
0: बस वही फिल्म का कोई भी गाना माफ करना मैं भूल जाता हूँ।
1: कोई बात नहीं, तो रहना है तेरे दिल का टाइटल सॉन्ग सुनाते हैं आपको हम।
0: बिल्कुल, और मेरी तरफ से सभी श्रोताओं और आकाशवाणी गृहलक्ष्मी टीम परिवार और अभिकांत जी और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, आप ट्यून्ड हैं 100.3 एफएम पर, कार्यक्रम है हेलो गृहलक्ष्मी
1: और कंचन जी इसी के साथ ये हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर।
0: बिल्कुल, और देखिए
1: कॉलर्स कहाँ कहाँ।
0: हाँ, एक और कॉल आ चुका है नामिका, चलिए लेते हैं अपनी कॉल। हेलो।
2: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना
2: कंचन जी नाम को नमस्कार। मैं संगम नगरी प्रयागराज हवेलिया जोशी से महेंद्रनाथ कुशवाहा बात कर रहा हूँ।
0: ओहो महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बताइए कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया, आपका कार्यक्रम बहुत गृह लक्ष्मी हेलो बहुत बढ़िया लगता है।
0: हाँ,
2: और सभी कार्यक्रम जो भी अच्छे हैं सब बढ़िया लगते हैं। नमस्कार हो, चाहे लोग माधुरी जगह से प्रयागराज का बताते हैं, और इस समय जो है कुछ कार्यक्रम ही बदला हुआ, अच्छे हैं सब जो है
0: जी। बस आप जैसे श्रोता हमसे जुड़े रहें,
2: गृह लक्ष्मी सब अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, बिल्कुल आप जैसे श्रोता अगर जुड़े रहेंगे तो

0: कार्यक्रम और
1: रौनक भी आ जाती है।
0: हाँ, सुई धागे की आवाज हमको सुन, गाना सुनना है।
1: बिल्कुल,
0: कोई भी बढ़िया जो हो।
1: अच्छा, आप हमारी पसंद का गीत सुनना चाहेंगे?
0: हाँ हाँ, सुई धागा आपकी पसंद है, बहुत बढ़िया गाना जो भी हो
1: जी। बिल्कुल,
0: और हमारी सुनीता कुशवाहा है, हमारी वाइफ और दीपिका बहू है, कुशवाहा है, तो सुनना चाहते हैं।
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, बिल्कुल उनका भी स्वागत है और आपके रेडियो सेट पर जा रहा है आपका पसंदीदा ट्रैक, आप इंजॉय करिए।

0: हेलो हेलो कंचन जी, मैं लगता
1: हेलो।
0: है हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़ अभी तक हमारे तक पहुंच नहीं रही है। हेलो,
1: हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं?
0: तो भाई लगता है उनकी कॉल तो कनेक्ट हुई, लेकिन वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं कंचन जी।
1: लेकिन वो प्रयास करें, और जो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, एक बार हम उन्हें अपना नंबर बता दें। 0532-242-3649 और 0532-297-0462। इन नंबरों पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने पसंद के गीत बता सकते हैं।
0: और कंचन जी, अभी बड़ा ही एक रूहानियत सा गीत सुना इसके पहले, जिन श्रोता ने ये फरमाइश की थी कि सुई धागा मूवी का आप हमें टाइटल ट्रैक सुनाइए, वाकई बहुत खूबसूरत था। और अच्छा, मुझे लग रहा
1: जी
0: है कॉलर्स फिर से जुड़ चुके हैं।
1: बिल्कुल। हेलो हेलो,
0: आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो
2: नमस्ते मैम, दोनों मैम को
0: जी, बहुत
2: नमस्ते।
0: बहुत शुक्रिया और कॉल करने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत भी आपका। अपना नाम बताएं पहले हमें। जी रेखा जी,
1: वाह रेखा जी, कैसी हैं आप? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप इतना दिल से हमारे कार्यक्रम को सराहती हैं, पसंद करती हैं, सुनती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और कंचन जी देखिए ना, इतना टाइम निकाल करके इन्होंने, मुझे लगता है किचन के बाद या किचन में खड़े होकर ही आप मुझे सुन रही हैं हम दोनों को। अच्छा जी, तो बताएं रेखा जी, क्या फरमाइश है आज आपके, किस गीत के लिए आपको सुई धागा मूवी से गीत सुनवाया जाए या रहना है तेरे दिल में? अच्छा अच्छा जी, ठीक है ठीक है जी। तो कंचन जी, वक्त जाया ना करते हुए हम अपनी इन प्यारी से श्रोता

0: इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद कोई और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, देखते हैं किसका है ये कॉल। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: विकास बोल रहे हैं, दादनपुर प्रयागराज से ट्रक ड्राइवर। कैसी हैं मैम आप?
0: वाह वाह विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल बढ़िया है हम तो। आज भी आपकी सवारी कहीं निकली हुई है या अपने शहर में ही है?
1: नहीं, अपने शहर में ही आज है, परसों आए थे। अच्छा, अभी निकलना है शाम तक।
0: क्या बात है, देखिए आप आए हैं और शहर में और मौसम भी इतना खूबसूरत हो गया कि आप यहाँ भी रिलैक्स कर सकें।
1: बिल्कुल, आज अपने प्रयागराज में बारिश भी हो गई है थोड़ी।
0: बिल्कुल, तो कहाँ से आप लौट कर आए हैं अभी विकास जी, कहाँ की यात्रा करके?
1: अभी हम गुजरात गए हुए थे मैम।
0: ओह, इतनी लंबी दूरी आप तय करते हैं तो साथ में संगीत का साथ रहता ही होगा?
1: बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल, संगीत से तो ही सब काम चलता है, ये बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आज बताइए, हमने जो दो फिल्में रखी उनमें से किस फिल्म का गीत आप सुनना पसंद करेंगे?
1: रहना है तेरे दिल में और आप ही को एक विशेषता हम बताने जा रहे हैं मैम।
0: जी जी,
1: आप ही के कार्यक्रम में जो आपकी पसंद मधु जी करती हैं, ये कार्यक्रम बहुत ही पॉपुलर होता है और इसमें कुछ सीखने को भी बहुत मिलता है। ये आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, हम बिल्कुल उन्हें आपकी ये धन्यवाद आपका प्रेषित कर देंगे। बहुत अच्छा लगा कि आप ये सब कार्यक्रम सुनते हैं और उन्हें सराहते हैं। तो आप वक्त जाया ना करते हुए आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं ताकि आप इंजॉय कर सकें अपना पसंदीदा ट्रैक।
1: जी धन्यवाद।

0: तो कंचन जी देखिए आज तो कॉलर्स की ना झड़ियां एकदम बैक टू बैक लगी हुई हैं।
1: क्या बात है।
0: और हमें लगता है ना जो ये बैक टू बैक कॉल्स है ना, आपको सच बताएं वो हमारी सफलता की ओर हमें अग्रसर कर रहा है कि सच में हम सफल हो रहे हैं,
1: कि हम वाकई अपने श्रोताओं के अब दिल के करीब आ चुके
0: करीब आ चुके हैं। तो भाई हमको लगता है कॉलर्स हमसे जुड़ तो रहे हैं लेकिन शायद उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हेलो,
2: नमस्कार।
0: नमस्कार जी। हाँ जी बताएं।
2: मेरा नाम नितेश आर्या है।
0: जी जी,
2: मेरा नाम नितेश आर्या है।
0: हाँ जी नितेश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, तो बताइए
2: कैसे हैं आप लोग।
0: जी हम लोग तो बहुत अच्छे हैं और आपकी आवाज से हम और भी खुश हो चुके हैं क्योंकि आपका कॉल हम तक पहुंच गया है।
2: बहुत अच्छी लगती है
0: जी। शुक्रिया शुक्रिया आपका। तो बताए कैसे है आप।
2: बहुत ही अच्छा आप कार्यक्रम बोलते नगमे आपकी पसंद हेलो फरमाइश झेल अच्छी प्रोग्राम पहल ये सब कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं
0: जी। शुक्रिया
1: कि आप तो ये लिस्ट याद रखिए नितेश जी, जी काफी आप सुधीर श्रोता हैं हमारे।
2: जी जी आप लोगों की आवाज बहुत सुरीली है
1: जी। धन्यवाद। तो आज जो दो फिल्में आपके सामने हैं उनमें से किस फिल्म का गीत आपको सुनना है नितेश जी।
2: तेरे दिल में रहना सुनकर कोई भी।
1: अच्छा, कोई भी जी। अच्छा तो ये मूवी आपने देखी है।
2: जी हाँ देखी बहुत पहले, अभी कुछ दिनों से याद नहीं है, बहुत दिन हो गया देखी तो फिल्म को।
1: इसके आपको हीरो हीरोइन कोई याद है।
2: जी नहीं।
0: अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए आप इस गीत के साथ अपने आप को भाई उस दौर तक ले जाइए जब आपने ये मूवी देखी थी। तो एंजॉय कीजिए अपना पसंदीदा गीत।
2: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया,
2: हमको बहुत इनसे आदत है इस कार्य हमको
0: जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो। अच्छा कंचन जी, देखिए भाई, हमें तो लगातार कॉल्स पे कॉल आ ही रहे, लेकिन आपको ये भी बताया दें और अपने श्रोताओं को भी बता दें भाई, हमें जो सुन रहे हैं, कि आपने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी फरमाइश इसी गीत की भेजी थी। और आपको तो पता ही, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। और भाई हम उनका नाम भी ले लें, उनका नाम है रीना यादव, कौड़ियार नवाबगंज से, आरती उपाध्याय जी, मोहम्मद असलम, फातिमा जी और फिरदौस जी, और इसके साथ ही एक और भी नाम है प्यारा सा, बेबी आमना जी। इन सब ने मिलकर इस गीत की फरमाइश की थी। तो कंचन जी, कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे तो बड़ा इंजॉय
1: मैं
0: हो रहा
1: भी
0: है, कर
1: बहुत
0: रही हूँ
1: इंजॉय
0: मैं।
1: कर रही हूँ। कॉलर्स का इतना प्यार मिल रहा है, बस हम भी उनकी फरमाइशें पूरी कर पाएँ ये हमारी भी कोशिश है, और उन्हें खुशी दे पाएँ। और
0: जी,
1: संगीत का तो मतलब ही है कि खुश होना और खुशी देना।
0: खुशी देना।
1: तो लगता

0: हमारे और कॉलर्स भी कतार में हैं अनामिका, एक के बाद एक कॉल्स आ रही हैं, तो जब तक हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, हम ये भी बता दें कि देखिए रहना है तेरे दिल में एक ऐसी मूवी थी जिसने हमें बहुत नए चेहरों से इंट्रोड्यूस किया था.
1: बिल्कुल,
0: ये दिया मिर्जा का डेब्यू था, माधवन का डेब्यू था हिंदी फिल्म्स में, बॉलीवुड फिल्म्स.
1: और इसके साथ ही बड़ी ही अच्छी एक बात थी इसमें कि जो प्रेम की परिभाषा थी बड़ी सार्थक और बहुत ही पवित्र रूप को दिखाया गया.
0: देखिए कॉलर जुड़ गए इसी बात पर. हेलो
2: नमस्कार. हेलो
0: हेलो जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है?
2: हाँ मैम नमस्कार.
0: नमस्कार, आप अपना शुभ नाम बताएं.
2: आकाश माने का जिन्होंने दुनिया रचा, हमारे नस्ल दुनिया नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल, नाम है मेरा राज सुंदर काम पोस्ट को तीन से सुन कुंडा जिला है प्रतापगढ़.
0: आकाश जी, सही कहा ना
2: जी?
0: तो क्या करते हैं आप आकाश जी?
2: राजेंद्र, राजेंद्र
0: हेलो.
2: हाँ मैम राजेंद्र नाम है मेरा.
0: अच्छा, राजेंद्र जी, क्षमा करिए राजेंद्र जी, क्या

0: वाह वाह
1: मेरा
0: वाह।
1: राजचंद्रपाल पोस्ट को तीन तहसील गुंडा जिला है प्रतापगढ़
0: आकाश जी सही कहा ना
1: जी।
0: जी। तो क्या करते हैं आप आकाश जी?
1: राजेंद्र राजेंद्र
0: हेलो।
1: राजेंद्र नाम है मेरा।
0: अच्छा, राजेंद्र जी क्षमा करिए, राजेंद्र जी क्या रोबोटिक अंदाज में आप बोल रहे हैं, ये बताएं तो आज ये किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: रहना तेरे दिल में फिल्म का कोई सही।
0: बिल्कुल, लीजिए हाजिर है आपके लिए आपके रेडियो सेट पर, इंजॉय करिए।

0: तो भाई लगता है हमसे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो।
1: हेलो हेलो
0: जी हाँ, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका?
1: जी मैम, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, कौशाम्बी
0: ओह वीरेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: ग्राम चकाई मधुपुर।
0: तो क्या करते
1: जी
0: हैं आप वीरेंद्र जी?
1: जी हम कुछ नहीं करते हैं, हम नेत्रहीन हैं और आपका कार्यक्रम सुनते हैं।
0: जी हाँ, हमें लगता है हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, है ना?
1: जी, आप कौन बोल रहे हैं मैम?
0: मैं कंचन पांडे बोल रही हूँ
1: जी,
0: जी। तो वीरेंद्र जी, ये बताएं कि आप इसका बिल्कुल गिला ना करें कि आप नेत्रहीन हैं, क्योंकि मन की आंखों से ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं होता। और
1: जी, यही
0: आप
1: आपका
0: जी बोलें।
1: कार्यक्रम ही हमें अच्छा लगता है। हेलो
0: क्या बात है, बहुत बहुत
1: गृह लक्ष्मी।
0: धन्यवाद। और आप लोग का कॉल आता है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो ये बताएं वीरेंद्र जी, आप शायद गाते भी हैं, सही कहा मैंने?
1: जी,
0: तो कुछ दो पंक्तियां आप हमारे लिए गुनगुना दें। जी
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल,
1: अच्छा,
0: जल्दी।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
0: क्या बात है, इतनी सुंदर जो आपने पंक्तियाँ सुनाई गाई। अब बदले में हम भी आपको एक उपहार देते हैं आपके पसंदीदा गीत के रूप में। तो किस फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: जी कौन कौन सी फिल्म है? तू ही दागे और
0: रहना है
1: रहना
0: तेरे
1: है
0: दिल
1: तेरे
0: में।
1: दिल में, इसमें सुनना है रहना है तेरे दिल, सुई धागे में की कोई भी गाना।
0: अच्छा
1: जी
0: ठीक
1: सुई
0: है,
1: धागा
0: सुई
1: का हम
0: धागा का हम
1: आपको
0: आपको गीत
1: बिल्कुल
0: सुनवाते हैं।

0: तो भाई सब तो बढ़िया है, और हमें लगता है कंचन जी इसी बढ़िया बढ़िया के साथ एक और कॉलर्स जुड़ रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: हेलो। तो जुड़ तो रहे हैं लेकिन लगता है थोड़ी सी
1: हेलो
0: कुछ समस्या आ रही है।
2: हेलो
0: हेलो, हाँ जी बताइए आप।
2: मेरा नाम तनु है
0: जी। तनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी में। तो बताइए तनु जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ
0: जी। प्रयागराज की ही धरती से आपने हमें कॉल किया है, ये तो और भी अच्छी बात है। तो बताइए क्या करती हैं आप?
2: जी मैं अभी कॉलेज में हूँ, पढ़ाई करती
0: हूँ। ओहो, क्या बात है, अभी आप कॉलेज में पढ़ाई भी करती हैं और हमें सुनती भी हैं। तो अच्छा ये बताइए, हमें कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत पसंद आती हैं?
2: बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब कि सुबह हमारी शुरुआत तो इसी चैनल से होती है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो तनु जी हमें कंचन जी इतने प्यार से सुनती हैं और हमारे लगभग कार्यक्रमों को वो जानती भी हैं, और देखिए कहती हैं शुभारंभ भी हमारे रेडियो सेट से ही करती हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो बताइए तनु जी, कौन सा गीत सुनाएं आपको हम?
2: जी, सुई धागा फिल्म का खटर पटर।
0: सुई धागा मूवी का खटर पटर, तो बिल्कुल ये खटर पटर सा गीत आप इंजॉय कीजिए।
2: थैंक यू।

0: तो अनामिका, अब समय भी हो रहा है अपने कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो साथ ही में सबसे पहले हम अपने श्रोताओं के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे अपने जिनकी प्रस्तुति है अभय कांत तिवारी जी की, अपनी अनाउंसर महोदया दीप्ति मिश्रा जी, सहयोगी विनय कांत श्रीवास्तव जी को, और साथ ही अपनी तकनीकी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से एयर करने के लिए।
1: बिल्कुल, तो कंचन जी देखिए इसी वादे के साथ कि इसी तरह हमारे कॉलर्स हमें लगातार कॉल्स की झड़ियां हम पर बूंदों की तरह बरसाते रहेंगे और आप हमें ऐसे ही सुनते रहेंगे, है ना जी। तो क्या कहना है अब,
0: तो अब हम लेते हैं उनसे विदा और वो इंजॉय करते रहे ये गीत और आगे फिर हम उनसे हमारी उनसे मुलाकात होती रहेगी, तो लेते हैं अब विराम, करते हैं नमस्कार।

0: For India, who will be playing its first T20 international since lifting the T20 World Cup. Captain Shreyas Iyer will lead a young squad that includes 15-year-old batting prodigy Vaibhav Suryavanshi. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान. कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा. उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया. भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया. T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से. टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें. और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया. अब समाचार विस्तार से. गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है. उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की. श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की.
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है. आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय. और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए.
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं. उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा.
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं. ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है. इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक

0: रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द

0: सहमति बनेगी।
1: For our business,
2: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार हैं।
1: 60,000 स्टूडेंट्स
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं।

0: फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं।

0: श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद

0: उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: Thank you.
3: How are you?
4: Happy birthday, Stephen!
5: Thank you,
4: congratulations!
5: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
5: Thanks for coming in. Please come in.
3: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
2: Come. Yay.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure.
5: Join us for a drink.
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
3: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं अभी

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,

0: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है? आपने इसका विकास कैसे किया?
1: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
0: ओह।
1: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
0: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
1: जी।
0: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
1: तो लीजिए, सुनिए।
2: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे

0: स्मृति में डाल दिया।
1: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
0: जी।
1: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
0: तो लीजिए सुनिए।
2: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
3: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
3: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
3: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
3: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
4: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय

0: समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
4: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
5: सूरज।
3: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
6: बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
6: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
5: हाँ।
3: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
6: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही एकदम
7: सही। वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
6: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
6: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत
7: और
3: अच्छे।
7: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
3: हाँ बिल्कुल,
6: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
6: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ।
8: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
3: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
6: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
6: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
7: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
3: ना।
7: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
3: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चो सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
6: वो बहुत बड़ा भी होता है।
3: बहुत बड़ा होता है
7: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
3: हम क्योंकि कहीं
6: दूर होता है, इसलिए
3: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
6: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
3: हाँ
7: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
3: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
5: सर्दी।
3: ओ ऐसी वाली

0: सर्दी ना अच्छी लगती है सर्दी
1: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला लेकिन
2: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है
2: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके
2: धरती काटे चक्कर इसके
0: लगे ये चलता जाता है
2: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे
2: सर्दी गर्मी बनते इससे
0: ये दिन रात बनाता है
2: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक
2: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक
0: सूरज ये
2: कहलाता है।
0: शाबाश सूरज ये कहलाता है सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
3: जल्दी आना जल्दी आना।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई मैं कल आऊँ की नहीं
1: आऊँ। वो भी
0: दस पहेलियाँ। अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: और
0: से डर जाती
1: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे वो 10 से एकदम 70
3: नहीं 80 हो जाएंगे
0: फिर 100 हो जाएंगे फिर 200 ओके इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजे हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। दूसरी सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। हमारे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुने नन्ही दुनिया।

0: जय हिंद।
1: हेलो, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सभी मम्मी और स्मार्ट साथी फिट होंगे, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, पूरी तरह हेल्दी रहेंगे, तभी तो आपका ब्रेन काफी स्मार्टली सोचेगा और बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके माइंड में भी आएंगी, अच्छी अच्छी चीजें आप सोच पाएंगे।
2: सच कहा नामिका दीदी आपने। और ये जो समय है छुट्टियों का ना, इन्हें तो कितने अच्छे से यूटिलाइज करना है, ये भी हम आज अपने नन्हे साथियों को कुछ कुछ टिप्स और देंगे। हालांकि अब छुट्टियां खत्म ही होने वाली हैं, है ना, लेकिन जो समय बचा है ना बच्चों, उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं मिट्टी के खिलौनों के बारे में। मिट्टी के खिलौने हमारे नन्हे साथियों के लिए केवल खेलने का साधन नहीं है, बल्कि आप उनकी कल्पना और उसके पर्यावरण से जुड़ाव बढ़ाने का एक बेहतर माध्यम बना सकते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं आप, ये आप अपनी क्रिएटिविटी भी आप डेवलप करेंगे इस दौरान।
1: हाँ, और कंचन दीदी, अभी आपने कुछ देर पहले मुझसे साझा भी की थी एक छोटी सी बात कि कभी कभी स्कूल में बहुत सारी चीजों का आयोजन होता है, है ना, क्रियात्मक जो कार्यक्रम होते हैं उसके तहत अगर हम देखें तो कई बार बहुत सारे कुम्हार बुलाए जाते हैं
2: स्कूल में, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें वो जो उनका बड़ा सा चाक होता है उस पर मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाकर वो दिखाते हैं और बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं, उछल उछल कर तालियां बजाते हैं और चाहते हैं कि जो चक्री घूम रही है उसमें हम भी अपना हाथ लगाएं और एक छोटा सा बर्तन बनाएं।
1: सही कहा आपने कंचन दीदी कि मिट्टी के खिलौने बनाने के साथ इन सभी स्मार्ट नन्हे साथियों को जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कई तरीके के हम देखते फायदे भी हैं, और कहूँ तो बहुत ही आश्चर्यजनक इसमें जादुई सा भी कुछ राज छिपा है।
2: कैसा राज?
1: जानती हैं, ये रचनात्मकता को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जब भी बच्चे मिट्टी का कोई भी आकार वो देते हैं तो देना तो आसान होता है, लेकिन बच्चे अपने हाथों से जब जानवर, बर्तन या घरौंदे बनाते हैं तो इस तरीके से वो हमारे जो नन्ही स्मार्ट साथी है ना, बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं। अच्छा, इसका आकार ऐसे देना है, अच्छा अब तो मुझे इस चूल्हे का आकार देना है, तो कैसे दूं? तो जो वो रचनात्मकता होती है, जो कल्पना शक्ति है, जिसे हम इमेजिनेशन पावर भी कहते हैं, वो भी उनके साथ जुड़ रहा होता है और बढ़ती भी जाती है, जिसे हम खेल खेल में ही बढ़ा सकते हैं।
2: हाँ, और पता है बच्चों, आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने पर्यावरण से जुड़ जाते हैं, अपने एनवायरनमेंट से जुड़ते हैं, और ये आपको तनाव मुक्त रखने में भी मददगार होते हैं। हालांकि आप तो खेल कर ही अपना बहुत सारा तनाव दूर कर लेते हैं, पर मिट्टी के खिलौनों को बनाकर या उनसे खेल कर भी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो एक तो आपको एक समझ आ जाती है कि आकृतियों को बनाने के लिए हमें कैसे हाथ चलाना है, कहाँ पर कम ज्यादा

0: क्या करना है। तो ये इंजॉयमेंट के साथ साथ आप एक नई चीज भी सीखते हैं।
1: बिल्कुल कंचन दी, आपने कहा ना कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं ये चीजें, क्योंकि ये प्लास्टिक के विपरीत मिट्टी के खिलौने नॉन टॉक्सिक हैं जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और कंचन दीदी एक बात और है,
0: क्या
1: वो बड़ी खास है,
0: क्या
1: जानती है क्या?
0: क्या है वो
1: मिट्टी
0: बात?
1: के खिलौने बनाने से हमारे इन नन्हे साथियों को सेंसरी डेवलपमेंट, जिसे हम इंद्रियों का विकास कहते हैं, उनमें भी मदद मिलती है। आप सोचिए कैसे?
0: कैसे भला?
1: वो इस तरह से कि जब बच्चे मिट्टी की बनावट को छूते और महसूस करते हैं, तो उनका मस्तिष्क और हाथों के बीच का जो तालमेल है, जिसे हम मोटर स्किल्स कहते हैं,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: मजबूत हो जाता है।
0: बिल्कुल, ये तो भाई बहुत बढ़िया बात बताई अनामिका दीदी ने। और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ हम बच्चों के लिए एक और उपहार लाए हैं, एक छोटे से नन्हे साथी के रूप में। तो अब हम उनसे बातें करेंगे और अपने नन्हे साथियों को सुनवाएंगे उनकी बातचीत। तो नन्हे मुन्ने साथियों, पता है आज हमारे साथ एक छोटी सी गुड़िया आई है, जो चिड़िया की तरह मीठी मीठी बातें भी करती है। अभी वो खुद ही आपको अपना नाम बताएंगी। हेलो।
2: हेलो।
0: अच्छा ये बताइए, आप छोटी सी डॉल हैं क्या?
2: यस,
0: हाँ, तो इस डॉल का नाम क्या है?
2: माय नेम इज प्रणीता श्रीवास्तव।
0: अरे वाह, और प्रणीता आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
2: आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट।
0: अरे वाह, शी इज सो इंटेलिजेंट। अच्छा प्रणीता, आपको पता है आज आपको बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेंड्स आपके सुन रहे होंगे।
1: तो कंचन दी, प्रणीता ने तो अपने नन्हे साथियों से भाई अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। तो बच्चों, आपने सुना ना, प्रणीता कितनी प्यारी है, चिड़िया की तरह ची ची ही नहीं करती, उसकी आवाज की मिठास ये भी बताती है कि उसको बहुत सारी चीजों का शौक भी है। तो प्रणीता, क्या आपने मिट्टी के खिलौने देखे हैं?
2: यस मैम।
1: ओहो, अच्छा ये बताइए, मिट्टी के खिलौने में ऐसे कौन कौन से टॉयज हैं जिसे आपने अपने हाथ से बनाया हो, या आपके पास वो खिलौने हैं?
2: मेरे पास एक मिट्टी का किचन सेट है और मेरे पास एक मिट्टी का छोटा सा घर है,
1: घर भी है? ओ,
2: बहुत छोटा सा।
1: बहुत छोटा सा। अच्छा अच्छा प्रणीता, ये बताइए, ये जो छोटू सा घर है आपके पास मिट्टी का, उसमें आपने पेंटिंग किया है क्या? कभी इसको कलर किया है?
2: यस मैम।
1: और उसको कलर करना किसने बताया?
2: पापा ने।
1: वाओ, पापा ने। यानी पापा आपके साथ आपकी सारी चीजों में हेल्प करते हैं?
2: यस मैम।
1: ओहो, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, ये जो मिट्टी के जितने भी आपके पास खिलौने हैं, उनमें सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है?
2: मैम मेरा किचन सेट।
1: आपका किचन सेट? ओहो गुड। अच्छा, आपने मिट्टी के टॉयज में बैलगाड़ी या चूल्हा, बर्तन, या उसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी बने होते हैं, ये देखा है या नहीं?
2: यस मैम।
1: आपने इसको भी देखा है? अच्छा, कब देखा था?
2: मैम मेरे पास किचन सेट और हाउस है ना, मैंने वही देखा है।
1: ओहो, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, इतनी बातें तो आपने बता दी कि मिट्टी के खिलौने के सेट भी आपके पास है, आपने उसके साथ खूब मस्ती भी करी है। तो अच्छा बताइए, अब अपने छोटे नन्हे साथियों को आप क्या सुनाने वाली हो?
2: एक हिंदी की कविता।
1: तो ठीक है, अब हम अपनी नन्हे साथी प्रणीता से ये प्यारी सी कविता सुनेंगे।
2: हे भगवान, मुझे ये वर दो, बहुत बड़ी हो जाऊं, इतनी बड़ी कि इस छोटे से घर में नहीं समाऊं, मेरी जीन्स कुर्ती फ्रॉक सब छोटी पड़ जाए, मेरा जूता चप्पल पैर में ही ना आए, अपनी मम्मा से भी 2 गज लंबी मैं हो जाऊं, फिर भी पापा की नन्नी मुन्नी ही कहलाऊं।
0: अरे वाह, ये तो भाई बहुत ही प्यारी कविता थी। तो ये बताइए, जो भगवान जी से बोल रही हैं, उसके लिए तो खाना पीना भी पड़ेगा। तो प्रणीता दूध दूध पीती हैं कि नहीं?
2: यस मैम।
0: पसंद है आपको? तो
2: यस मैम।
0: मम्मी ने तो बताया होगा कि हेल्दी फूड खाओगे तो ही आप जल्दी से बड़े होगे, है ना?
2: यस मैम।
0: तो सारे बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, है कि नहीं प्रणीता?
2: ओके मैम।
0: अब आप क्या सुनाएंगी अपने दोस्तों को?
2: अब हम एक
0: इंग्लिश पोयम?
2: यस मैम।
0: ओके, चलिए सुनाइए।
2: द व्हील्स ऑन द बस गोज राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, द व्हील्स ऑन द बस गोज राउंड एंड राउंड।

0: Fiz, não, vai passando a voz, fiz, all through the town.
1: Vá, vá. Aqui?
0: The door on the bus goes open and shut, open and shut, open and shut. The door on the bus goes open and shut, all through the town.
1: वाह, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची हैं आप प्रणीता। तो अब आप आया करिए अपने साथियों से मिलने, ठीक
0: ओके
1: है? और आप
0: मैम,
1: मुझे एक और चीज़ बोल रही थी कि आपके पास एक और सरप्राइज़ है।
0: एक श्लोक।
1: सारी भाषाएं आपको आती हैं, क्या बात है! तो टीचर भी बहुत प्यार करती होंगी आपको स्कूल में,
0: यस
1: है ना?
0: मैम,
1: कहती होंगी कितनी होशियार है प्रणीता, क्यों?
0: यस
1: तो
0: मैम।
1: चलिए जल्दी से एक श्लोक भी सुना दीजिए।
0: ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मा ने प्रणता क्लेश नाशाय, गोविंद आए नमो नमः।
1: वाह, क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हैं आप प्रणीता। तो ये बताइए, आपको यहाँ आकर कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा
1: तो आप
0: लगा।
1: फिर से आएंगी मिलने हमसे?
0: यस मैम,
1: तो चलिए फिर जल्दी जल्दी आइएगा, तब तक अपने दोस्तों को बोल दीजिए।
0: बाय।

0: अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। शाम की इस खुशनुमा बेला में आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अंजलि श्रीवास्तव। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दिन भर की भाग दौड़, पढ़ाई, नौकरी और जिम्मेदारियों के बाद अब वक्त है कुछ देर ठहर कर ऐसी बातों पर विचार करने का जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें। दोस्तों, युववाणी सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं है, बल्कि ये विचारों, संस्कारों, संस्कृति और समाज से जुड़ने का एक सुंदर माध्यम भी है, जहां हम उन विषयों पर बात करते हैं जो हमारे जीवन और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आज का हमारा विषय है मुहर्रम। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे देश और दुनिया के कई हिस्सों में मुहर्रम के अवसर पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। ऐसे में आइए हम भी इस अवसर को समझने की कोशिश करें और जाने कि आखिर मुहर्रम का महत्व क्या है और ये हमें क्या संदेश देता है। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामी हिजली कैलेंडर का पहला और सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसी महीने से दुनिया भर के इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए नए साल की शुरुआत होती है। और देखा जाए तो मुहर्रम शब्द का अर्थ होता है निषिद्ध, या हम कह लें वर्जित, यानी ऐसा समय जब परंपरागत रूप से लड़ाई झगड़े या हिंसा से दूर रहने की बात कही जाती है। और ये महीना लोगों को अपने जीवन और अपने कर्मों के बारे में सोचने पर, ईश्वर को याद करने, प्रार्थना करने और संयम बरतने की प्रेरणा देता है। चांद दिखाई देने के आधार पर वर्ष 2026 में मुहर्रम की शुरुआत 26 जून से मानी जा रही है और इसके साथ ही 1448 हिजरी वर्ष का आरंभ हो रहा है। और दोस्तों, मुहर्रम के दौरान अलग अलग समुदायों में अलग अलग परंपराएं देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन उन सभी के केंद्र में एक ही भावना होती है, श्रद्धा, स्मरण और आस्था। कई लोग विशेष रूप से अशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन रोज़ा रखने की परंपरा कृतज्ञता और आत्मानुशासन की भावना से जुड़ी हुई है। दुनिया भर की मस्जिदों में विशेष नमाजें अदा की जाती हैं, धार्मिक सभाएं आयोजित होती हैं और ऐसे संदेश दिए जाते हैं, साझा किए जाते हैं जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील रहने और मदद का हाथ बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। और यही कारण है कि इस अवसर पर कई जगहों पर लोगों को भोजन, पानी और कपड़ों

जैसी आवश्यक चीज़ें जो हैं वो बांटी जाती हैं। सेवा महत्वपूर्ण संदेशों में से एक मानी जाती है। और दोस्तों, ये महीना हमें थोड़ा ठहर कर अपने जीवन के बारे में सोचने का भी मौका देता है। ये हमें न्याय, धैर्य, विनम्रता और इंसानियत जैसे मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी आपसी भाईचारे, शांति, सहानुभूति और सम्मान की भावना को और मजबूत करने का संकल्प लें।

तो दोस्तों, अभी गीत के उस पार हम बात कर रहे थे मुहर्रम की, और अब आगे बढ़ते हुए अगर हम ध्यान से देखें तो इतिहास हमें केवल घटनाएं नहीं देता, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व भी देता है जिनके विचार और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। इसी बात के साथ अब समय हो गया है प्रोग्राम में आगे बढ़ने का, और एक बेहद खास सेगमेंट यानी कि प्रेरणापुंज सेगमेंट का। दोस्तों, एक सवाल है, इसका जवाब सोचिए। क्या किसी व्यक्ति की महानता उसके पद से तय होती है? क्या एक राजा इसलिए महान कहलाता है क्योंकि उसके पास सत्ता होती है, या फिर इसलिए कि वो अपनी शक्ति का उपयोग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता है? शायद इतिहास का जवाब दूसरा ही है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही दूरदर्शी शासक, समाज सुधारक और जन नेता के, जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, छत्रपति शाहू जी महाराज। दोस्तों, आज यानी 26 जून का दिन छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के रूप में याद किया जाता है। उनका जन्म 26 जून 1874 को महाराष्ट्र के कागल में हुआ था। उनका बचपन का नाम था यशवंत राव खाटके, और बाद में उन्हें कोल्हापुर के शाही परिवार ने गोद ले लिया और वो आगे चलकर कोल्हापुर रियासत के शासक बने। लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी केवल एक राजघराने के सदस्य की कहानी नहीं है। असल मायनों में ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने समाज की समस्याओं को समझा और उन्हें दूर करने के लिए अपने पद और अधिकारों का उपयोग किया। ज़रा सोचिए, एक तरफ राजमहल, शानो शौकत और सत्ता का जीवन, और दूसरी तरफ समाज के वो लोग जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, जिन्हें बराबरी का अवसर नहीं मिल रहा था, जो भेदभाव और असमानता का सामना कर रहे थे। शाहू जी महाराज ने इन दोनों दुनिया को देखा, समझा, और यही कारण था कि शासन की बागडोर संभालने के बाद उनका ध्यान केवल प्रशासन चलाने तक सीमित नहीं रहा। वो चाहते थे कि समाज का हर व्यक्ति आगे बढ़े, सम्मान के साथ जीवन जी सके। दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शिक्षा तक पहुंचना समाज के बहुत बड़े वर्ग के लिए आसान नहीं था, और शाहू जी महाराज ने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने स्कूलों को बढ़ावा दिया, विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था तक की और छात्रवृत्ति शुरू कराई ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चे भी पढ़ लिख सकें। और उनका मानना था कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले शिक्षा का दरवाज़ा सबके लिए खोलना होगा। और दोस्तों, ये सोच उस समय के लिए बेहद प्रगतिशील मानी जाती थी। लेकिन शाहू जी महाराज का योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, वो सामाजिक समानता के भी प्रबल समर्थक थे। वो मानते थे कि किसी इंसान की पहचान उनके जन्म से नहीं

बल्कि उसके गुणों, मेहनत और कर्मों से होनी चाहिए। सन 1902 में उन्होंने कोल्हापुर राज्य की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की और इसी के साथ उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। वो चाहते थे कि समाज में हर व्यक्ति को सम्मान मिले और किसी के साथ केवल उसके जन्म या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव ना हो। और दोस्तों, एक और बात जो उन्हें विशेष बनाती है वो थी आम लोगों के जीवन के प्रति उनकी संवेदनशीलता। वो किसानों की समस्याओं को समझते थे। उन्होंने कृषि सुधारों और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा दिया और उसके लिए कई प्रयास किए ताकि किसानों का जीवन बेहतर हो सके। और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि अगर समाज को मजबूत बनाना है तो महिलाओं को भी बराबर अवसर मिलने चाहिए। उनकी ये सोच थी कि सत्ता का वास्तविक उद्देश्य जनता की सेवा होनी चाहिए। शायद यही कारण है कि आज उन्हें केवल एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर किसी समाज में शिक्षा हो, समान अवसर हो, महिलाओं को सम्मान मिले और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले तो वो समाज कितना मजबूत बन सकता है। शाहू जी महाराज ने अपने जीवन में इन्हीं आदर्शों को साकार करने का प्रयास किया और यही वजह है कि उनकी जयंती केवल एक तिथि नहीं है बल्कि उनके विचारों को याद करने और उनकी प्रेरणा लेने का अवसर भी है। आज के प्रेरणापुंज से हम यही सीख सकते हैं कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। तो दोस्तों, इसीलिए हम अपने प्रेरणापुंज सेगमेंट में आपको अलग अलग व्यक्तित्वों के बारे में बातें बताते रहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि हो सकता है आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हों वो भी गुजर चुके हों और आपको कहीं ना कहीं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस मिल जाए। तो हमारे प्रोग्राम में आगे सेगमेंट्स और हैं, बातें और हैं, मगर उसी के साथ साथ गीत भी और हैं।

0: कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
6: दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा केवल किताबों या इतिहास से नहीं मिलती, बल्कि खेल के मैदान से भी मिलती है। और जब बात खेलों की हो तो मेहनत, लगन, आत्मविश्वास और कभी हार ना मानने का जज्बा जो है, अपने आप चर्चा का हिस्सा बन जाता है। और इन्हीं बातों के साथ अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम के खेल जगत सेगमेंट का। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब कोई खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो उसके हाथ में सिर्फ बल्ला या गेंद नहीं होती, बल्कि उसके साथ होती है लाखों की उम्मीदें, वर्षों की मेहनत और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना। आज के खेल जगत में हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक ऐसी खिलाड़ी की, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी और जीवंत व्यक्तित्व से लाखों खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं जेमिमा रोड्रिक्स की। दोस्तों, जेमिमा रोड्रिक्स का जन्म 5 सितंबर 2000 को मुंबई में हुआ था। बचपन में ही उन्हें खेलों में रुचि थी। क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने हॉकी भी खेली और दोनों खेलों में अपनी प्रतिभा भी दिखाई। लेकिन धीरे धीरे क्रिकेट के प्रति उनका लगाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने इसी खेल को अपना भविष्य बनाने का फैसला कर लिया। अब दोस्तों, ज़रा सोचिए कि जब ज़्यादातर बच्चे अपने खाली समय में खेल का आनंद लेते हैं या एज एन फन एक्टिविटी खेलते हैं उसको, तब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसी खेल को अपना सपना बना लेते हैं। जेमिमा उन्हीं खिलाड़ियों में से एक थीं।

उन्होंने कम उम्र से ही नियमित अभ्यास शुरू कर दिया, प्रैक्टिस शुरू कर दी, सुबह की ट्रेनिंग, फिटनेस पर ध्यान देना और लगातार मेहनत, यही उनकी लाइफस्टाइल बन गई थी, यही उनका टाइम टेबल बन गया था। और दोस्तों, मेहनत का फल भले देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। जिमिमा ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने जल्द ही चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर भी खींच लिया था। साल 2018 में उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलने का अवसर मिला। देश की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरना किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व का क्षण होता है और जिमिमा के लिए भी ये एक सपने से जैसे सच हो गया हो कोई ड्रीम, वैसा था। आज महिला क्रिकेट में केवल अंतर्राष्ट्रीय मैच ही नहीं बल्कि विभिन्न T20 लीग भी खिलाड़ियों को अपनी तरफ प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रही है और जिमिमा ने वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी टीम के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां भी खेली हैं। और इसके अलावा उन्होंने विदेशों में आयोजित विभिन्न महिला T20 लीग्स में हिस्सा लिया है जिससे उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में खेलने का मौका भी मिला है और एक्सपीरियंसेस भी गेन हुए हैं। जिमिमा की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है आपको पता है दोस्तों? उनकी तकनीक, उनका आत्मविश्वास या फिर दबाव में भी शांत रहकर खेलना, शायद इन तीनों का शानदार मेल। मैदान पर भी उन्हें देखकर अक्सर लगता है कि वो खेल का आनंद लेते हुए खेल रही हैं और यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग पहचान देती है। चाहे T20 मुकाबला हो या एक दिवसीय क्रिकेट, उन्होंने कई मौक़ों पर भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियाँ खेली हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी का सफ़र हमेशा आसान नहीं होता है। खेल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आते रहते हैं, कभी शानदार प्रदर्शन होता है तो कभी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते। जिमिमा के करियर में भी ऐसे दौर आए जब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया, खुद को और बेहतर बनाया और एक बार फिर मजबूत वापसी की। और यही तो है एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान, गिरकर फिर से खड़े हो जाना। जिमिमा केवल एक बेहतरीन क्रिकेटर ही नहीं है बल्कि अपने सकारात्मक रवैये के लिए भी जानी जाती हैं। मैदान पर उनकी ऊर्जा, टीम के साथियों के साथ उनका तालमेल और हमेशा मुस्कुराते रहने की आदत युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और हम ये भी देखते हैं दोस्तों, हमने वीडियोस में देखा है सोशल मीडिया साइट्स पर कि वो सिंगिंग में भी इंटरेस्ट रखती हैं, वो गिटार भी बजा लेती हैं, वो गा भी लेती हैं, तो मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टैलेंट्स हैं उनके पास। और उनकी कहानी हमें ये बताती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती है बल्कि उसके पीछे लगातार मेहनत, अनुशासन और धैर्य भी होता है। आज भारतीय महिला क्रिकेट जिस ऊंचाई पर पहुंच रही है उसमें जिमिमा रोड्रिग्स जैसे खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो सपनों की हकीकत में बदलना जा सकता है। और दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि जब कोई भी खिलाड़ी है वो मैदान में आता है और पूरा मैदान उसके लिए भरा हुआ है, खेल रहे हैं वो लोग, सब लोग चीयर अप कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी एक्साइटमेंट है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग फोर्स हो जाती है और वो आगे बढ़कर अपने प्रदर्शन को और ज़्यादा बेटर करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट खेल जगत। आगे प्रोग्राम में बढ़ेंगे, स्पेशली यूथ के लिए हमारे पास बातें और हैं और कुछ टिप्स हैं आपके लिए, मगर उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे मोस्ट ऑफ द जो जनता है और हमारे युववाणी परिवार की, तो उसमें यूथ के सेंटर्ड ये प्रोग्राम है। तो हमारे जो यूथ हैं वो अभी कई ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट लाइफ में होंगे, जो जॉब कर रहे होंगे, अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो हमारे यूथ हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि प्रिपरेशन के दौरान हमको बहुत जल्दी मेंटल एक्सर्शन हो जाता है, हमको लगता है कि हम अब नहीं कर पा रहे हैं या गिव अप करने के टाइम पे हम लोग आ जाते हैं। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो अगर हम ध्यान दें और उस पर काम करें तो धीमे धीमे करके जो चीज़ें हो सकता है आपके फेवर में नहीं आ रही हैं वो आपके फेवर में आने लगें। क्योंकि दिक्कत आपकी प्रिपरेशन में नहीं होती है, दिक्कत होती है कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे आप उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो कुछ कुछ बातें जो आपको हेल्प कर सकती हैं, भले ही आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हों, सिविल का एग्ज़ाम दे रहे हों, या SSC बैंक रेलवे की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए तैयारी कर रहे हों। सफलता हमको केवल ज़्यादा घंटे पढ़ने से नहीं मिलती है दोस्तों, हमको मिलती है स्मार्ट प्रिपरेशन से। कि आप कैसे, आजकल कहते हैं ना कि हमको हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क भी करना है, हमको पता होना चाहिए कि अभी क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। तो आइए कुछ टिप्स हम लोग जान लें कि विच माइट हेल्प यू कि आपको कहाँ पे क्या काम आ जाए। तो सबसे पहले तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, हम दीवार पे चिपका भी देते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, वो प्रॉपर चल नहीं पाता है। लेकिन उसमें ध्यान ये दीजिए कि वो सिर्फ कागज़ पर नहीं अच्छा लगे, वो असल में आपकी ज़िंदगी पर उतरे भी। क्योंकि आप टाइम टेबल अगर ऐसा बनाएंगे कि जो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होगा, जो आपकी रूटीन के हिसाब से होगा, तो वो और ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट होगा और वो फॉलो कर पाएंगे आप। क्योंकि अनरियलिस्टिक अगर हम टाइम टेबल बना दें और हमको पता है कि हम उसको अचीव भी नहीं कर पाएंगे, तो मोटिवेट होने के बजाय आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। और अगली बात

कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको समझिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग रट्टाफिकेशन करने लगते हैं, हम लोग फैक्ट्स वगैरह एकदम रटने लगते हैं. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम हम अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आ जाते हैं, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर आपने उसको केवल याद किया है, तो आपको हो सकता है वो क्वेश्चन ट्रिकी लगे और आपको वो सॉल्व करने में टफ लगे. तो कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखिए, फैक्ट्स बिल्कुल याद करिए, बट एट द सेम टाइम जो भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको अपनी लाइफ में उतार के देखिए, उसको प्रैक्टिकल चीज़ों से कनेक्ट करिए, तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा उससे कनेक्ट करना, और स्पेशली आप उसको समझ जाएंगे. तो कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आए, आपको जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तो आपको आराम से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. हम क्या करते हैं ना, अक्सर मैंने भी देखा है, मैंने ये किया भी है, तो आई कैन टेल दैट फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, तो लगाते लगाते लगाते क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, फिर लगा कि अच्छा ये सही है, अच्छा ये गलत.

तो आपको आराम से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हम क्या करते हैं ना, अक्सर मैंने भी देखा, मैंने ये किया भी है, तो आई कैन टेल दैट फ्रॉम एक्सपीरियंस कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, तो लगाते लगाते लगाते क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, फिर लगा कि अच्छा ये सही है, अच्छा ये गलत है। नो, दैट्स नॉट द कॉन्सेप्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अगर वो ठीक हो रहे हैं तो देखिए कि अच्छा इसलिए ठीक है, आई हैव द रीज़न कि किस लिए ठीक है, वो मुझे पता है। एंड सेकेंडली, अगर वो नहीं सही हो रहा है तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करिए कि क्यों नहीं सही है। अच्छा ये ऑप्शन अगर सही है तो वाई नॉट अदर ऑप्शंस आर करेक्ट, कि वो चार जो ऑप्शन हैं वो क्यों गलत हैं और जो पाँचवा है वो ठीक कैसे है। तो ऐसे होगा ना कि आप कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने लगेंगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऑप्शन था, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, बट एट द सेम टाइम आपको उस ऑप्शन का नॉलेज हो गई, आपको पता चल गया कि अच्छा ये भी चीज़ होती है। तो प्रीवियस ईयर लगाने का यही तरीका होता है कि आप टॉपिक्स को समझिए, जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ आंसर है उसको समझिए कि वो क्यों आंसर है, ना कि बस आप देख लीजिए कि अच्छा फर्स्ट का ए है, सेकेंड का बी है, नॉट दैट इज़ नॉट द प्रोसेस। और हम जो चीज़ बहुत जल्दी अवॉइड करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं इज़ कि हम रेगुलर रिविज़न नहीं करते, मतलब हम बल्क में पढ़ते तो जाते हैं कि अच्छा ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बट हम उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है कि बहुत बल्क में कलेक्ट तो हो रहा है माइंड में, बट वो रिवाइज़ नहीं हो रहा है और हमारे दिमाग में चल रहा है कि अरे हमने तो ये सब पढ़ लिया है, बट जब हम जब बाहर देखते हैं, बाद में देखते हैं कि अरे ये तो पढ़ा था लेकिन रिकॉल नहीं हो रहा है, दैट्स बिकॉज कि आपने रिविज़न नहीं किया है। तो रिविज़न इज़ द की टू रिटेंशन। और ध्यान दीजिए कि हम लोग मॉक टेस्ट जो होते हैं ना उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमको लगता है कि अरे ये मॉक टेस्ट क्या ही है, मतलब दिमाग में तो बैठे ही हुआ है कि घर पे बैठ के पेपर दे रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट जो है आपका टाइम मैनेजमेंट जो है उसमें बहुत हेल्प करता है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा मुझे इस चीज़ को इतना टाइम देना है या ये अगर मिस्टेक है मुझे ये नहीं करनी है वहाँ पर जाके। तो बेसिकली मॉक टेस्ट एक छोटा सा डेमो है कि आप वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यूथ के लिए जो अभी डिस्ट्रैक्टिंग है वो है सोशल मीडिया। जब हम बैठ के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है मान लीजिए आजकल तो फ़ोन से ही पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो फ़ोन से जब पढ़ाई कर रहे हैं तो नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब भी सोशल मीडिया का कुछ नोटिफिकेशन आता है तुरंत हमारा दिमाग उधर चला जाता है, तुरंत हम सब साइड में रख के कि अरे ये क्या है, अरे ये किसका मैसेज आया, तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन की तरफ हमको ले जाता है, उसका ध्यान रखिए। और जब आप पढ़ रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पढ़ने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अरे खाना छूट जा रहा है, कुछ खा नहीं रहे हैं, पानी भी नहीं जा रहा है, तो वो ध्यान दीजिए कि हेल्थ आपकी जब सही रहेगी तभी आपका माइंड वर्क करेगा। अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, ये सब कहा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे वो बेटर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें लगता है कि अरे वो दूसरा हमसे ज़्यादा जानता है, अरे यार मैंने तो अभी इतना ही पढ़ा है, उसने तो इतना पढ़ लिया। कॉम्पिटिशन इज़ गुड थिंग, हेल्दी कॉम्पिटिशन अच्छा होता है, टॉक्सिक वाला नहीं। हर एक कैंडिडेट की अलग अलग लर्निंग कैपेसिटी होती है, अलग अलग लर्निंग पेस होता है, तो आपको अपनी प्रोग्रेस अपने से ही आंकनी है, अपना ही बेटर वर्जन बनना है, किसी और से कंपेरिजन नहीं करना है। और फेलियर से घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप ध्यान देंगे, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से बात करेंगे, हो सकता है एक सक्सेसफुल हो और एक जिसने फेलियर्स फेस करे हो, तो सक्सेसफुल वाले के पास आपके लिए होंगी टिप्स, बट एट द सेम टाइम जब फेलियर जिसने फेस किया है उससे आप बात करेंगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि जो हिंड्रेंसेज आते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, दे हैव द सॉल्यूशन टू दैट। और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखिए, पहले से ही नहीं कि अरे बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, ये तो एकदम मैराथन है, ये तो रैट रेस है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बट एट द सेम टाइम कीप द पॉजिटिव स्पिरिट अलाइव। आजकल कहते हैं ना कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि ये हो जाएगा, तो कीप दैट मैनिफेस्टेशन अलाइव, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, हर दिन एक नई मेहनत होती है, हर दिन एक प्रोसेस होता है जो आपको आगे की तरफ ले जाता है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ाई नहीं हो सकती है, दैट इज़ कम्प्लीटली अनट्रू, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज अगर आप मल्टीपल रिविजन कर रहे हैं, अगर आप बहुत ढेर सारी चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो दिमाग में रिकॉल हो रही है और कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली सेटल हो रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब भी आप पढ़ रहे हैं, विच हैज़ वर्कड फॉर मी, आप ये कर सकते हैं कि पढ़ते पढ़ते जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना उसको आप अपने दीवार पर लिख के, जो भी वन लाइनर्स हैं या फैक्चुअल चीज़ें हैं वो लिख के आप

चिपका सकते हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगी जब भी आप इससे चल रहे हैं, ठीक है, आप अपने टेबल पे बैठ रहे हैं तो आपकी नज़र पड़ जा रही है तो आप उसको रिकॉल कर ले रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, और आपको समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, जब भी हम कहीं मान लो ऑप्शन देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हमको अच्छा दिमाग में आता है कि अच्छा मैंने वहाँ पढ़ा था, मैंने जो स्टिकी नोट अपने दीवार पे चिपकाई थी उसमें ये मैंने यहाँ पे ये ऐसे करके लिखा था। तो वो जो पिक्चर पिक्टोरियल मेमोरी होती है ना, वो भी काम आती है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको काम में आ सकती हैं, बस आपको ज़रूरी है कि आप इन सारी टिप्स को अपने प्रैक्टिकल यूज़ में लाइए, क्योंकि कहना आसान होता है कि टाइम टेबल बना लो, बट उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो ट्राई कि ये सारी टिप्स आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें, और वी विश ऑल द बेस्ट कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आपका वो क्लियर हो जाए विद ऑल योर डेडिकेशन। तो प्रोग्राम में लास्ट गाना आपके लिए।

तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में Q&A सेशन लेके आते हैं, तो कल का हमारा प्रश्न था, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां भारत की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना यानी कि अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित की गई थी। इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। और आज का हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ दिन और रात की लंबाई हमेशा बराबर होती है। आप अपना जवाब दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पर और हमारे फ़ोन नंबर 8004926250 पर। और इसी फ़ोन नंबर और इसी ईमेल आईडी पर आप हमको हमारे आज के प्रोग्राम का रिव्यू भी दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम, और बता सकते हैं कि अगर हमें कुछ और ऐड करना हो हमारे प्रोग्राम में। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मैं यानी अंजलि श्रीवास्तव लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026

किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात 11:10 पर लखनऊ स्थित इमामबाड़ा गुफराम आब में होने वाली मजलिसे शाम गरिमा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी। इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी के साथ की गई बातचीत। ये कार्यक्रम हेलो पंचायत घर कार्यक्रम के अंतर्गत होगा। 7:31 पर सुनिएगा डॉक्टर अरुणे मिश्र की वार्ता संस्कृत वांगये चिकित्सा विज्ञानम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रियंका त्रिपाठी के गाय भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे शाम 7:45 पर। रात 8:30 अंग्रेजी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर के राशि कुमार की वार्ता जेंजी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। 9:30 गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशां और रात 10:00 नरेश मिश्र का लिखा नाटक सुनिएगा छोटी भाभी। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कमला बोस का ख्याल गायन प्रसारित किया जाएगा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। रात 9:30 पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती का प्रसारण होगा। रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर निशि सेवक से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी धान की फसल में कीट नियंत्रण। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर असी पटेल की वार्ता हार्ट अटैक की बढ़ती समस्या। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रियांक कृष्ण का सैक्सोफोन वादन हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 और दोपहर 12:15। नमस्कार प्रयागराज ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुजाता सिंह के गाए भजन और गीत सुनिए सुबह 9:50 पर। सात्विक मिश्रा के गाए भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे शाम 7:45 पर। लोक माधुरी कार्यक्रम में रश्मि टंडन और दुखी राम के गाए लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। अजय कुमार यादव और साथियों के गाए लोकगीत दिन में 2:30 प्रसारित होंगे। सूरज कुशवाहा के गाए लोकगीत आप सुनेंगे शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में। सुबह 10:30 कथक नृत्यांगना डॉक्टर अनु सिन्हा से नेहा गुप्ता की बातचीत सुनवाई जाएगी। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में नम्रता श्रीवास्तव की वार्ता होगी मानसिक शांति में सकारात्मक सोच। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5:15। इसमें श्रोता सुनेंगे अनन्या पांडे पर केंद्रित कार्यक्रम आज की शाम आपके नाम। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर उमर हसन से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत बदलते जलवायु में हृदय का कैसे रखें ध्यान। 7:31 पर डॉक्टर चितरंजन सिंह की वार्ता होगी डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: झिलमिल सितारों से बच्चों की मुस्कुराहट समाती है बाल संग बाल गोपाल और नन्ही दुनिया में।
1: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
0: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ। तू आशिक है।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: पीएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचि

0: का निधि ही झाह। आदौ मुख्य वार्ताः। गृहमंत्री अमित शाहः मादक द्रव्यानां विरुद्धं संयुक्त संघर्षस्य आह्वानं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् मादक द्रव्यानां विभीषिका राष्ट्रीय सुरक्षायाः यूनां भविष्यस्य कृते च संकटं जनयति। अयोध्यायाः राम मंदिर दान राशि स्तेय प्रकरणे अष्टौ जनाः निगडिताः। पैक सिलिका संधौ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलायै भारतेन सह चतुस्त्रिंशत् देशानां हस्ताक्षरं जातम्। मुहर्रम पर्वणि प्रधानमन्त्रिणा हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागाः संस्मृताः। अपि च क्रीडा वार्तासु, यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य युवा क्रीडकः रौनक चौहानः चीनी ताइपे क्रीडकं चौ तिएनचेन इत्यमुं पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसंघर्षस्य आह्वानं विहितम्। मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः युवभ्यः मातृभ्यः अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशम शीर्षस्तरीय सभाम् अभिसंबोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाहः अवोचत् यत् चतुरोत्तर 2000 तः 2014 पर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26 लक्ष किलोग्राम मितं संश्लेषित मादक द्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्य अपेक्षया 14 अधिक 2000 तः 26 अधिक 2000 पर्यन्तं गृहीतानि संश्लेषित मादक द्रव्याणि 8.11 मिलियन किलोग्राम मितं यावत् वर्धितम्। सः अवोचत् यत् मादक द्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानम् अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अंकैः ज्ञायते। मादक द्रव्याणां निवारणस्य प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन मादक द्रव्याणां अपराध सम्बद्धानां सूचनानां समयोचित आदान प्रदानार्थं अनेकानि ऑनलाइन पटलानि विकसितानि सन्ति।
1: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशा मुक्त भारत अभियानम् जनसहभागित्वेन चालितं जनान्दोलनं जातम्। मादक द्रव्य मुक्त भारत निर्माणस्य महत्व विषये सामाजिक न्याय सशक्तिकरण राज्य मन्त्रिणः बी.एल. वर्मणः लेखं विनिमयीकुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्। उत्तर प्रदेश आरक्षकेण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दान राशि स्तेय प्रकरणे FIR इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पञ्जीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च स्ते

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने पंचायत घर।

0: श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके फोन कॉल्स पर आधारित हेलो पंचायत घर कार्यक्रम। हमारे विशेषज्ञ हैं जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी। श्रोताओं, अगर फोन के द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो तुरंत फोन उठाइए और फोन करिए हमारे विशेषज्ञ श्री रविशंकर द्विवेदी जी को और उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान करिए। फोन नंबर नोट कर लीजिए, हमारा फोन नंबर है 0532-297-462 और 0532-242-3649। तो आइए शुरू करते हैं आज का हेलो पंचायत घर कार्यक्रम।
1: पंचों राम राम। भैया
2: सिमरन भाई, का हाल चाल है?
1: हाल चाल तो देखा राम तार भैया सब सही बाटे। आज अपने जोन पंचायती बाटे, पंचायती सजी बाटे और पंचायती में हम सब लई के आवा एक विशेष कार्यक्रम।
2: हाँ।
1: और हमरे साथ भैया देखा एक विशेष अतिथि हैं जे कि जिला पंचायत राज अधिकारी हैं और साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी गए हैं, श्री रविशंकर द्विवेदी जी। भैया
2: तो भैया हो अपने पंचायती में, हम किसान भाइयों की ओर से भी श्री रविशंकर द्विवेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपको बहुत बहुत स्वागत बाटे।
3: सबका राम राम हमारी तरफ से।
1: हम सभी अपने कार्यक्रम में जब हूँ आई था तो भैया ऐसे मनई के लिए के आई था जे कि आवत हिन और किसान भाई के खेती किसानी से जुड़ा हुआ कोनो सवाल होता, कोनो समस्या होता, भाई उनसे बातचीत की जाता, भैया अरे फोन करते हैं उनका समस्या सुलझाई जाता।
2: सही कहे भैया, चूंकि पंचायत विभाग का ही पूरे जिले का सबसे बड़ा मुखिया है, तो गांव के आखिरी आदमी तक कम पढ़ा लिखा है या ना पढ़ा लिखा है, जौन शासकीय सुविधा है, जौन शासकीय कार्यक्रम है, जौन ग्रामीण पृष्ठभूमि के ग्रामीण उत्थान के खातिर जौन कार्यक्रम है, हम
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: उनके बारे में किसान भाइयों से ये अपेक्षा है कि उनकर जौन भी शंका है वो आदरणीय रविशंकर भैया के सामने रखें और उनका समाधान निश्चित हो आज फोन इन कार्यक्रम में।
1: अच्छा राम अवतार भैया, जैसे आप कहें कि भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि के बात की है, तो भैया हम आपसे पूछा चाहब, चूंकि आप यहाँ रहते हैं अधिकारी के रूप में, भाई कैसे जुड़ाव आप महसूस कर रहे थे कि जोन पंच भैया हरे हैं, जे भैया हरे गांव में रहा चाहते हैं, उनकर समस्या कैसे समझ में आवा तो का कैसे समाधान होकर होता, एक बारे में कुछ आप बतावें।
3: हाँ सही कहा थे ना आप, जैसे बात ये वक्त जैसे हम गांव के अधिकारी है, ये सही हाँ। बात है, लेकिन उससे बड़ी बात ये हो कि हम गाँव में पैदा भाई।
1: अच्छा।
3: गाँव में पढ़े लिखे है।
1: बिल्कुल।
3: और गाँव पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचा है और जोन छुट्टी जब पाई थी फिर गाँव चला जाई थी।
1: अच्छा एक तो, बात हम कह भैया कि जोन आप जैसे अधिकारी तो बाटन, एक बात बड़ी अच्छी आप कर लगी कि आप जोन हमारे पसंद का भाषा बांटे, पंच भैया का जोन भाषा बांटे,
3: भाषा में कर भाषा हुए हमारे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये चीज। और जोन भैया अरे सुनत हुई भाई, वो एक तरह से आत्मीयता।

0: महसूस करत हुई और एक जुड़ाव महसूस करत हुई
1: और उनके भैया जौन भी उनकर बात है फोन करें तो भैया उनकर समाधान जरूर करें।
0: अच्छा अच्छा तो हम कही कि भैया देखा जोन कार्यक्रम बांटे ज्यादा से ज्यादा लोग फोन करें और ज्यादा से ज्यादा जोन समस्या होगा आपका अगर बांटे तो उस समस्या का समाधान होए।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा एक चीज और बांटे, जैसे अपन जोन पंचायती राज अधिकारी हैं तो गांव से कई तरह के समस्या होते हैं और गांव में कई तरह के जोन पहल की जाते हैं, नई नई तरह के पहल होता भाई, साफ सफाई से संबंधित साथ ही साथ
1: विकास कार्य से
0: संबंधित होते हैं, ओकरे बारे में भैया बताऊंगे कुछ
1: बताऊंगा।
2: जैसे गांव में बहुत तरह की योजना चलत है, आप सब जानबे करते हैं, जौन प्रधान हैं, सचिव हैं, लेखपाल हैं, हाँ। इनके सबके माध्यम से, कृषि विभाग के लोग हैं, सब इनके माध्यम से जौन योजना सरकारी होती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो चाहे भारत सरकार की हो, वो सब योजना गांव में उनके माध्यम से चलाई।
0: एक मिनट आपके रोका चाहे भैया, हमारे एक जो है श्रोता हैं भैया कॉल लाइन पे हमसे जुड़ा हैं, हम उनसे बात करब और भाई देखे थे उनका का सवाल बांटे। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ भैया राम राम, कहाँ से बोलत हैं?
3: हम बनारस से बोलत थे।
0: अच्छा आपका हेलो पंचायत घर में भैया बहुत स्वागत बांटे। हमारे साथ हैं जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी। भैया हम कहा कि कोनो आपका सवाल बांटे, शंका बांटे और कुछ ऐसा चीज बांटे तो भैया आप पूछ सकते हैं। आपका हम सब सुना था, पूछा ही।
3: हमारे पास नींबू का पेड़ है, फली भी बहुत अच्छी है लेकिन फट जा रही है सर, क्या करें उसके लिए?
2: अच्छा कौने गांव में आपके बाटे ही समस्या तो बतावे।
3: बनारस, बनारस
2: नहीं, बनारस में कौनी जगह है वो बतावे ना, तो फिर वहाँ जो कृषि विभाग के अधिकारी हुई हैं तो वो आपसे संपर्क करी हैं और उनका समस्या का समाधान कराई हैं। हाँ तो ब्लॉक में जौन कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं, सहायक विकास अधिकारी कृषि होते हैं, वो ब्लॉक में आप जाके उनसे मिलें तो वो आपके समस्या का समाधान करेंगे।
0: धन्यवाद भैया कॉल करे बिना। अच्छा एक चीज और बांटे, जैसे भैया पूछें कि खेती किसानी से जुड़ा सवाल बांटे ही, बहुत बार होता कि भाई फसल लगाई जाता उमन कुछ दिक्कत हो जाता, फलत ना ही अच्छी होता, कीटनाशक से संबंधित समस्या, तरह तरह का खाद संबंधित समस्या, तो किसान भाई समझ नहीं पावतीन कहाँ जाएं?
2: हाँ बिल्कुल सही प्रश्न करते हैं आप। जैसे एक बड़े सरकार बहुत योजना चलाओ तो बहुत प्रयास करते हैं, गांव गांव चौपाल लगवावत है, ब्लॉक में चौपाल लगवावत है, शहर में बड़ी बड़ी कृषि गोष्ठी करत है, जोन किसान जोन प्रगतिशील किसान हैं उनका सम्मानित किया जाता है। अब जल्दी में एक कृषि गोष्ठी बहुत बड़े लेवल पे अपने प्रयागराज में भाई।
0: अच्छा, अच्छा।
2: तो ये कोशिश मतलब ना मंडल से लेके जिला से लेके ब्लॉक से लेके गांव तक कोशिश कही जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से। जोन और जोन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे किसानी में सब पीछे चला जाते हैं तो जे जे प्रगतिशील किसान हैं ऑर्गेनिक कृषि करते हैं उनका बहुत प्रोत्साहित कही जा यहाँ सरकार द्वारा, तो जैसे उनका देख के बाकी जोन और किसान हैं जेका लागत है किसानी में फायदा ना बिकाऊ तो वो और अग्रसर बढ़े आगे बढ़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप जोन बताएं ना कि तमाम तरह के जोन गोष्ठी होते हैं उकरे माध्यम से भैया आप जानकारी ले सकते हैं। निकरे अलावा जैसे जोन किसान कॉल सेंटर हैं भाई उमन भी आप कॉल कही कि कौन अगर समस्या बांटे उसका समाधान मिल सकता है। हम सब आकाशवाणी के माध्यम से भैया हमेशा बताई थे तरह तरह के जोन चर्चा होते हैं पर चर्चा होते हैं उकरे माध्यम से हम बताई थे। अच्छा हम एक और हमरे पंच भैया जुड़ा है कॉल पे तो उन्होंने बात कर ली जाए। हेलो
4: सर प्रणाम।
0: हाँ नमस्ते भैया, का हाल चाल बा?
4: सब बढ़िया सर।
0: का नाम बा बतावें, कहाँ से बोले थे निहो बतावें?
4: सर राम शंकर मिश्रा बोले थे।
0: अच्छा राम शंकर मिश्रा जी
4: कहाँ? प्रयागराज से बहरिया।
0: अच्छा बहरिया से आप बोले थे। राम शंकर जी हमारे साथ जय हैं श्री रविशंकर द्विवेदी जी जिला पंचायत राज अधिकारी, तो कोनो योजना के बारे में आपके मन में सवाल हो या कोनो खेती किसानी से जुड़ा हुआ प्रधानी जोन प्रधान होते हैं या जोन व्यवस्था चलत बाटे उसे जुड़ा कोनो अगर आपके सवाल बा पंचायत से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं।
4: जी पंचायत से जुड़ा हुआ
0: जी पूछे हैं, आप सुने थे सब जने आपके।
4: अच्छा सर द्विवेदी प्रणाम सर।
2: हाँ जी नमस्कार, बताएं मिश्रा जी।
4: सर ये पूछना चाह रहा था सर कि मेरा ये प्रयागराज में बहरिया ब्लॉक है।
2: हाँ हाँ बताएं।
4: यहाँ महुली ग्राम सभा है सर, इसमें पंचायत भवन का निर्माण आज 6 साल 7 साल से हो रहा है।
2: अच्छा
4: लेकिन सर अभी वो फाइनल नहीं हो पाया सर।
2: तो क्या समस्या है मन कहे ना है
4: समस्या सर? ये मैं वीडियो साहब से भी बात किया
2: हाँ
4: कई बार लेकिन वो कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है,

0: अच्छा, तोरे गांव सचिव प्रधान के हन बतावे तब मौका एक बाद हम चेक कराई थी काल लेको कि काहे समस्या आवत काहे ना बन पावत काहे ना पूरो
1: प्रधान प्रधान है श्रीमती परमीला देवी।
0: अच्छा,
1: और सचिव है श्री शेखर श्रीवास्तव जी।
0: अच्छा ठीक है, तो काल हम एडीओ पंचायत के और उनका भेजी थे गांव में, देखी तो कैसे काहे समस्या आवत कंप्लीट
1: बन जाता तो थोड़ा अच्छा हो जाता।
0: नहीं बिल्कुल बनेगा, आप परेशान ना हो।
2: आप मिश्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप काल के। एक हमारे साथ और पंच भाई जुड़ा है, इन्हें उससे बात कर ली जाए, इन्हें देखा समस्या का बाटे क्या का प्रश्न बाटे इनकर। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ राम राम भैया, राम राम भैया,
3: राम राम।
2: हाँ कहाँ से बोला थे ना आप, कहाँ नाम बाटे आपका?
3: संदीप कुमार मौर्य बोल रहे हैं, माधवपुर चंदन घाटम पुल से।
2: अच्छा बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हेलो पंचायत घर कार्यक्रम में। का आपका का सवाल बाटे?
3: सवाल हमारा ये है कि माधवपुर चरण घाटम पुल में सर एक विवाह घर के लिए जमीन काफी है।
2: जी जी,
3: एक विवाह घर बनवा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
2: अच्छा बताएं बताएं। अच्छा एक चीज और बाटे भैया, देखा जोन ये सवाल आप पूछते हैं।
0: हाँ ठीक है। कौन ब्लॉक हुए आपके?
3: ब्लॉक कौड़िहार है सर।
0: अच्छा ब्लॉक कौड़िहार है, तो बारात घर ना पंचायत उत्सव भवन की ये स्कीम है, वो सरकार अभी चला रही है, तो उसके लिए यदि गांव वाले चाहते हैं तो एक प्रस्ताव बनाकर वो हमारे कार्यालय में उपलब्ध करा दें तो हम उसको जरूर प्रोसीड करेंगे। वहां पे पंचायत उत्सव भवन के नाम से ये उत्तर प्रदेश सरकार स्कीम चला रही है, तो वो बन जाएगा, कोई समस्या नहीं।
3: हाँ सर करवा, और सर गाँव में लाइब्रेरी भी करवा देते ठीक रहता सर।
0: तो इसका प्रस्ताव आप उपलब्ध कराएं, यदि जमीन होगी और उसका ग्राम पंचायत से प्रस्ताव आ जाएगा तो बिल्कुल इस पर विचार किया जाएगा।
3: सर मेरे यहाँ जमीन 11 बीघा पड़ी है जमीन।
0: तो ठीक है, उसका ग्राम पंचायत से और भूमि प्रबंधन समिति से प्रस्ताव आ जाएगा तो बिल्कुल इस पर विचार किया जाएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया एक चीज बाटे, देखा जितना दिन इतना काल आई गई बाटे, अच्छा देखा कितनी बढ़िया बढ़िया चीज बतावते हैं कि भाई ये निर्माण हो जाए, निर्माण हो जाए, तो कतौ न कतौ ये चीज की जरूरत बाटे कि भाई कतौ न कतौ ये प्रस्ताव लावा जाए कि भाई बात हो, आपसे भी बात हो या जोन अधिकारी भैया हरे उन्हों से बात हुई तो ये चीज आगे पहुंचाई और आगे ये काम बढ़ाई।
4: भैया सुमरन भाई एक बात, जौन एक सामान्य ग्रामीण की समस्या है हर गांव में करीब करीब आवत है, आपसे हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से यही जाना चाहिए कि गांव में जौन जल निकासी समस्या है, जौन पुराना तालाब पोखर है, दिनों दिन देखा ही जाता है कि ओकर पटाव हो जाता है, ओकर अस्तित्व समाप्त होता है। तो आप जिले का सबसे बड़ा मुखिया हैं ग्राम पंचायतन का, हम किसान भाइयों की ओर से आपसे यही जाना चाहिए कि एक खातिर पुराने जलाशय जौन हुए उनका पुनरुद्धार कैसे हो, गांव में जल निकासी का समस्या कैसे हो, एक बारे में आप बतावें कि का प्रयास चलत हैं आपके स्तर से।
0: हाँ बहुत महत्वपूर्ण बात आप कहते हैं, जैसे अभी बरसात आवे वाला बा तो देखा अगर जल निकासी की व्यवस्था ना रहत तो जलाशय ओवरफ्लो करे लागत हैं, पानी यहाँ वहाँ हो लागत हैं
4: जी।
0: तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये जैसे जितना ब्लॉक हैं 23 ब्लॉक हैं प्रयागराज में
4: जी,
0: तो हर ब्लॉक से हमारे से अभी कि पांच जोन जलाशय हैं उनका चिन्हित की नहीं, जोन बहुत ज़्यादा जमीन प्रदूषण होएगी बा या पॉलीथीन होएगी बा या ओकरे अगल बगल बहुत झाड़ी वाड़ी होएगी बा, तो ओकर साफ सफाई की व्यवस्था और ओमेन कैसे जोन वेस्टेज जाते ओकर ट्रीटमेंट कई के ओमेन जाए जोने पानी दूषित ना हो और पानी ओवरफ्लो हो तो नुकसान ना हो, तो ये हम शुरू कराए है अभी सभी के सहयोग से। लेकिन एमएन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो गांव वाले लोग हैं अगर उन्हों सबके सहयोग रहे तो जितना ये सब
4: जलाशय मतलब आम जन का सहभागिता,
0: आम जन का सहभागिता रहे तो ये और कार्यक्रम आगे बढ़े
4: जी जी।
2: अच्छा जय भैया देखा एक और पंच भैया जुड़ रहा है हमसे काल पे, तो उन्होंने बात की जाए कि भाई का सवाल बांटे का उनका
4: बिल्कुल
2: बांटे। हेलो
5: हेलो,
2: हाँ भैया कहाँ से बोले थे?
5: सर गुसेनपुर से बोल रहे हैं सर।
2: अच्छा क्या नाम बाटे भैया आपका?
5: सर अभय नारायण मिश्रा।
2: अच्छा अच्छा हेलो पंचायत घर में भैया आपका स्वागत बाटे, हमारे साथ हैं जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी। भैया आपको जो सवाल बाटे और अगर बात करा चाहे आपको सुनत है भैया पूछा
5: जी। सर सर हमारे यहाँ सर चकमार्ग के लिए हम सर 3-4 बार SDM के यहाँ आवेदन दिए थे और उनके यहाँ से पत्र जारी हुआ था और चकमार्ग सर अभी अधूरा है, मिट्टी का कार्य और इंटरलॉकिंग नहीं कराया गया है सर, और वो पत्र हम आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जो आपने आज नंबर दिया है सर।
0: अच्छा ठीक है, कौन गांव है?
5: उग्रसेनपुर सर।
0: और विकास खंड कौन है?
5: प्रतापपुर सर।
0: अच्छा प्रतापपुर, तो एक जो ग्राम पंचायत की बैठक होते वो हमें नहीं प्रस्ताव एक जरूर रखे।

0: दैट अगली बार वाली जो कार्ययोजना बने ग्राम पंचायत के उमन लाई की आपके काम कराए दिन जाए।
1: नहीं सर, वो उसमें हम पहले से एसडीएम के सब आदेश हुए हैं सर।
0: नहीं बिल्कुल,
1: लेकिन
0: हम आपकी बात,
1: सिर्फ पंचायत,
0: हाँ आपकी बात समझ गए। तो जो ग्राम पंचायत की बैठक होगी उसमें आपका ये प्रस्ताव ले लिया जाएगा, तो फिर उसका
1: नहीं
0: भुक्त,
1: सर
0: हाँ
1: आधा हुआ है, आधा काम नहीं हुआ सर।
0: तो जो आधा काम बचा हुआ उसको भी प्रस्ताव में इंक्लूड करके करवा लिया जाएगा, धनराशि ग्राम पंचायत में उपलब्ध होगी तो उसको बनवा दिया जाएगा।
2: अच्छा देखिए एक चीज़ और बटे राम अवतार भैया देखा है कि जैसे पंच भैया हरे हम भरे खेती किसानी कई रहा है और कई बार ये चीज़ समझ में नहीं आई बात था कि भाई कहाँ जावा जाए, कई बार समस्या हमें पचन के हो था तो ये कहाँ जावा जाए, कहाँ समस्या का निस्तारण हो। एक बड़े जरूरी ये बाटे कि भाई बातचीत की जाए और जोन तमाम तरह के मंच बाटन, चाहे वो गोष्ठी हो, चाहे वो विभाग हो, कार्यालय हो, वहाँ जाए कि भाई जानकारी ले के तब आगे काम किया जाए।
3: सही बात है।
2: एक सवाल हमारे बाटे, हम आपसे पूछा चाहब कि चूंकि जो पंचायत भाई भवन होता, जोन पंचायत कार्यालय होता, उकर अग्रणी भूमिका होता कि वो पंचायत अगर कोनो गाँव हो उकरे विकास में,
0: हाँ
2: तो कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम बाटन आपकी तरफ से पहल ली गई बाटे जैसे?
0: हाँ बिल्कुल सही बात कहा था। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंचायत भवन है उसका पंचायत सचिवालय के रूप में बनाया गया और हर गांव में एक पंचायत सहायक नियुक्त
3: जी जी।
0: तो अब पंचायत सचिवालय में जो बा कंप्यूटर इंटरनेट कुल व्यवस्था कहेगी बा और वोमेन सबसे इम्पोर्टेंट है, लगभग 200 योजना वो पंचायत सचिवालय के माध्यम से मिल सका। जैसे केहू के निवास प्रमाण पत्र बनवाए के हुए, केहू के जन्म प्रमाण पत्र बनवाए के हुए, मृत प्रमाण पत्र बनवाए के हुए, आयुष्मान कार्ड बनवाए के हुए, शौचालय के लिए आवेदन करे के हुए, पेंशन के लिए आवेदन करे के हुए, तो यह सब बड़े वो पंचायत सहायक के अपन अप्लीकेशन दे सकत है और वो आगे विकास खंड पे प्रोसेस कर दे जौने होके आगे समस्या ना हो। और पंचायत सचिवालय में सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ग्राम पंचायत हो जौन विकास की धनराशि आवत है वहीं ग्राम पंचायत से भुगतान होते हैं। तो जितनी हमारे ग्राम पंचायत हैं अब वो डिजिटल हो गए हैं, वहाँ सारा जोन भुगतान होते हैं ऑनलाइन चेक के माध्यम भुगतान ना आए।
2: और राम अवतार भैया देखा एक और पंच भाई फोन पे हैं हमारे साथ हैं, बात करें देखें क्या कहते हैं।
3: जी बताएं।
4: हाँ भैया राम राम।
3: हाँ राम राम भैया, पंचायत के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत बाटे भैया। बतावे अपन नाम बतावे। हेलो
2: हेलो
4: हेलो।
2: अच्छा देखा कुछ,
3: हाँ, कुछ
2: तकनीकी दिक्कत आई हुई हुई, ऐसे संपर्क नहीं हुई पावा इनसे। एक चीज और बाटे कि चूंकि हम सब भैया तकनीकी दौर में है, जो तमाम और व्यवस्था बाटे भाई, हम तमाम तरह का ऐप जो है आवत बाटे, तमाम तरह का और सुविधा आवत बाटे डिजिटली, जोन चीज बाटे जेकर डिजिटलीकरण होत बाटे, तो जोन सबसे भाई ऊपर किसान बाटे वो डिजिटलीकरण का कैसे उपयोग कर सकता है, जोन तकनीक आ गई बाटे मोबाइल बाटे फोन बाटे।
3: हाँ, जैसे बहुत सी योजना है आपका कि बतावा जाता है कि ओटीपी आए तब काम आगे बढ़े, तो एकर जोन अनपढ़ किसान भाई हैं वो कैसे उपयोग में लावे।
0: सबसे बड़ी बात एमन हो जैसे कि नंबर जारी कर जा सरकार द्वारा, जैसे कि 1076 नंबर जारी कर गया।
2: अच्छा,
0: कि कौनो समस्या हो आप ओपे फोन करा।
2: हाँ।
0: तो वहाँ अधिकारी ट्रांसफर हो जाए कि जोन समस्या बा और वो अधिकारी स्वयं उसे बात करे, चाहे
2: अच्छा।
0: जे रहा है चाहे किसान भाई रहा है चाहे युवा रहा है, वो सीधे उनसे बात करें और जब तक वो संतुष्ट न हो जाइए तब तक उनका समस्या बनी रहे, वो अपन संतुष्ट या संतुष्ट फीडबैक हो पे दे सका।
3: जी जी जी,
2: बहुत बढ़िया बात। हाँ, बताया ना कि भाई 1076 पे अगर आप कॉल कर रहे थे तो वहाँ तुरंत जोन समस्या बा आपका अधिकारी से बात हो और तुरंत उनका निस्तारण हो। अच्छा एक चीज और बाटे कि देखिए हम सब बात बत कही करब मगर एक और कॉलर हमसे जुड़ा था, देखा इनसे बात किया जाए देखा कहाँ से जुड़ा था। हेलो
3: हेलो
2: हेलो।
4: हाँ भैया राम राम।
2: हाँ पंच भैया राम राम, कहाँ से बोले थे भैया?
4: भैया हम धनुपुर ब्लॉक से खड़गपुर गांव से बोलत है।
2: अच्छा का नाम बाटे भैया आपका?
4: हमारा नंबर शिव गोपाल सिंह।
2: अच्छा शिव गोपाल भैया बहुत बहुत स्वागत बाट आपका हेलो पंचायत घर कार्यक्रम में। भैया हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि बाटन आज हेलो पंचायत घर कार्यक्रम में, श्री रविशंकर द्विवेदी जी भैया जे की जिला पंचायत राज अधिकारी बाटन। अब कोनो सवाल बाटे तो भैया आपके सुनत है, आप सवाल पूछ सकते हैं।
4: हाँ भैया हम पता चला रहा कि डीपीआरओ जी आवत हैं कार्यक्रम में, यह वजह से हम कुछ जानकारी लेके लिए फोन करे है।
2: हाँ हाँ बताओ पूछें पूछें
4: भैया। ये बताओ कि जैसे अपने किसान भैया लोग हैं हम लोग है, तो बहुत सारी जानकारी हम लोगों के मिल नहीं पावत,

0: तो उनका स्रोत बा, कैसे हम लोगन के जानकारी मिले, सरकारी योजना का जानकारी मिले कि ओकर लाभ हम लोग ले सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा घूम फिर के देखे भैया, वही बात आवत है कि भाई जानकारी कहाँ से ली जाए। को किसान भैया फोन करते हैं तो भाई एक ही समस्या जो हमके समझ में आई बाटे कि जानकारी कैसे ली जाए, तो आप बताओ मैं कैसे।
2: हाँ, जैसे का हम पहले बतावत रहे कि जैसे आपके ग्राम पंचायत है या विकास खंड है, हर विकास खंड में कृषि विभाग संबंधित कर्मचारी रहते हैं, और अगर उस ना समझ में आते तो अपने गाँव जोन सचिव हैं, अपने गाँव जोन ले

0: आपके ग्राम पंचायत है या विकासखंड है, हर विकासखंड में कृषि विभाग संबंधित कर्मचारी रहते हैं। और अगर उस ना समझ में आवते तो अपने गांव के जोन सचिव हैं, अपने गांव के जोन लेखपाल हैं, या अपने गांव के जोन पंचायत सहायक हैं। जैसे अभी दो कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, चलता है, एक फार्मर रजिस्ट्री और एक क्रॉप सर्वे। ये दोनों किसान संबंधित बहुत बृहत स्तर पर कार्यक्रम चलाए गए हैं कि कैसे आगे जोन किसान के लाभ हो। जैसे ये सबसे बड़ा जो किसान सम्मान निधि है वो आवत है, उनका कैसे मिल पावे। इकरे अलावा हर विकास खंड पे सिंचाई संबंधित और कृषि विभाग संबंधित, इकरे अलावा खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी कृषि होते हैं, इकरे अलावा बोरिंग टेक्नीशियन होते हैं, बहुत प्रकार कर्मचारी अधिकारी होते हैं। तो वहाँ जाएँ, उनका जौन जौन योजना की जानकारी हो तो वो अपने ग्राम पंचायत पे, विकास खंड पे, और अगर उसी न हो तो जिला पे, जिला कृषि अधिकारी या हमारे लगे आई के या उपनिदेशक कृषि होते हैं। और ऐसे कईयों प्रकार के अधिकारी होते हैं जो टेक्निकल, जैसे भूमि संरक्षण अधिकारी होते हैं या कृषि प्रसार अधिकारी होते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के अधिकारी होते हैं, तो उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इनका मोबाइल नंबर, इनका मोबाइल नंबर उपलब्ध रहते हैं, तो वहाँ पे उसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जैसे हम लोग गोरु बछड़ू रखे है, पशु प्राणी है हमारे यहाँ, टीकाकरण करावा जाता अपने गोरु बछड़ू के सरकार के तरफ से, तो उकर जानकारी कैसे मिले हम लोगों के।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात कहते हैं। एकाबरे हर विकास खंड में पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, उनका नंबर वहाँ लिखा रहा थे और ऑनलाइन उपलब्ध रहा थे, तो आप सीधे उनका फोन के सीधे पे वो कैसे कर देना, और वो बिल्कुल यहाँ बारे में जानकारी।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप काल के बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया।
3: भैया द्विवेदी जी, एक जौन आम जनमानस का समस्या है गांव में, आजकल देखा जाता है कि शहर की तुलना में गांव में भी प्लास्टिक का बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्यों थोड़ी भी चीज़ भी थैला लेके नहीं जाते। तो ये जो प्लास्टिक का प्रवृत्ति गांव में आ गई बैठे तो पशु भी खा लेते हैं, उनके दिक्कत होती है, तमाम तरह का प्रदूषण भी होता है। आप बताएं, चूंकि जिला के पंचायत का सबसे बड़ा मुखिया है, हम किसान भाइयों की ओर से आपसे ये जानना चाहिए कि एक समस्या का निदान आपके स्तर से कैसे हो रहा है।
0: सबसे बड़ी बात ये हो कि हम सभी जितना जने ये हमारे श्रोता बंद सुनते हैं, उनसे हम ये अनुरोध करें चाहब कि जैसे जब आप सब्जी ले जाएं या कोनो सामान ले किराना पे जाएं तो झोला घरे से ले जाएं, पन्नी या पॉलीथीन ई दुकानदार से न मांगें। कहें ई नुकसान केवल जमीन के ना ही करत, पानी करत, जितना हमारे जल स्रोत हैं, भूमि के स्रोत हैं, सबको नुकसान करते हैं और प्रदूषित करते हैं। और आज ना है कि 10 साल 20 साल 30 साल तक वो कहीं से विघटित हो ना है, साइंटिफिक प्रोसेस जो होते हैं उसे उसका विघटित होने में बहुत समय लागत है। जैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट रहा था वो तो विघटित हो जाते, इना विघटित हो तो ई वैसे बना रहा थे, तो इससे भूमि की उर्वरता खराब होते हैं, जौन पानी की गुणवत्ता हो वो गड़बड़ हो जाते हैं। एक बरे पूरे जनपद में एक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान हम लोग चलावत बाटी, और ये में सब गाँववासिन के बहुत बहुत बड़ा सहयोग मिलते हैं। और ये जौन अभी 5 जून के पर्यावरण दिवस रहा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, तो वही दिन हम सब पूरे जौन ग्रामीण क्षेत्र है प्रयागराज से लगभग 5 टन सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं। और वो प्रयास पूरा जौन 12 वर्ष अभी सरकार की पूर्ण भरा तो लगभग 8 टन सिंगल यूज प्लास्टिक ये इकट्ठा कर गया, और एक रिसाइकलिंग और रीप्रोसेसिंग के प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जो सड़क वड़क बनाता है ये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से और लोक निर्माण विभाग से, कैसे का रिसाइकिल करके यूज कही जाए, कहें से इकट्ठा कर ली। तो सबसे ये चाहब कि कम से कम यूज करें, कहें से एकदम तुरंत ही।
2: एक मिनट हम आपके रोका चाहब, हमारे पंच भैया बड़ा देर से लाइन पे हैं और बड़ा देर से इंतजार कर रहा है,
3: बोले भैया
2: हम उनसे बात करब। हेलो
4: हेलो,
2: हाँ भैया कहाँ से बोलत हैं?
4: जी हम प्रयागराज से बोल रहे हैं।
2: अच्छा, क्या नाम बा भैया आपका?
4: गुरदीप त्रिपाठी।
2: भैया बहुत बहुत स्वागत बा आपका हेलो पंचायत घर कार्यक्रम में। हमारे साथ जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी बाटन। आप कोनो सवाल बाटे अगर तो आप इनसे कही सकते हैं। पूछे पूछे सब सुना था आपके।
4: जी प्रणाम, गुरदीप त्रिपाठी बोल रहे हैं।
0: जी प्रणाम, बताए।
4: ये ब्लॉक है त्रिंगवेरपुर धाम
0: जी हाँ,
4: और ग्राम पंचायत है तिरावन
0: जी हाँ।
4: हम चाहते हैं एक बार आप अगर आ जाते तो ठीक रहता।
0: ठीक है, बिल्कुल हम आपके गांव में जरूर आएंगे।
4: हाँ, कल शनिवार भी है।
0: ठीक है, तो हम आपसे समय लेके हम जरूर आएंगे आपको, आप हमारे नंबर पे एक बार संपर्क कर लीजिएगा, हम जरूर आएंगे आपके गाँव।
2: बिल्कुल, देखा भैया जो सादर आमंत्रण मिला बाटे ही आपके, देखा सब जने सुनत हैं, बहुत दूर दूर तक भैया आ रहे सुनत हैं,
3: अधिक से अधिक लोगों का समस्या समाधान भी हुई।
2: बिल्कुल, देखा इनका भाव, देखा कितना उम्मीद।

0: बाटे इनके
1: सुमरन भाई, भाई एक एक आम जनमानस का और समस्या गांव में आ गई बाटे। लगे हाथ श्री रविशंकर द्विवेदी जी से जान लिया जाए।
0: हाँ हाँ।
1: शहरी क्षेत्र की तुलना में आजकल ग्रामीण क्षेत्रन में नशा ज्यादा बढ़ रही
0: है। बिल्कुल बिल्कुल भैया,
1: विशेषकर जो युवा ग्रामीण भैया हैं उनके में भी ये प्रवृत्ति ज्यादा, चूंकि जिला के पंचायत का आप मुखिया हैं, किसान भाइयों की ओर से, बूढ़े किसान भाइयों की ओर से हमरे सभी आपसे ही जाना चाहे कि युवा किसान भाइयों के, युवा ग्रामीणन के हमरे सभी नशा से कैसे बचावा जाए, एकरे बारे में आपका क्या रूपरेखा है, क्या कार्यक्रम है, ओकरे बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा था ना आप, ये देखा जात बा कि पिछले 10-15 वर्ष में जो युवा साथी हैं उनके अंदर नशक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़े लग बा, और एक कारण परिवार में, समाज में न केवल मतलब जौन स्वास्थ्य के हानि होत बा, बल्कि सामाजिक जौन संवेदनशीलता बा वह कम होत बा, क्राइम बढ़त बा। तीका बरे हर ग्राम पंचायत में जौन पंचायत सचिवालय हैं ऊपर ही कोशिश कही जात बा कि नशा मुक्त से संबंधित जौन कोटेशन हो और जौन बैनर हो लगाए जाए, और ग्राम पंचायत में रैली निकाल जाए कि कैसे बताई जाए कि जैसे कि वो नशा करत रहा उसे का उकाऊ बाद में कैसे क्राइम में गा और कैसे ओकर नुकसान बा, ओकर परिवार के नुकसान बा। एक बरे जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे और बहुत सारे ग्राम पंचायतन के एक स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल के नशा मुक्त ग्राम पंचायत निर्माण हमरे से करते हैं, और बहुत सारे ग्राम पंचायत के प्रधान के अभी पुरस्कृत हो ये मन का ये वाट है अलग अलग विकास।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
2: और बहुत महत्वपूर्ण
0: आगे आगे पर हम सब और बात करब, लगातार जोन फोन आवत बाटे, भैया हरे पंच भैया हरे इंतजार करत हैं और लगातार आपसे बात करा चाहते
1: हैं। बताओ भैया,
0: अब एक और भैया कलर हमसे जुड़ा है। हाँ भैया, राम राम भैया।
3: हेलो,
0: राम राम भैया।
3: जी राम राम,
0: बहुत स्वागत बा आपका हेलो पंचायत घर कार्यक्रम में। कहाँ नाम बाटे आपका और कहाँ से बोलत है ना?
3: जितेश तिवारी, करछा विकास खंड के चनैनी ग्राम पंचायत।
0: अच्छा जितेश तिवारी भैया, हमरे बीच जोन मेहमान हैं आज जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी, आपके सुनत हैं, आप इनसे अपन कोनो सवाल बाटे वो पूछ सकते हैं, पूछे भैया।
3: हेलो,
2: बताइए।
3: सर सर प्रणाम सर।
2: जी नमस्कार, बताएं।
3: सर मेरा एक प्रश्न है कि मैं, मेरे गांव में 10 वार्ड हैं सर।
2: जी हाँ।
3: और मैं हर वार्ड में कम से कम 5-5 जो है वो कचरा कूड़ा रखने वाला सर।
2: जी हाँ।
3: उसको रखवाना चाहता हूँ, तो ये किस मद से हम इसको लगवा सकते हैं सर?
2: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि देखिए अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि कैसे प्रदूषण मुक्त करें, और ये ग्राम पंचायतों में हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया सवाल है इनका। तो आप प्रत्येक वार्ड में जो केंद्रीय वित्त की जो टाइड ग्रांट होती है, जो कि पेयजल और स्वच्छता के लिए होती है, उससे आप करवा सकते हैं प्रत्येक वार्ड में। और इसमें आप केवल इसको रखवाइए ही मत, बाकी लोगों को भी प्रेरित करिए कि उसका उपयोग करें, और जो आपके ग्राम पंचायत में कूड़ा गाड़ी है उससे जो आपका RRC सेंटर है वो प्रतिदिन या जो भी रोस्टर बने वो वहाँ तक उसको ले भेजा।
0: अच्छा राम अवतार भैया, देखा जोन बात भाई, कितना बढ़िया बात भाई कि आजकल जोन ग्रामीण क्षेत्र बाटे वहाँ भी भैया हरे सफाई को लेकर के
1: जागरूकता आ रही,
0: जागरूकता आ गई बाटे, और ये न केवल भैया विभाग से भवा बाटे बल्कि जोन भैया हरे हैं भाई उन्हों से जो उनके मन में आवा बाटे कि भाई साफ सफाई रखी जाए।
2: हाँ,
0: अपने आसपास के क्षेत्र के अच्छा किया
2: जब
0: जाए।
2: तक सरकार काम कर रही है और उसमें आम जन का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, जब दोनों लोग मिल के दोनों पहिया रेलगाड़ी के दोनों ट्रैक पे एक साथ चलेंगे, तभी ये सब चीजें हम, जो साफ सफाई की बात हो या तालाबों की स्वच्छता की बात हो, ये सब हम अचीव कर पाएंगे।
1: जी जी,
0: एक हमारा सवाल बटे ये हम पूछा चाहब कि जो अभी आप बात कर रहे थे फार्मर रजिस्ट्री के बारे में कि भाई उनकर जो बही संख्या बांटे, जो उनका खाता बांटे, उनका उनसे कह दिया जाए जो फर्जी वाड़ा होत बांटे ऊ ना होए, तो फार्मर रजिस्ट्री का प्रक्रिया बांटे वो का लाभ दे किसान भाई?
2: बहुत इंपॉर्टेंट बात आप करते हैं। अभी अब तक हमरे से डिजिटल गाँव की बात करते रहे कि डिजिटल गांव में तो जैसे बही पहले बंद रही, अब एक डिजिटाइजेशन कई दिन जाता है, इसे एक लोकेशनों पता लग जाते हैं, तो जोन जैसे कि फर्जी वाला कई लेता रहा, केहू नाव चढ़ाई लेता रहा, या केहू की योजना का लाभ ना मिलता रहा, तो अब एकरे माध्यम जब डिजिटल हो जाए, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के हम सब बात करी थी कि जैसे केहू के अकाउंट पर बीच में क्यों बिचौलिया रहा बंद करे, तो सीधे सरकार पैसा भेजे उनके अकाउंट पहुंच जाए। ऐसे जब हर चीज डिजिटल हो जाए और कुल चीज मैप हो जाए सिस्टम पे, तो केहू कोनो समस्या ना हो।
0: अच्छा
1: भैया देखें, एक कॉलर और जुड़ल बाटे, बताओ भैया। हेलो हेलो
4: हेलो,
1: हाँ बताओ भैया। हेलो पंचायत घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बोलें

0: हाँ भैया नमस्कार, सबके प्रणाम। भैया हमारे एक प्रश्न ये रहा, पंचायत भवन के लिए जो हाइब्रिड मॉडल पे बना हुआ।
1: देखें, आज के विशेष कार्यक्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी हैं, आपके हर शंका का समाधान करने के खातिर हैं। आप अपने सवाल पूछें, शंका बताएं, समाधान निश्चित हुए। बताएं भैया।
0: भैया हम धनुपुर ब्लॉक से ग्राम सभा हरिपुर उर्फ मिश्रपुर से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, धनुपुर
0: ब्लॉक से। पंचायत पंचायत भवन हाइब्रिड मॉडल पे बना है, एमा बहुत अनियमितता बरता गया है, तो अगर जब हम जोन जांच डाले है, जांच भय के बाद जब जांच कंप्लीट हुए तो कई जोन अनियमितता का कार्य अधूरा छोड़ा बा, ये पूरा हुए फिर?
2: हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपके। अगर जौन आपके गांव में अनियमितता भई बा और अगर कोनो काम पैसा निकाल लीन के बा नाय बाबा, तो जब जांच पूरी होए तो ओका नोटिस दई जाए और जौन उनकर वसूली है वह होए, जितना अनियमितता कीन होए वो 50-50% जौन प्रधान और सचिव हैं उनसे वसूल कही जाए और जौन काम इनकम्प्लीट होए वो पूरा कही जाए।
3: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखा इत बात भाई, साथ ही साथ देखा राम अवतार भैया, हम सब गांव रही था।
1: हाँ?
3: भैया अपने पंचायती में भैया तमाम तरह का खर्चा होते हैं।
1: सही बात है।
3: अगर भैया कुछ ऐसा विकल्प निकाला जाए कि भाई पंचायत भी कुछ कमावे लागे, कुछ ऐसा पैसा आवे लागे, कुछ ऐसा स्रोत बन जाए कि भाई जैसे पहले होत रहा कि भाई कतों और नहीं जाए के रहा,
1: बिल्कुल सही बात है।
3: पंचायत रही वो अपने आप में ही एक भैया रही कि भाई
2: आत्मनिर्भर
3: रही, तो वो आत्मनिर्भरता आपकी तरफ से कैसे की जाती
2: है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, जैसे भारत सरकार के मार प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर पंचायत की बात करते हैं कि कैसे सेल्फ सफिशियंट गांव हो, जैसे प्राचीन काल में गांव जो सेल्फ सफिशियंट होते रहें, तो अब एका बरे जोन ग्राम पंचायत हो एका ओएसआर जनरेट कही जाए, ओन सोर्स रेवेन्यू, कि कैसे अपने गांव में कुछ रेवेन्यू जनरेट कही जाए जोन गांव के उपयोग हो। तो जैसे तालाब में जोन पट्टा होते हैं उससे जोन आय होता है, या जोन प्रमाण पत्र वगैरह इशू कही जाए 30 रुपया नॉमिनल शुल्क लग जाते हैं उससे हो जाते हैं, या जैसे अभी प्लास्टिक की बात करते रहे तो जोन प्लास्टिक रिसाइकिल करे के बाद उससे जोन आय होते हैं वो कही जाए, या ग्राम पंचायत में रिबोर वगैरह होता है, या पेड़ ओड़ जो नीलामी होते हैं, तो यह सबसे जो रेवेन्यू जनरेट आमदनी हुए तो ये ग्राम पंचायत के इसे आत्मनिर्भर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे अपने प्रयागराज में कुछ गांव पिछली दाएँ रेवेन्यू जनरेट किन रहे हैं, उनका जो सरकार है जो 1500 से कम आबादी वाले गांव हैं उनका सरकार जैसे मान लग कि वो 100 रुपया जनरेट किन रहा तो 500 रुपया उनका अलग से इंसेंटिव दिन रहे।
3: अच्छा, मतलब कुल मिला है कि भैया ये बात बाकी अगर आप एक कदम बढ़ी तो सरकार वो आपके साथ साथ कदम बढ़ाए,
2: पांच कदम
3: बढ़ाए
2: तो और यही वर्ष में और सब लगभग यही वर्ष में जो अभी वित्तीय वर्ष अप्रैल से चालू भा, लेकिन कुल ग्राम पंचायतें जोन बाटिन प्रयागराज में लगभग 10 लाख रुपया जनरेट हो और इस सबके बहुत सहयोग रहा है कर, मतलब
1: बहुत अच्छी बात है कि युवा का पलायन बाहर
3: रुक सकता है। बिल्कुल, अगर अपनी यहाँ कुछ आमदनी होए और आमदनी का भैया अपने गांव देश में अगर वो खर्च होए तो निश्चित तौर पर भैया गांव में कुछ न कुछ निर्माण होए और निर्माण का लाभ भैया गांव वाले ले और विकास भी और तेजी से हो।
1: सुमरन भाई,
3: अच्छा एक चीज और बार राम अवतार भैया कि भाई आज विशेष कार्यक्रम बांटे हेलो पंचायत घर भैया आए हैं और हम सब भैया से बड़ी देर से बात कही रहा है, पर जो ना अपन पंचायत घर का परंपरा बांटे कि हम सब जब आए थे तो कुछ गीत गव नहीं होता, अब भैया अरे कहे तो यही कि राम अवतार भैया नवा कार्यक्रम लेके आवा है
1: जीव जन।
3: हाँ, और कुछ बजट नहीं बांटे तो देखा एक बहुत बढ़िया सुंदर लोक गीत बांटे हम कही कि आपो सुने और हमारे जो आज मुख्य अतिथि है आज हमारे जो मेहमान बांटे वह ये चीज सुने
1: सुनवा दो भाई।

0: हाँ भैया, देखा गौनाही तो हो गई। हैदर अली जुगनू का भैया देश गीत रही सुमरन भाई। हम तो कहें कि पूरे जिले के पंचायत विभाग का मुखिया हमारे सभी के साथे बैठा है,
1: और राम
0: तो
1: अवतार भी एक चीज और लगत बाटे कि आज जोन पंचायती सजी बाटे ना, वो
0: हाँ
1: लगत बाटे कि पूरा इलाहाबाद, चाहे आप मेजा देखें, करछना देखें, हर जगह
0: प्रयागराज
1: नवाबगंज हर जगह से फोन आवत बाटे।
0: जी
1: और लगत बाटे कि पूरे क्षेत्र के किसान आई के स्टूडियो में बैठ गवा हैं और अपनी पंचायती सजी बाटे।
0: गांव के किसानन की ओर से एक समस्या है द्विवेदी सर, हम आपसे ये रखा चाहते हैं कि जोन युवा भैया हैं, युवा ग्रामीण हैं, उनके खेल का मैदान सिकुड़ रहा है, या बहुत सी ग्राम पंचायत आज भी हैं जहां खेल के मैदान नहीं हैं, या ओपन जिम का जोन शहर में व्यवस्था है वहां तक ना पहुंची है,
2: हाँ
0: तो
2: नहीं
0: उनके स्वस्थ रहे के खातिर, उनके खेल कूद के खातिर, चूंकि आप जिले के पंचायत के मुखिया हैं, का कार्यक्रम है और कैसे वो सब आगे बढ़ सकें खेल कूद में, एक बारे में थोड़ा आप
2: जैसे
0: बताओ
2: बहुत महत्वपूर्ण आप बात कहें, तो
0: जी।
2: एहमेन सरकार अभी निर्णय लीन बा कि मनरेगा से
0: जी
2: ग्राम पंचायतन में खेल के मैदान बनवाए जाए, और जौन अपन प्रयागराज बा और पूरे उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतन में खेल
0: जी
2: के मैदान ऑलरेडी बनवाए जाते हैं। बहुत सारी ग्राम पंचायत में खेल के मैदान बन गए हैं। इकरे अलावा जोन और विभाग हैं उनके द्वारा बड़ा खेल के मैदान जैसे शहर में होते हैं वैसे विकास खंड और तहसील स्तर बनवाए जाते हैं। और दूसरी बात, आप बात कहें ओपन जिम जैसे शहर में हमारे सब देखी थे लाग रहा था,
0: जी
2: ये ग्राम पंचायतों में आप कभी जाएँ देखें तो आज ना ही कई साल से अब ओपन जिम की व्यवस्था जैसे जहाँ पंचायत भवन के आसपास जमीन बा या जहाँ रोड के आसपास, तो बहुत सारी ग्राम पंचायतन में ओपन जिम लाग बा उनका सब उपयोगों करत हैं।
0: जी
2: तो ये दोनों व्यवस्था ग्राम पंचायतों में बहुत अच्छे स्तर से चलत बा और एकर सब लाभ उठावत हैं। बस एमें यही रहा था जैसे गाँव वालों का सहयोग रहा, कुछ टूटे उठे ना तो और बढ़िया सबके सहयोग रहा, जैसे शहर वहर में सब ओकर देख रेख समझत हैं कि यहाँ पर नहीं है तो उनका यहाँ वहार जो असामाजिक तत्व हैं उनका अगर नष्ट न करें तो ये व्यवस्था बहुत बढ़िया से काम
1: बिल्कुल
2: चले।
1: बिल्कुल। अच्छा भैया एक हमारो सवाल बाटे, जैसे
0: कहा सुमरन भाई
1: राम अवतार भैया पूछें, हमार पचन का जैसे हम खेती किसानी कर रहा है तो भाई पर्यावरण से विशेष लगाव होता, प्रकृति से विशेष लगाव होता, तो भैया ये कहा जाता है कि भाई अगर पर्यावरण बचा रहे तब भाई अपन खेती किसानी आगे बढ़े। तो भैया सबसे बड़ा सवाल तो यही बाटे कि जैसे अभी के जोन समय बाटे भाई लगातार पेड़ का कटाई होत बाटे, नवा रूप से पेड़ वृक्षारोपण होत बाटे, मगर जिस गति से भैया पेड़ काटा जात बाटे, तो का कुछ आपकी तरफ से पहल बाटे भाई किसान भैया अरे तो भाई पेड़ लगावत भाई नवा बाग भी लगावत नवा पेड़ भी लगावत हैं, पर जैसे तमाम तरह के जोन पहल होते हैं आप बताएं कि भाई चाहे स्वच्छता से लेके हो, चाहे तालाब के लेके हो, चाहे प्लास्टिक मुक्त लेके हो, तो इस तरह से का ऐसा पहल बाटे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावा जाए, कुछ विशेष अभियान
2: हाँ
1: चलावा जात बाटे, एकरे
2: बिल्कुल
1: बारे
2: सही
1: बताओ।
2: बात आप कहते हैं कि जैसे पर्यावरण से रिलेटेड करे बड़े दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं,
0: जी
2: एक पहला हमारा हो वृक्षारोपण और दूसरा हो कि जलाशय कि सरोवर और ये सब
1: बिल्कुल
2: रहे। तो भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार सब मिल के योजना अमृत सरोवर चलाए, हर गांव पंचायत में अमृत सरोवर के निर्माण भ
0: जी
2: वो नरेगा के अंतर्गत भ वित्त आयोग से भ। एकरे अलावा जैसे हर खेत पर मेड़ और हर मेड़ पर पेड़।

0: तो
1: बिल्कुल
0: ये व्यवस्था बनाई जा रही कि जिससे अधिक से अधिक पेड़ गांव में लाग जाएं, कि
1: जी
0: जैसे हर खेत मेड़ बा और हर मेड़ पे पेड़ लाग जाए। और एक बारे माननीय प्रधानमंत्री एक योजना चलाएं वृक्षारोपण में, एक पेड़ माँ के नाम, कि कैसे उनका भावनात्मक ढंग से, इमोशनल ढंग से सब उसे कनेक्ट हो सकें, कि यदि वो पेड़ माँ के नाम लगाई हैं तो ओकर सुरक्षा करी हैं। और जैसे वृक्षारोपण हो थे लेकिन क्यों सुरक्षा नहीं करत, तो ई जोन भावनात्मक रूप से अब जोड़ देंगे तो इसे बहुत सब जुड़त हैं। और धीरे धीरे गाँवों में जागरूकता आवत बेसना, जैसे कि पेड़ वो लगावत हैं तो
2: संरक्षण करत
0: है।
3: भैया हम सभी तो एक तरह से इतना जुड़ाव बाटे प्रकृति से
1: कि
3: जब पेड़ लगावा जाता है तो भाई पूजा पाठ से लेके हर तरह का चीज होता है। एक और चीज आई आवत है कि भाई सोशल फॉरेस्ट्री जो निःशब्द आवत है कि भाई लगातार आप
2: सामाजिक
3: वानिकी जोन बाटे, भाई पेड़ मिलत है चाहे वो सरकार के द्वारा मिले चाहे वो से। अच्छा हम आपके रोका चाहब सवाल हम बाद में पूछब, पर चूंकि लगातार बात होत बाटे, लगातार कलर कॉल करत है तो एक कलर और जुड़ा है। हेलो हेलो
4: हेलो,
3: हाँ भैया राम राम।
4: राम राम भैया, हम लल्लन बोले भाई मेजा से।
3: अच्छा लल्लन भैया, हम कही कि बहुत बहुत स्वागत बा आपका भैया हेलो पंचायत घर कार्यक्रम में। हमारे साथ विशेष अतिथि हैं जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी। भैया आपका अगर कोनो सवाल बाटे तो लल्लन भैया पूछ सकते हैं आप।
4: राम राम साहब।
0: राम राम लल्लन जी बतावे।
4: भैया हम बिजौरा गांव से बोले थे मेजा से।
0: अच्छा अच्छा बतावे।
4: देखा हमरे गांव भैया हम बहुत खुश है, मैं बड़े आपका धन्यवाद बड़े फोन करे। देखा हमरे गांव में आप पंचायत भवनों बनवाए दे और बहुत बढ़िया सुविधा मिले लग, साथे साथे जो एक बार हमारे गाँव में पक्की सड़क बन गई भैया, हम बहुत खुश है।
0: चला बहुत बढ़िया बात हो, तो ऐसे जो और अगल बगल के गाँव के प्रधान है उन्हों का प्रेरित करे और जोन पंचायत भवन बना बा ओकर एकदम डिजिटलीकरण करें और जो गांव के लोग हैं ओकर सुविधा का लाभ उठावें, ई कोशिश करें आप।
4: एक चीज और कहा बीपीआरओ साहब ना, जो हमरे खिया कूड़ा घर बाटे
0: हाँ
4: ओमा देखे कुछ दिन तो बहुत बढ़िया काम चलत है आजकल, लेकिन फिर से कूड़ा इकट्ठा होने लगा है। एक आध बार आप गांव को यदि चलाई है तो बहुत अच्छा काम
0: होगा। अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात हुई कि चलत रहा है, कोनो समस्या हो तो हम आई धोखा देखी देख दें और ब्लॉक जो अधिकारी है उनका बोली थी कि पहुंचे देखें क्या समस्या बाटे, हम मौका मिला था तब हम आए थे।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
0: राम राम जी।
3: लल्लन भैया देखे बहुत बहुत धन्यवाद बा आपका, आप फोन किए ना। और राम उत्तर भैया देखे एक चीज और देखा गया कि भाई न केवल शिकायत आई बल्कि धन्यवाद हुआ वा कि भाई आप अच्छा काम कर रहा है, नई तरीके से आप काम करत रहे। भाई लल्लन भैया बताएं कि भाई कैसे आगे काम भवा पंचायत घर में, कैसे उनके काम भवा
2: बढ़िया हुआ। हम तो कहें सुरन भाई एक और बात है जौन एक महत्वपूर्ण और आम समस्या है ग्रामीण क्षेत्रन के, शहरी क्षेत्रन में तो कम है, ग्रामीण क्षेत्रन में आज भी ज़्यादा है कि हर घर शौचालय नहीं है। ये समस्या ज़्यादा जौन रिमोट एरिया का गांव है वहाँ ज़्यादा है। तो चूंकि पंचायत का मुखिया हैं आप जिला का, द्विवेदी जी हम आपसे जानना चाहें कि ये दिशा में अपन विभाग का काम करत हाँ, कैसे समाधान हो सकता
0: है। हाँ देखा बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो हमें नहीं बतावे चाहिए थे जैसे जोन जितना गांव है हमारे
2: जी
0: सब में हर महीने सर्वे कराए जाते हैं,
2: हर ब्लॉक में
0: हर गांव में
2: जी, जी।
0: अब वो सर्वे लगातार चलत बा
2: कि
0: केहू के शौचालय न हो, जैसे शौचालय सबका मिल गया है, जैसे लेकिन नया घर बनत है, जैसे घर में चार भाई हैं तो नया घर बनवाए ले उनका आवास मिला तो उनका शौचालय भरे और सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन बा पंचायत सहायक माध्यम से सीधे खाता में उनके पैसा दो किस्त में।
3: अच्छा देखा चला चला थे और अंतिम कॉलर आए गए हैं, इन्हें उनसे बात कर लें भाई, बहुत लगातार सब एक दूसरे से बात करे, आपसे बात करे बिना सब परेशान हैं। तो हेलो।
5: हाँ सर।
3: भैया राम राम।
5: हाँ सर प्रणाम।
3: हाँ बतावे अपन सवाल बतावे।
5: सर हमारा गाँव है।
3: हाँ हाँ बतावे बतावे सुनते
5: हैं। 1292 नंबर सर नाली है, वही सर हम बनवाना चाहते हैं।
0: अच्छा कौन सा गांव है आपका?
5: गांव ग्रसेनपुर।
0: अच्छा तो गांव में आप जो नाली बनवाना चाहते हैं ओकर जोन ग्राम पंचायत बैठक हो अगली ओमन प्रस्ताव का ले ले तू बनवाए दिन जाए, जोन टाइट फंड होए वित्त आयोग के उसे नाली बन जाए।
3: बिल्कुल बिल्कुल, आप जोन समस्या रही पूरे क्षेत्र से फोन आए और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको धन्यवाद देव कि आप इतना बढ़िया तरीके
2: समाधान
3: से
2: बताएं।
3: समाधान भी बताएं और उनकर भाषा में सबसे अच्छी बात हमके लगी कि भाई पंच भाई के जोन भाषा बांटे किसान भैया अरन के जोन भाषा बांटे वही में भैया आप बताएं। श्री रविशंकर द्विवेदी जी भैया आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दिए, निश्चित तौर पर भैया किसान भैया अरे आपसे बात किए हुई तो उनके

0: संतुष्टि
1: और एक वादा भी करें कि फिर अगली बार आपके आवे के पड़े किसान भाइयों के बीच में।
2: हाँ बिल्कुल, देखा बहुत बढ़िया बात भाई, सब जगह से धनुपुर से लेके करछना बहुत दूर दूर सबसे बात भाई, ठीक है। और आगे हमारी कोशिश रहे कि जब भाई हमें मौका मिले तो हम जरूर आओ। सबका बहुत धन्यवाद जो श्रोता हमारे सुन रहे थे उनको।
1: सुमिरन भैया चला चली का बेला भैया, पंच भाइयों से विदा लीन जाए तो पंचों
3: राम राम।

0: फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए।

0: झील। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिये इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था, मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल एसआईटी की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। एसआईटी मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार

0: जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
1: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा खानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ की तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर PAC पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शामे गरीबा मजलिस उफ्रामाब इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रियंका त्रिपाठी के गाए भजन और गीत। तो लीजिए सबसे पहले सुनिए एक पारंपरिक भक्ति रचना स्वर प्रियंका त्रिपाठी का।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रियंका त्रिपाठी के गाए भजन और गीत। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: संदेश से पहले आपने सुना फिल्म मैक्सिमम का गीत शफकत अमानत अली की आवाज़ में। शब्द रचना शब्बीर अहमद की थी, धुन बनाई थी विक्रम सावन ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म आक्रमण से। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिर्फ तुम की कव्वाली, अमीन साबरी, फरी साबरी और साथियों की आवाज़ों में। इसी के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश प्रोग्राम। फ्रेंड्स, इन टुडेज एपिसोड वी डिस्कस अबाउट जेनरेशन जी, देयर अप्रोच टू लाइफ, प्रोफेशनल, पर्सनल, एंड वी ऑल्सो डिस्कस देयर एनवायरमेंटल अप्रोच। एंड फ्रेंड्स, यू नो दिस फैक्ट, एवरी जेनरेशन इज यूनिक, ओनली देयर इज नीड टू गिव देम प्लेटफॉर्म टू फ्लरिश। मिसेज के राशि कुमार, प्रोफेशनल स्किल्स एक्सपर्ट, एजुकेटर, ऑथर, पोएट, फैकल्टी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद प्रयागराज, इज विद अस टू डिस्कस ऑन द सब्जेक्ट। अ वार्म वेलकम
2: राशि जी। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू सो वेरी मच, एंड इट्स ऑलवेज बीइंग अ प्लेजर बीइंग इन दीज स्टूडियोज एंड स्पेशली टॉकिंग टू यू।
1: यू आर जिगलिंग, ग्लिटरिंग, एंड योर फेस इज सो स्माइलिंग डियर फ्रेंड्स।
2: थैंk you so much.
1: Ma'am, you have been teaching Generation Z. What you feel when you enter in your class? How they welcome you?
2: They welcome me with big smile.
1: Oh.
2: Yeah. And I believe that as far as love, understanding and respect goes, it's mutual many a times. You know, like, why I'm smiling here? Because I can see the glitter in your eyes, the way you welcomed me. Yeah. Right? So the same applies to them also. They are beautiful, lovely flowers, wonderful creations of God, and born in an age where they are called digital natives because they grew up with the internet,

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।

0: अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, इस सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिका

की सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी

0: तब भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10,10,00,000 रुपए और घायलों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर

0: पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Chen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikant and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi,

दोस्तों कहते हैं कि जब लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं तो जज्बात शायरी का लिबास ओढ़ लेते हैं, और जब उन जज्बातों को सुर और ताल का साथ मिल जाए तो वो गज़ल बन जाते हैं। गज़ल सिर्फ सुनी नहीं जाती, गज़ल तो रूह से महसूस की जाती है। तो हमारा आज का ये कार्यक्रम इसी रूहानी सुकून के नाम है। दोस्तों हर कहानी की शुरुआत, हर धड़कन का पहला एहसास बेहद ख़ास होता है। जब कोई पहली बार दिल को छूता है ना, तो दुनिया का हर रंग बदला बदला सा नज़र आता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उनकी नज़र में कुछ ऐसा पैगाम था, उनकी नज़र में कुछ ऐसा पैगाम था कि दिल हमारा उनके नाम था। हम तो बस यूं ही गुजर रहे थे राह से, पर उनके एक दीदार ने हमें वहीं रोक लिया।

वैसे दोस्तों, मोहब्बत का दूसरा नाम इंतज़ार भी है। वो कहते हैं ना कि इंतज़ार की घड़ियां भले ही लंबी हों, लेकिन उसमें जो सुकून और जो बेकरारी होती है ना, उसका अपना ही एक मज़ा है। फ़ोन की घंटी का इंतज़ार, कदमों की आहट का इंतज़ार, दिन गुजर जाता है तुम्हारी यादों के सहारे, रात ढलती है तारों को गिनते गिनते, तुम आओ या ना आओ ये मुकद्दर की बात है, पर हम जिएंगे सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार के सहारे। दोस्तों, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ कभी कभी दूरियाँ भी आ जाती हैं, और कहते हैं कि जुदाई का दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है। लेकिन गज़ल की खासियत यही है कि ये दर्द को भी इतना खूबसूरत बना देती है कि इंसान रोते रोते भी मुस्करा देता है। बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा, मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊँ या ना आऊँ, मुझे आवाज़ दे देना, तुम्हें अच्छा लगेगा।

दोस्तों, मोहब्बत में लोग दूर हो जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, लेकिन जो चीज़ कभी नहीं बदलती वो है यादें। पुरानी तस्वीरें, वो पुरानी गलियां, वो चाय की टपरी और वो लंबी बातें। यादें दिल के उस कोने में महफूज रह जाती हैं जहां कोई और नहीं जा सकता। वक्त बदला, साल बदले, बदले कई चेहरे, मगर तुम्हारी याद का मौसम आज भी वही है। हम लाख चाहें भूलना उस गुजरे दौर को, मगर दिल की डायरी में हर पन्ना आज भी वही है। गज़ल जिंदगी का फलसफा सिखाती है। जब इंसान दुनिया की इस भागदौड़ से थक जाता है तो वो रूहानी सुकून ढूंढता है, सूफियाना रंग ढूंढता है। न शिकवा है कोई, न कोई गिला है, जिंदगी से मुझे जो भी मिला है नायाब मिला है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है।

दोस्तों, वक्त पंख लगा कर उड़ जाता है। पता ही नहीं चला कि हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बिखेर देंगे इस दुनिया में हम कि मेरे जाने के बाद मेरा कातिल भी रोएगा।

तो दोस्तों, ये थी कार्यक्रम की आखिरी गजल। ये गजलें, ये लफ्ज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए, और मुझे दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति।

और इसी के साथ ही कहकशां कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नरेश मिश्र लिखित नाटिका छोटी भाभी।

0: कौन है?
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, मेरे घर वाले की हालत बहुत खराब है।
0: मैं आधी रात को मरीज नहीं देखता, मरीज को सुबह ले आना।
1: डॉक्टर साहब, मरीज की हालत बहुत खराब है, उसकी सांस टूट रही है, बीमारी रात दिन देखकर नहीं आती, मुझ पर दया कीजिए, मेरे आदमी की जान आप ही बचा सकते हैं डॉक्टर साहब।
0: तुम लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो, जरा ठहरो। हाँ, इधर इधर खिड़की के पास ले आओ। कहाँ है मरीज, उसे मेरे पास ले आओ।
1: डॉक्टर साहब, मरीज दरवाजे के पास लेटा है, वो चल नहीं पाता, उसे हफनी आ रही है, आप दरवाजा खोल देते
0: हैं। दरवाजा
1: तो।
0: नहीं खुलेगा, उसे यहीं खिड़की के पास ले आओ।
1: जी जी लाती हूँ।
2: बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। तुलसी तुलसी मुझसे चला नहीं जाता, मेरा दम उखड़ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है।
1: थोड़ा हिम्मत से काम लो, डॉक्टर साहब वहाँ खिड़की के पास खड़े हैं, वो दवा देंगे और तुम्हें आराम हो जाएगा।
0: अरे, इसे तो दमे की शिकायत है, है? अभी तक कहाँ थी, किसका इलाज करा रही थी?
1: डॉक्टर साहब, इलाज तो लगातार चल रहा है लेकिन आराम नहीं होता, इनकी हालत दिन दिन बिगड़ती जा रही है।
0: मरीज का दम निकलने लगा तो आधी रात के वक्त मुर्दा ढोकर मेरे पास लाई।
1: नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं तो इन्हीं के सहारे जी रही हूँ, इन्हें कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
2: क्या रोती हो तुलसी, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, मेरी जिंदगी अब उन्हीं के हाथ है।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, इन्हें बचा लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी, आपके गुण गाऊंगी डॉक्टर।
0: ठीक है ठीक है, मरीज को फौरन

0: इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, इसे ऑक्सीजन पर रखना पड़ेगा। तुम कितना पैसा लाई हो?
1: डॉक्टर साहब, मैं हड़बड़ी में ज्यादा पैसा नहीं ला सकी, ये कुल 500 रुपए है।
0: 500 रुपए? 500 रुपए में कुछ नहीं होगा। इलाज से पहले 5000 जमा करने पड़ेंगे।
1: 5000?
0: और क्या, 5 रुपए में इलाज कराने आई थी।
1: ठीक है, मैं आपको 5000 दूंगी, पहले इलाज तो शुरू कीजिए। देखिए देखिए डॉक्टर साहब, इनके माथे पर पसीना आ रहा है, इनका दम टूट रहा है।
0: देखो देखो, इलाज में उधार नहीं चलता, दवाएं उधार नहीं मिलती। पहले 5000 रुपए ले आओ, तब इलाज शुरू हो।
1: डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलकर पहले मरीज को कोई सुई लगा दीजिए, इनकी हालत कुछ संभल जाए तो मैं घर जाकर बाकी रुपयों का इंतजाम करूँ।
0: अच्छा, घर में रुपए नहीं है, तुम्हें रुपए का इंतजाम करना होगा। काम का आधी रात में जगाकर मुझे डिस्टर्ब किया, पहले घर जाकर रुपए ले आओ, तब इलाज शुरू होगा।
1: डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए।
0: मुझे कुछ नहीं सुनना है, पहले जाकर रुपए ले आओ।
1: लो, खिड़की बंद कर ली, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं?
2: तुमसे क्यों गिड़गिड़ा रही हो? भगवान ने मेरे जीने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, मुझे वापस घर ले चलो।
1: नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं रिक्शे पर जाकर अभी वापस लौटती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे।
3: तुलसी काकी, इतनी रात के कहाँ जा रही हो?
1: तुम्हारे ही पास आ रही थी छोटी, अच्छा हुआ तुम मिल गई।
3: मैं अभी शहर से आ रही हूँ, तुम्हें देखा तो रुक गई।
1: छोटी, मैं बड़े संकट में फंस गई हूँ, तुम्हारे काका की हालत बहुत ख़राब है।
3: क्या हुआ उन्हें?
1: वही दमे की बीमारी तेज हो गई है, उनकी सांस रुक रही है।
3: काकी, ये दमे की बीमारी तो बड़ी खतरनाक होती है, कहते हैं दमा दम के साथ जाता है।
1: मैंने भी यही सुना है, अभी 4 दिनों पहले तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, खेत खलिहान गाय गोरू देख रहे थे, बस 4 दिनों के अंदर हालत ऐसी बिगड़ी कि खाट से लग गए। मैं उन्हें डॉक्टर के दरवाजे छोड़कर भागी आ रही हूँ।
3: घबराओ नहीं काकी, डॉक्टर साहब सुई लगा देंगे तो काका को आराम हो जाएगा।
1: डॉक्टर ने घर का दरवाजा तक नहीं खोला, उन्होंने खिड़की खोल कर मरीज को दूर से देख लिया।
3: क्या क्या कह रही हो काकी, डॉक्टर ने दरवाजा क्यों नहीं खोला?
1: वो दरवाजा तब खोलेंगे जब मेरे हाथ में 5000 के नोट देख लेंगे।
3: क्या, ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम डॉक्टर को पैसा दिए बिना गांव छोड़कर भाग नहीं जाती, डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
1: बिटिया, बहस करने से क्या फायदा, डॉक्टर को 5000 रुपए चाहिए, मेरे पास कुल 2500 रुपए हैं, अगर तुम 2500 उधार दे दो तो तुम्हारे काका की जान बच सकती है, मैं बड़ी आस लगाकर तुम्हारे पास आई हूँ।
3: काकी, तुम 1 मिनट रुको, मैं रुपए लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। काका की जान बचाने के लिए रुपए तो क्या, मैं अपने सारे जेवर तक दे सकती हूँ, तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
4: डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए, मैं मरीज के इलाज के लिए रुपए लाई हूँ।
0: अच्छा, ठहरो, आया।
2: बिटिया, देर हो गई है, तुम्हारा रुपया मुझे नहीं बचा सकेगा, भगवान मेरे सामने खड़े हैं, वो मुझे बुला रहे
1: हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये देखो तुम्हारी छोटी 5000 रुपए लेकर खड़ी है, मैं तुम्हारे वजन का रुपया तोल दूंगी लेकिन तुम्हें बचा लूंगी।
2: पहले कहा ना, अब बहुत देर हो गई है, मेरे मरने के बाद तुम ऐसा जतन करना कि गांव का कोई गरीब मरीज इलाज के लिए तरस कर अपनी जान न गंवाए। बोलो बोलो, तुम ऐसा करोगी?
1: तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी।
2: कुछ ठीक नहीं होगा तुलसी, मैं जा रहा हूँ।

0: वादा करो कि गांव में गरीबों के लिए एक अस्पताल जरूर
1: काका, गांव में अस्पताल जरूर खुलेगा, मैं वादा करती हूँ।
0: खुलवाओगी। ये तुलसी क्यों चुप है? ये जब तक वादा नहीं करती तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे।
2: रुपए लाओ और मरीज को अंदर लेटा दो।
1: डॉक्टर साहब, पहले मरीज को देख तो लीजिए।
2: क्यों?
1: इलाज उसका किया जाता है जो जिंदा हो। काका की धड़कन बंद हो चुकी है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, ठहरो ठहरो, देखता हूँ। ओहो भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, मरीज तो मर चुका है।
3: नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके 5,000 रुपए लाई हूँ। ये देखिए, आपने इन्हीं रुपयों के लिए 2 घंटे तक मरीज को हाथ नहीं लगाया। अब आपको इसका इलाज करना होगा।
1: काकी धीरज रखो काकी, किसी पत्थर से सिर टकराना ठीक नहीं। काका को आखिरी वक्त पर दिया गया वचन पूरा करना है, वचन पूरा करना है काकी।
4: ठाकुर लाखन सिंह, आप विधवा तुलसी के देवर हैं। आपका भाई राम सिंह मर गया तो क्या हुआ? उसकी जमीन पर आपका हक बनता है।
5: आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, उस जमीन पर मेरी नजर है, लेकिन विधवा भौजाई की वजह से लाचार हो गया हूं।
4: आप भी क्या बात करते हैं ठाकुर साहब, अरे आप गांव के इज्जतदार आदमी हैं। जोर से जंग और माल से रंग होता है, आपने सुना नहीं? जो फैसले किसी अदालत में नहीं होते वो लाठी की अदालत में आसानी से हो जाते हैं, समझे कुछ?
5: हाँ हाँ, मैंने सब सुना है, सब जानता हूँ, लेकिन जमाना अब बदल गया है। घर की चार दीवारी से निकलकर औरतें पंचायत करने लगी हैं। मेरी भौजाई का गांव में बहुत आदर है, और वो छोटी छोटी तो मर्दों के कान काटने के लिए मशहूर है। अरे दोनों मिलकर पीछे पड़ गई तो मेरी बड़ी बदनामी होगी।
4: सोच लीजिए ठाकुर साहब, पक्के 25 बीघे का सोना उगलने वाला रकबा है, हाथ से निकल गया तो बेटे पोते आपको कोसेंगे।
5: मैंने सब सोच लिया है। मैं जानता हूँ कि गांव का खैराती अस्पताल आपकी आंखों में क्यों गड़ रहा है।
4: क्यों गड़ रहा है भला भाई?
5: इसलिए कि खैराती अस्पताल खुल गया तो आपका अस्पताल बंद हो जाएगा, आपको अपना धंधा समेट कर शहर भागना पड़ेगा।
4: हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं तो शहर जाकर रोजी चला लूंगा, लेकिन आप क्या करेंगे?
5: मुझे क्या करना है? अरे आपके अस्पताल से मुझे क्या लेना देना?
4: ठाकुर साहब, इतने भोले नहीं हैं आप, जरा सोच कर देखिए। मैं गांव के गरीबों का महंगा इलाज करता हूँ, तभी वे कर्ज लेने आपके पास आते हैं, और भला उन्हें अनाप शनाप ब्याज पर आप रुपए उधार देते हैं, उनकी जमीन रेन रखते हैं। गांव में खैराती अस्पताल खुल गया तो आपका धंधा भी सिमट जाएगा।
5: अरे हम आपस में एक दूसरे की बखिया उधेड़ते रहेंगे तो गांव में सचमुच खैराती अस्पताल खुल जाएगा। अरे आप कोई ऐसा जतन बताइए कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे।
4: तो फिलहाल एक ही रास्ता है, जमीन का खरीदार भोला राम दूसरे गांव का है, आप उसे बंदूक की नोक पर रोक सकते हैं। वो जमीन नहीं खरीदेगा तो गांव का दूसरा कोई आदमी उसे खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकता।
5: ठीक है, फिलहाल यही करना होगा, अस्पताल बन गया तो सचमुच हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भाभी भाभी, आपने तो गजब कर दिया।

0: घर परिवार में ऐसा नहीं होता।
1: हाँ देवर जी, मुझे भी यही शिकायत है। घर परिवार में ऐसा नहीं होता कि लोग बंदूक की नोक पर मनमानी करने लगे।
0: मैंने क्या मनमानी की?
2: लाखन चाचा, आपके नौकर बाकी ने भोला राम को बंदूक के बल पर तुलसी चाची की जमीन खरीदने से रोक दिया। उसने ये हरकत आपके इशारे पर ही की होगी।
0: ये झूठ है, मैंने बाके से कुछ नहीं कहा। अरे जिसकी जमीन है वो उसे जब चाहे जिसके हाथ चाहे बेच सकता है, भला मैं किसी को क्यों रोकने लगा।
1: देवर जी, आप मन के इतने उजले हैं तो बांके का बचाव करने मेरे पास क्यों आए हैं? बांके ने भोला राम को धमकी दी तो मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया,
2: और अब बांके ने पुलिस को ये बयान दिया है कि वो आपके इशारे पर भोला राम को धमकाने गया था।
0: उसने ऐसा कहा? अरे उसे हवालात से निकलने तो दीजिए, मैं मार मार कर उसका भुर्ता बना दूंगा।
1: जाने दो देवर जी, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। मैं मन से अपनी जमीन अस्पताल के लिए दान कर चुकी हूँ, मैं उसे हर हालत में बेच दूंगी।
2: और चाचा, जो लोग इस भले काम का विरोध करेंगे वो अपनी करनी का नतीजा खुद भुगतेंगे।
0: तुम ठीक कहती हो छोटी, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, लेकिन बाकी मेरा आदमी है, उसके पकड़े जाने से हमारे खानदान की बदनामी होगी।
1: ठीक है देवर जी, इस बार तो मैं बाके को छोड़ देती हूँ, लेकिन एक बात कह देती हूँ, मेरे अस्पताल के आड़े जो भी आएगा मैं उसे माफ नहीं करूंगी।
3: अरे जाने दीजिए ठाकुर साहब, मैंने आपका जलाल देख लिया, आप हाथ मलते रह गए और अस्पताल की इमारत बनकर तैयार हो गई।
0: अरे आप देखते जाइए डॉक्टर साहब, अरे उस इमारत में कुत्ते लौटेंगे कुत्ते। अरे तुलसी भाभी की सारी पूंजी तो ईंट गारे में खर्च हो गई, अस्पताल के लिए फर्नीचर चाहिए, दवाएं चाहिए, सारा इंतजाम चाहिए। अरे इसके बिना दीवाने थोड़े ही मरीजों का इलाज कर पाएंगी।
3: ठाकुर साहब माफ कीजिए, आप तो मुझे अक्ल से बिल्कुल।
0: क्या, क्या क्या कहा आपने?
3: अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि इमारत बन गई है तो डॉक्टर और दवाएं भी सरकार से मिल जाएंगी। वो आफत की परकाला छोटी कलेक्टर साहब के बंगले की दौड़ लगाने को तैयार बैठी है।
0: ये काम इतना आसान नहीं है। अरे सरकार की कोई योजना मेरी इजाजत के बिना इस गांव में कैसे आ सकती है?
3: आप इस गांव के राजा तो हैं नहीं कि आसमान से पानी भी आपसे पूछकर बरसेगा। ये छोटी बहुत खोटी है, वो चाहेगी तो कलेक्टर साहिबा को गांव में आने के लिए राजी कर लेगी।
0: ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मेरे आदमी कलेक्टर के दफ्तर में मौजूद है, मैं कलेक्टर को तुलसी भाभी के पास नहीं भटकने दूंगा।
3: चलिए आपका ये वादा भी देख लेते हैं।
1: छोटी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो?
2: काकी, आप आराम से नीम की छांव तले बैठी रहिए।
1: मैं 2 घंटे से बैठी हूँ, इस सूनी सड़क पर बैठने से क्या फायदा?
2: फायदा है काकी, तुम देखती रहो, आज तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी।
1: बिटिया, मेरे धीरज का बांध अब टूट रहा है, लगता है मैं अपने आदमी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाऊंगी।
2: काकी, काकी मेरे साथ सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाओ, वो देखो कलेक्टर साहिबा की कार आ रही है।
4: क्या बात है, आप दोनों सड़क पर क्यों खड़ी हैं? आपने रास्ता क्यों रोक रखा है?
2: मैडम, हम कई दिनों से आपसे मिलना चाहते थे, हमने आपके दफ्तर में कई अर्जियां भी भेजी, मजबूर होकर हमें आपका रास्ता रोकना पड़ा।
1: कलेक्टर साहब, हम अपने गाँव में अस्पताल खुलवाना चाहते हैं, हमने 5 कमरों की पक्की इमारत तैयार कर ली है, आप उसे चलकर देख तो लीजिए।
2: हाँ मैडम, हमारा गांव श्यामपुर ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 15 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगी।
4: श्यामपुर? लेकिन मुझे तो बताया गया है कि गांव के रास्ते में पुल टूट गया है और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है।
2: कोई पुल नहीं टूटा है मैडम, असल में जो लोग गांव में अस्पताल नहीं चाहते वो आपको गांव से दूर रखना चाहते हैं।
4: ओह ये बात है, तो आइए मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, मैं अभी आपके गांव चलती हूँ। तुलसी देवी, अस्पताल की इमारत देखकर और आपकी कहानी सुनकर मैं आपके संकल्प की जितनी तारीफ करूँ वो कम ही होगी।
1: कलेक्टर साहिबा, हमें आपकी मदद चाहिए, उसके बिना हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे।
4: मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ, आप बेफिक्र रहें, सिर्फ 1 महीने के अंदर ये अस्पताल

0: अस्पताल खुल जाएगा। शासन की ओर से अस्पताल को पूरी मदद मिलेगी। आप कल ही मेरे दफ्तर में आ जाइए ताकि मैं कागजी कार्रवाई पूरी कर लूं।
1: कलेक्टर साहब, आपकी मदद से मेरा संकल्प पूरा हुआ। अब इस गांव का कोई गरीब दवा इलाज को नहीं तरसेगा। मैं अब चैन से अपना शरीर छोड़ सकूंगी।
0: खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते तुलसी देवी। आपको भी इस अस्पताल के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आपने अपने दुख को गांव वालों की खुशी में बदल दिया। ऐसे लोग इस जमाने में बिरले ही मिलते हैं।
2: मैडम, शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए। ये कैची लीजिए और फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन कीजिए।
0: इस अस्पताल का उद्घाटन सिर्फ तुलसी देवी करेंगी। ये अस्पताल उनका सपना था। ये सपना उन्हीं के हाथों साकार होना चाहिए।
1: कलेक्टर साहब,
0: मेरे पास आइए तुलसी देवी। शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए।
2: मैडम, आज के दिन अस्पताल खुलने की खुशी में मैं अपना रक्तदान करूंगी और इस अस्पताल में रक्त बैंक की सुविधा गरीबों के लिए वरदान होगा।
0: मैं आपसे पीछे रहने वाली नहीं हूँ। मेरे जिसमें आपसे कम खून थोड़े ही है। पहले मैं अपना खून दूंगी।
3: कलेक्टर साहिबा, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। इजाजत हो तो पहले मैं रक्तदान करना चाहता हूँ।
0: जरूर जरूर ठाकुर साहब, आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा खून देकर अपने बड़े गुनाह से छुटकारा पा सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे नाटिका छोटी भाभी। आलेख नरेश मिश्र का था। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे रामलाल गुप्ता, शांति स्वरूप प्रधान, असफा वाकरी, सीपी खन्ना, अरिदमन शर्मा और पूजा ठाकुर। निर्देशिका थी निर्मला ठाकुर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: वाणी पर।
1: तू शायर है, मैं तेरी शायरी।
2: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण, इस विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532-297-0462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 0532-297-0462 और 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग, जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, आपस में भाईचारा बनाकर रखें।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कमला बोस का राग मारू बिहाग में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती कमला बोस का राग बिहाग में ख्याल गायन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: फ्री नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत

ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है लखनऊ स्थित स्थानीय इमामबाड़ा गुफराम आप में संपन्न मजलिसे शामे गरीबा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
1: पेशे खिदमत है रेडियो रिपोर्ट। जबां लरसती है तौसीफ मैं करूं कैसे कि मेरे जहने रसा से कहीं सिवा है हुसैन। ये शाम शामे गरीबा है, शोहदाए करबला की जात और उनकी बेमिसाल शहादत। तारीख का ऐसा रोशन बाब है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। गुफरान मुआब लखनऊ में मुनक्किद शामी गरीबा की मजलिस का यह सिलसिला 1926 से शुरू हुआ और आज 26 जून 2026 को 100 साल मुकम्मल कर चुका है। समात फरमाइए इमामबाड़ा गुफरान मुआब लखनऊ में मुनक्किद मजलिस शामी गरीबा की रेडियो रिपोर्ट। मजलिस को खिताब कर रहे हैं जनाब मौलाना कल्बे जव्वाद साहब।
2: औज़ु बिल्लाहि सबील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व शफीउल मुज़लिबीना अबिल कासिम मुहम्मद। أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعده فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات بيته بر محمد وآل محمد عليه السلام। पहले तो ये बात आपके सामने अर्ज़ करना है कि मजलिस शाम गरीबा जिस पर आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है, ये 1926 में सबसे पहली मरतबा इसी हुसैनी फरमा में मुनक़िद हुई थी और आज जो है वो 2026 है। तो अंग्रेज़ी के लिहाज से तो 100 साल हैं मगर अरबी कैलेंडर के लिहाज से 103 साल हो रहे हैं इस मजलिस शाम गरीबा को, जो सबसे पहले इसी हुसैनिये में लखनऊ में।

सारे पत्थर खत्म हो गए, अब यहाँ कोई पत्थर मौजूद नहीं है, अब हम क्या करें? बलून कहता है, ये जलती हुई रेत उठा, ये जलती हुई रेत उठा और उस शहर के जख्मों पर डाला ताकि ज्यादा से ज्यादा अजियत हो। बस मजलिस तमाम हो रही है ज़ारा। रिवायत कहती है कि हुसैन जीने फरस पर डगमगा रहे थे, कभी दाईं तरफ झूम जाते थे कभी बाईं तरफ, और ज़बान पर क्या था? ई वल्लाह, अल्लाह की कसम नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। अरे हुसैन क्या कह रहे हैं? अल्लाह की कसम नहीं। अतला मिशकिनी कहते हैं कि लगता है कि कोई दोनों पहलुओं में कोई संभालने आ गया था। अरे दोनों पहलुओं में कोई संभालने आ गया था, एक पहलू में रसूल आ गए थे, दूसरे पहलू में फातिमा ज़हरा आ गई थी। मेरे लाल जमीन बहुत चल रही है, मेरे लाल तू जख्मों से चूर है, आ तुझे अपनी गोद में लिए लेती हूँ ताकि तेरे जख्मों को अजियत न। हुसैन कहते थे नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, मुझे इम्तिहान देने दीजिए, मैं इम्तिहान दे रहा हूँ। यही वो वक्त था कि एक नैजा आकर सीने में पड़ता है और सीने को तोड़कर पार निकल जाता है। हुसैन ने वो नैजा निकालने की कोशिश की, नैजा नहीं निकल सका, नैदा नहीं निकल सका। मेरा दिल कहता है कि हुसैन ने लाशियाली अकबर का रोक करके कहा होगा, ए मेरे लाडली अकबर, तुम्हारे सीने से मैंने तो नैदा निकाल लिया, अरे मेरे सीने से कौन नैदा निकाल। तीरों की बारिश होती है, तीरों की बारिश। पिछले साथ कहता है, ए हुरमला हुसैन गिर नहीं रहे, कोई ऐसी तरकीब कर कि हुसैन घोड़े से गिर जाए, हुसैन घोड़े से गिर जाए। हाँ आज़ादार, मलून ने चिल्ले कमान में तीर जोड़ा, इस तरह से निशाना लिया कि सीधा पेशानी पर आकर तीर पड़ा, पेशानी को तोड़कर पार हो गया। हुसैन अब संभल नहीं पाए, जीने फरस से डगमगाते हुए ज़मीन के ऊपर आ गए। अज़ादार, अब मजलिस ख़त्म करना चाहता हूँ, दो मिनट की ज़हमत है। आप अगर कर्बला जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर इमाम हुसैन गिरे थे ज़ख्मी होकर और जहाँ पर शिमर ने शहीद किया था, तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है। अरे मैं कैसे उस मुसीबत को बयान करूँ, कैसे इस मुसीबत को बयान कर जो कर्बला जाते हैं। मेरी बात की तस्दीक कर ले जाकर कि जहाँ पर इमाम हुसैन घोड़े से गिरे थे जख्मी होकर, मुझ जगह महफूज है, वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ी आप, मुझ जगह महफूज है। लेकिन जहाँ हुसैन के गले पर खंजर चला था, तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला, हुसैन इतने जख्मी थे कि न चल सकते थे, न उठ सकते थे, न घुटनियाँ चल सकते थे, किसी तरह से चल नहीं सकते। ये 1 किलोमीटर का रास्ता कैसे तय हुआ? अरे देखने वालों ने मंजर देखा, मलून शिव कंजर लेकर करीब आया, बालों में हाथ डालकर हुसैन को खींचना शुरू किया। ए शिव, अगर दबा करना तो यही क्यों नहीं दबा कर देता? अगर खंजर चलाना है तो यही क्यों नहीं खंजर चला देता? वो मलून कहेगा, अरे यहाँ नहीं तबाह करूँगा, यहाँ नहीं कंध करूँगा, यहाँ हुसैन की बहन ज़ैनब मौजूद नहीं है, देखो वो सामने खड़ी हुई है, उसके सामने ले जाकर तबाह करूँगा। बहन फरियाद करती रही, हुसैन के गले पर खंजर चलता रहा। अदादारो शाम गरीबा नमूदार हो गई, जनाब ज़ैनब छोटे छोटे बच्चों के लिए हुए जलते हुए खेमों की खाक पर बैठी हुई हैं। बच्चे बड़ी मुश्किल से प्यास पे सोए थे, देखा शहजादी ने कि कूफे की तरफ से एक सवार आ रहा है। शहजादी एक टूटा हुआ नैजा लेकर खड़ी हो गई, सवार से कहा, देखो हमारे करीब ना आना, हमारे करीब ना आना। देखो बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए प्यास में, वो फिर न जाग जाए। अगर तुम्हें लौटना है, अगर लूटना है तो दिन में आकर लूट लेना, लेकिन हमारे पास कुछ बचा नहीं है, जो कुछ था सब तुम लोग लूट ले गए।
ہے مگر وہ سوار آگے بڑھتا آ رہا ہے، آگے بڑھتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ جناب زینب قریب پہنچ گئی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، ارے میں علی کی بیٹی ہو کر تم سے کہہ رہی ہوں، یہ سننا تھا۔ اس نقاب میں اس سوار نے

0: तकाब उल्टी इस जैनब किसको रोक रही हो, मैं तुम्हारा बाप अली हूँ, मैं तुम्हारा बाप अली। जैनब दौड़ कर बीवियों के पास आई, अगर कोई चली हुई चादर होता मुझे दे दो, अगर कोई चली हुई चादर तो मुझे दे दो, मैं बाप के सामने भी बगैर कभी चादर के नहीं आए। नहीं शहजादी, कोई चादर मौजूद नहीं। तड़प कर आई, बाबा के कदमों पर सर रख दिया। ए बाबा, उस वक्त आप कहाँ थे जब उस शहर के गले पर खंजर चल रहा था? ए बाबा, उस वक्त कहाँ थे जब खेमा में आग लगी हुई थी? हादत और मजलिस खत्म हुई। जो यहाँ की रिवायत है कि हुर की ज़ौजा कुछ खाना पानी लेकर आती है, शहजादी उसका इस्तकबाल करती है, उसके बाद वो पानी पेश करती है। शहजादी का मैं नहीं पीऊँगी, पहले सकीना पिएगी। सकीना आलम गशी में पड़ी हुई थी, पहुंची और बच्ची का शाना हिलाया। ए सकीना पानी पी लो, ए सकीना पानी पी लो। नींद से आँख खुली थी, घबरा कर कहा, क्या मेरा चचा पानी ले आया, क्या मेरा चचा अब्बास पानी ले आया? नहीं सकीना, अरे चचा तो फरात के किनारे शहीद हो चुके हैं, ये हुर की ज़ौजा है तो पानी लेकर आई है। बेटा तुम पी लो, ये सकीना तुम पी लो। फूफी अम्मा आपने पानी पिया? क्या नहीं, तुम सबसे छोटी हो लिहाजा तुम पहले भी। ये सुनना था कि जामे आम लिया और मख्तल का रुख किया। ए सकीना कहाँ जा रही हो? वो भी अम्मा मुझसे छोटा तो अली असगर है, वो पहले पानी पी रहे। सकीना ने पानी पीने से इनकार किया। इमाम ज़ैन अल-आबिदीन को खबर की गई, इमाम तशरीफ लाते हैं, ए सकीना पानी पी लो। सकीना ने इनकार किया, उस आका ने इशारा किया, सामने से पर्दे हटे, देखा जन्नत का मंजर है। इमाम हुसैन कौसर के सामने शहजादी फातिमा ज़हरा की आगोश में सर है और शहजादी जामे कौसर लिए, ए बेटा बहुत प्यासे हो पानी पी लो। 72 लाशें उठाए पानी पी लो। ए अम्मा कैसे पी लो, मेरी सकीना प्यासी है। ए सकीना जब तक तुम नहीं पियोगी कौसर का पानी हुसैन नहीं पिएगा, जन्नत में तुम्हारा बाबा प्यासा है।
1: अभी आप इमाम बाड़ा गुफरान मुआब लखनऊ में मुनक़िद मजलिस शामी गरीबा की रेडियो रिपोर्ट समाअत फरमा रहे थे, जिसे खिताब कर रहे थे जनाब मौलाना कल्ब जव्वाद साहब। दीन नबी पर खास करम है हुसैन का, जितना हो जिक्र जिक्र वो कम है हुसैन का। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस रिपोर्ट को आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से पेश किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे लखनऊ
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:41 हुए हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।